ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश

0: मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन।

आज सोमवार है, शिव आराधना का दिन, और ऐसी ही भक्ति रचना से हमने आज की आराधना की शुरुआत की। ईश्वर हमारे शक्ति पुंज हैं, हमारे आत्मबल हैं। कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ जाते हैं उस समय ईश्वर का आसरा हमें पुनः जीवन की गति प्रदान करता है, हमें आत्मबल

संबल मिलता है और हम पुनः संभल कर जीवन की रफ्तार को पकड़ने लगते हैं। हम यदि ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो ये आत्मबल हमें कभी टूटने नहीं देता। ईश्वरीय शक्ति अदृश्य है, लेकिन हर क्षण हर पल हमारे साथ है। आवश्यकता यह है कि यदि हम बुरे समय में ईश्वर को याद करते हैं, उनसे आत्मबल संबल मांगते हैं, तो जब हमारा बेहतर समय चल रहा होता है, उस समय के लिए भी हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए। हर दिन समर्पित होना चाहिए सन्मार्ग के प्रति, सच्ची आस्था के प्रति और ईश्वर की साथ निष्ठा के प्रति। हमारी संस्कृति में गुरु, माता और पिता, इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। पिता आकाश हैं, मां धरती है, गुरु इन सब का ज्ञान कराने वाली दिव्य शक्ति हैं। शिवाराधना के बाद आइए करते हैं मातृवंदना।

0: साथियों नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: संदेश के बाद आपका पुनः स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे सबसे खराब समय में, सबसे बुरे समय में, जब कोई सहारा नहीं होता, उस समय हमारे संबल बनते हैं ईश्वर। हमारे हाथ उठते हैं उन्हीं की ओर और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में हमारी मर्यादा की रक्षा करें, हमारे मान की रक्षा करें और हमें पुनः उठ खड़े होने का संबल प्रदान करें। और ये प्रेरणा, ये शक्ति हम में वो आत्मबल भरती है कि हम पुनः खड़े होते हैं अपनी मान मर्यादा के साथ और जीवन की दौड़ में पुनः शामिल हो जाते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बता

माया और वैराग्य दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। माया जहां हमें सांसारिक बंधनों में बांधती है, भौतिकता की जोड़ में हमसे तमाम अच्छे बुरे काम करवाती है, वहीं भक्ति वैराग्य हमें इन सब से बहुत दूर लेके जाता है। हम भौतिकता जोड़ते हैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, लेकिन माया का पाश कुछ ऐसा है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा संसाधन जोड़ने की फिराक में हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं भक्ति हमें परम सुख प्रदान करती है। जीवन में किसी और अभिलाषा की आवश्यकता नहीं रहती। हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। हम निकृष्ट कर्मों से बच जाते हैं। हमारा जीवन सन्मार्ग पर चल पड़ता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने भी कई वर्षों की तपस्या के बाद वरदान में प्रभु से मांगा तो सिर्फ भक्ति, उनका प्रेम और उनका संसर्ग।

0: ईश्वर हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज की आराधना बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए राम प्रसाद बिस्मिल के विचार।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इन ओजस्वी पंक्तियों के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक भावना का नाम है। देश के लिए बलिदान हो जाने की भावना, देश को निजी स्वार्थों से ऊपर रखने की भावना। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी के सार तत्व को पूरे सम्मान के साथ, पूरी आस्था के साथ स्वीकार करने की भावना। देश प्रेम उनकी सांसों में बसा था, उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास और अनगिनत बलिदान होते हैं, तब कहीं वो स्वाधीन हो पाती है, स्वाधीन रह पाती है। भारत माता को स्वाधीन करने का संकल्प तो सभी देश प्रेमियों में था, किंतु उनके रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित उनके निष्ठावान अनुयायियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और समान रूप से असहाय मानी जाने वाली जनता के संकल्प को ही एक अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति समर्पित सैन्य शक्ति जुटाकर भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट देनी चाहिए। अनेक ऐसे भी थे जो क्रांतिकारी उपायों से उन लोगों को निर्बल करने में विश्वास रखते थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था, जैसा शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनगिनत बलिदानी क्रांतिकारियों ने किया। बस जैसे भी हो, देश को आज़ाद कराना है, यही उनका लक्ष्य और संकल्प था। ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और बहुत दूर तक चलता चला जाता है। देश ही उनकी पूजा था, उनकी आस्था था, उनका विश्वास था। ये पूजा कोई मंदिर में जाकर करे या मस्जिद में, गुरुद्वारे में करे या गिरजाघर में, इसकी गहराई में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर डालते हैं वे जो निहित स्वार्थ को देश के हित से ऊपर मानकर चलते हैं, जो ये कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं

0: न मेरी आरजू रहे। उन्हें किसका डर, अपने लिए तो उनकी कोई कामना ही नहीं है, जो कुछ है सब मातृभूमि पर न्यौछावर है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के एक गांव में हुआ, किंतु लालन पालन शाहजहांपुर में हुआ, जहां उनके पिता पंडित मुरलीधर बाद में जाकर रहने लगे थे। बिस्मिल 10वीं कक्षा में थे, तभी गेंदालाल दीक्षित की अध्यक्षता में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश किया। मातृभूमि की मुक्ति के दीवानों के लिए संघर्षों और यातनाओं का मार्ग प्रशस्त था। कई बार उन्हें मृत्यु से साक्षात्कार करना पड़ा, कितनी ही बार पैसा न होने के कारण घास पात खाकर गुजारा करना पड़ा, किंतु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। आगरा, राजस्थान, नेपाल, जाने कहां कहां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। संध्या के समय 8 नवंबर की एक रेलगाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एकाएक काकोरी और आलमनगर के बीच गाड़ी एक खंभे के पास खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने पुकार कर मुसाफिरों से कह दिया कि वे केवल सरकारी खजाना लूटने ही आए हैं, किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है। इसके बाद गार्ड से चाबी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई और लगभग 1.5 घंटे में लूट की धनराशि लेकर क्रांतिकारी वहां से चले गए। 25 सितंबर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई और रामप्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। उन्हें फांसी की सजा हुई और दिसंबर 1927 में गोरखपुर में इस आज़ादी के दीवाने को फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम समय मातृभूमि से विदा लेते हुए उन्होंने कहा था, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाने वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं।
1: अभी आप रामप्रसाद बिस्मिल के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बातचीत औषधीय फसलों की वैज्ञानिक खेती। विशेषज्ञ राजेंद्र प्रसाद मिश्र से बातचीत कर रहे हैं दिनेश चंद्र पांडे।
1: भैया राजेंद्र मिश्रा, आप प्रगतिशील किसान हैं, आसेपुर सैदाबाद प्रयागराज के रहे वाले हैं और औषधि फसलन के खेती करे थे, तो हम कही थे कि भैया यहाँ घरी अगर किसान भैया अरे औषधि फसल के खेती करे चाहत हूँ तो कौने कौने औषधि फसल के खेती कर सके थी, एक बारे में बताएं।
2: औषधि पौधों की खेती आजकल दूरदर्शन से, पत्र पत्रिका से, अखबार के माध्यम से बहुत लाभदायक सुनने में भी आ रहा है और करना भी चाहिए
1: जी।
2: लेकिन हम किसान भाई लोगों से एक अनुरोध है, निवेदन है कि इसको व्यावसायिक खेती मान के करें। और इसमें फसलें तो बहुत हैं, 8000 से ज़्यादा औषधि फसलें हैं
1: जी जी,
2: 5000 इस समय की भी जा रही हैं। लेकिन हम प्रयागराज क्षेत्र के किसान भाई हैं, हमको पहले व्यवहारिकता यह ले लेनी है कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे पास संसाधन कैसे हैं
1: जी जी,
2: और हम क्या पैदा करें जो बेच लें
1: जी जी।
2: और जब तक हम बेच नहीं पाएंगे तो कोई भी फसल पैदा करने से हमें आर्थिक लाभ होगा
1: नहीं।
2: तो वर्तमान समय में हमारे इस प्रयागराज क्षेत्र के लिए सफ़ेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, कस्तूरी, काल मेघ, ये सब फसलें अच्छी उपज भी दे रही हैं और अच्छा इनका बाजार दाम भी है।
1: अच्छा
2: हाँ, और हम इनके करने से पहले, अब जैसे रबी की फसल की कटाई उटाई हो गई है तो पहली बात खेत का चयन हम ही कर लें कि जो फसल बोएंगे वो ज़्यादा पानी लेगी या पानी नहीं लेगी। जैसे धनहा खेत में, हम लोग किसान भाई हैं इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धनहा खेत में पानी ज़्यादा लगता है।

0: और मूसली में पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, सतावर में पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो व्यवहारिकता के ज्ञान ले लें। दूसरी बात है कि संसाधन अपना देख लें, लाभ कमाना चाह रहे हैं। तीसरा बीज का चयन,
1: जी
0: बीज हम लें तो किसानों से लें, और बीज कभी भी बाजार से लेने की कोशिश न करें, क्योंकि बाजार में बीज जो है वो कई साल का पुराना है या कब का है कि नहीं है, तो उस किसान से मिले जो ये खेती करता है,
1: जी जी
0: और उससे व्यवहारिक ज्ञान ले लें, और किसमें हमें प्रचुर मात्रा में लाभ है, तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हम किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे।
1: एक बात ही मिश्रा जी कि जैसे जोन किसान भाई मान ली सफ़ेद मूसली की खेती करे चाहती
0: जी
1: तो उनका यहाँ घरी का कर कौन कौन वो व्यवस्था करे के चाहिए जो शुरुआत करे के लिए।
0: जी सफ़ेद मूसली की शुरुआत करने के लिए पहली बात तो यह है कि यह ज़्यादा पानी लेने वाली फसल नहीं है,
1: जी
0: किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात है।
1: जी
0: दूसरी बात है, इस फसल को जानवरों से ज़्यादा नुकसान नहीं है,
1: जी
0: ना गाय भैंस जानवर बकरी कोई खाता है, ना नील गाय से नुकसान है। और ये 15 जून से इसकी खेती
1: जी
0: प्रारंभ
1: जी
0: की जाती है।
1: जी जी
0: और बीज आप लें किसान के यहाँ से, बीज लेने से पहले खेत की 2-4 बार जुताई करा दें, और इसमें औषधीय गुण बरकरार रहे इसके लिए कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी या की खाद, जो भी उपलब्ध हो वो अपने खेत के क्षमता के अनुसार डालें।
1: जी
0: और हम निवेदन करेंगे कि आप प्रचुर बहुतायत खेतों में न करके पहले कम में करें, उसको बेच लें, फिर आगे बढ़ते चले जाएं।
1: जी जी का मतलब शुरुआत में अगर खेती करे चाह रहे तो थोड़े खेत में कई के
0: हाँ, थोड़े से करके और बेच लें तो उन्हें अपने बाजार क्षमता पता चल जाएगी
1: जी जी जी
0: और लाभ और नुकसान पता चल जाएगा,
1: जी
0: फिर अपना दायरा बढ़ाते जाएं, तो निश्चित समय में एक समय वो परंपरागत खेती से हट के व्यावसायिक खेती में अग्रसर हो जाएंगे।
1: जी जैसे आप बताए सतावर और कौन कौन कौन बताए
0: सतावर है, कस्तूरी है,
1: कस्तूरी है
0: सफेद मूसली है, अश्वगंधा है।
1: अश्वगंधा। ये
0: हाँ
1: हम कहते कि एक एक खेत ये अश्वगंधा सतावर और ये कस्तूरी के खेती करे चाहें
0: जी,
1: तो उनके लिए खेत की तैयारी में कौन सावधानी बरतें या सफ़ेद मूसली के लिए तैयार करे चाहें तो उसके क्या
0: देखें,
1: करें।
0: सफेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, कस्तूरी, कौच, काल में जितनी हैं, ये सब खेती का प्रकार यही है कि 3-4 बार गहरी जुताई की जाए और कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद डाल दी जाए, देसी खाद जेका कहा जाता, फिर जुताई कर दी जाए। अब जैसे जैसे फसलों का, जैसे 15 जून से मूसली है, अगस्त में सतावर है, जुलाई में, अगस्त में अश्वगंधा है, फिर कस्तूरी है, तो इस हिसाब से हम खेत की जुताई करते रहें और निराई पर ज़्यादा ध्यान दें। क्यों? कि औषधि फसलों में सबसे ज़्यादा इस समय लग जा रहा है निराई, क्योंकि देसी खाद पड़ती है और गोबर में कुछ बीज पक्षी भी नहीं पचा पाते, जानवर भी नहीं पचा पाते, वो खेतों में उगाता है,
1: जी।
0: उनको निकलवाते रहें, और इनका जानवरों से कोई नुकसान नहीं है, किसान भाई को अत्यधिक लाभ होगा, इसमें दो राय नहीं।
1: भाई हम कहते जैसे सब वो ये सफ़ेद मूसली के बिया किसान से मिल जाता है उसे सतावर और
0: सब
1: कस्तूरी
0: किसान से मिल जाएगा,
1: अश्वगंधा सब मिल जाता
0: जी जी
1: है
0: जो किसान कर रहा
1: क्योंकि
0: है वो आपको बीज दे देगा, और यह बीज गारंटीड बीज है कि जमेगा ही।
1: जी। तो हम कहते ये कि बिया बोए पड़त है या कंद लगाए पड़त है।
0: मूसली का कंद,
1: जी
0: सतावर का कंद,
1: जी
0: सतावर का तो बीज से नर्सरी, नर्सरी से
1: अच्छा अच्छा सतावर के बीज से नर्सरी
0: नर्सरी
1: नर्सरी से
0: से
1: फिर रोपाई
0: पौधरोपण, और
1: और
0: कंद से मूसली,
1: मूसली कंद से।
0: अश्वगंधा बीज से,
1: अच्छा
0: कस्तूरी बीज से।
1: जी। तो जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए कि 1 बीघा में कोनो किसान भैया रे खेती करे चाहती तो सफ़ेद मूसली में कितनी कंद लग जाए।
0: सफ़ेद मूसली में 1.5 से 2 क्विंटल कंद लग जाए, अगर 20 बिस्सा का उनका नाप सही है
1: जी।
0: तो 1.5 से 2 क्विंटल बीज लग जाए।
1: बीज लग जाए ओके वो लगावे के
0: कंद
1: तो
0: आलू की तरह मेड़ी बनवानी है,
1: जी।
0: और 1.5 फीट पर कंद
1: हाँ
0: का रोपण एक एक पीस करते चले जाना है,
1: अच्छा। ओके जो मेड़ी है मेड़ी से मेड़ी के कितना
0: दो
1: दूरी रहे।
0: फीट
1: अच्छा 2 फीट की दूर
0: हाँ
1: पे मेड़ी
0: हाँ
1: बनवानी।
0: मेड़ी से मेड़ी 2 फीट
1: हाँ
0: और कंद से कंद 1 फीट, और यही लगवा देना है 15 जून।
1: और ये जो सतावर बा ओका अगर 1 बीघा हम करेंगे तो ओके
0: सतावर 2 फीट
1: अच्छा।
0: और पौध से पौध 2 फीट और मेड़ी से मेड़ी 2 फीट, और अगस्त में लगे जब बारिश कम होती है।
1: जी जी
0: अच्छा, एक विशेष बात है कि औषधीय पौधे ज़्यादा पानी नहीं लेती हैं।

0: कुछ फसलों को छोड़ के,
1: जी जी
0: जैसे बच पानी की फसल है, ब्राह्मी पानी की फसल है, इन सबों को छोड़ के, और ये ज़्यादा पानी सिंचाई
1: नहीं
0: नहीं
1: लेते।
0: लेती, इसलिए हम किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक।
1: अच्छा भैया, एक लगाए के बाद के एक जमाव के बाद हमें का वो रासायनिक खाद उद का भी
0: नहीं,
1: प्रयोग करें
0: रासायनिक
1: पड़े।
0: खाद का प्रयोग नहीं करना है ज़्यादातर, तो इसका सारा ट्रीटमेंट गोमूत्र से ही है।
1: अच्छा।
0: कंद शोधन जैसे सफ़ेद मूसली, बीज शोधन सतावर, अश्वगंधा, कालमेघ, कौंच, तो अच्छा। और अगर कीड़े भी लग रहे हैं बारिश के सीजन में, जैसे सावन भादों में बारिश ज़्यादा हो गई तो कीड़े बहुतायत है, अगल बगल धान लोग बोए हैं, चरी बोए हैं, जोनरी बजरी, तो उसमें क्या है, गोमूत्र, नीम की पत्ती, लहसुन, इन सबों को एक हफ्ते जो है सड़ा करके, और 1 लीटर में 10 लीटर छान के पानी के साथ मिला के 1:10 का रेशियो बना के स्प्रे कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: गुण भी औषधि बरकरार रहेगा और फसल भी मिलती रहेगी।
1: अच्छा, कितना दिन में तैयार हो जाता?
0: मूसली आपकी 5 से 6 महीने की फसल है, सतावर 18 महीने की फसल है,
1: अच्छा।
0: काल मेघ 3 महीने की फसल है, कौंच 3-4 महीने की फसल है, अश्वगंधा भी 3-4 महीने, 3 महीने 4 महीने की फसल है, सिर्फ
1: अच्छा,
0: सतावर जो है
1: वो
0: 18 महीने।
1: 18 महीने के, बाकी सब 3-4 महीना, छह
0: इनमें
1: महीना
0: एक और शब्द हम जोड़ेंगे कि एक आई है स्टीविया, मीठी पत्ती, मीठी तुलसी, आप नाम सुने होंगे, डायबिटिक के लोगों के लिए बड़े फायदेमंद।
1: जी।
0: इसका एक पौधा 4 साल चलता है,
1: अच्छा।
0: और अगर किसान भाई इसको सुरक्षित रूप से कर सकें तो वर्तमान दर पत्ती का भी तेज है, और एक पौधा 4 साल से प्राप्ति पत्तियों की होती रहती है, और ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं है, सिर्फ जानवरों से ही बच बचाव कराना है।
1: अच्छा, तो हम कहे थे कि मिश्रा जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दें, जो भी किसान भैया हरे औषधि फसल के खेती करे चाहत हो ही, निश्चित बाकी लाभ उठे ही, ये जानकारी दे के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप राजेंद्र प्रसाद मिश्र से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत सुन रहे थे। विषय था औषधीय फसलों की वैज्ञानिक खेती। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शशांक रस्तोगी की वार्ता, कुष्ठ रोग कारण लक्षण और उपचार। लीजिए सुनिए।
1: लेप्रेसी एक तरीके का संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है। ये बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरियों की तरीके से एक से दूसरे को फैलता है और नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और काफ़ी समय तक संक्रमित व्यक्ति के साथ आपका संबंध रहता है या आसपास वो आपके रहता है तो आपको लेप्रेसी होने की संभावना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लेप्रेसी हो जाएगी, क्योंकि लेप्रेसी उन लोगों को होती है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आपको कोई डिजीज़ ऑलरेडी नहीं है, आपका न्यूट्रिशन, आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वायरस शरीर में जाए और आपको लेप्रेसी पैदा कर सके। लेप्रेसी वायरस जो होता है शरीर में प्रवेश करने के बाद काफ़ी समय के बाद अपने लक्षण उत्पन्न करता है। कुष्ठ रोग में लक्षण दो तरीके से होते हैं, एक त्वचा पे चकत्ते निकल आते हैं, दूसरा नस की वजह से हाथ पाँव में झंझनाहट होना या सुनपन होता। कुष्ठ रोग को दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो सिम्टम्स के जरिए नस की मोटापन हो गया है या शरीर में चकत्ते हो गए हैं, या फिर उसकी बायोप्सी करके कंफर्म कर लेते हैं कि जो चकत्ता है वो कुष्ठ रोग की वजह से ही है। तो अगर कहीं पर डाउट होता है तो हम लोग कुष्ठ रोग में बायोप्सी करते हैं। अदरवाइज एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग स्लिट स्मियर एग्जामिनेशन कहते हैं, जिससे कान में या शरीर में जो चकत्ते बने हैं उससे हल्का सा पानी निकाल के, ब्लेड से कट करके उससे पानी निकाल के उसमें जांच करते हैं, जिसे स्लिट स्मियर एग्जामिनेशन कहते हैं, जिससे कि हम लोग

0: कंफर्म करते हैं कि जो कुष्ठ रोग है वो किस तरीके का है। अगर वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो हम लोग उसको कहते हैं मल्टी बैसिलरी कुष्ठ रोग। अगर उसमें दो तीन पैचेज ही हैं, छोटे छोटे पैचेज हैं और नस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसको पॉसी बैसिलरी कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। पहले जो धारणा थी कि कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है, हमारे लोग के पास जो मरीज आते हैं कुष्ठ रोग का नाम सुन के थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं या निराश से हो जाते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं और उनका बार बार यही कहना होता है कि हमारे तो परिवार में तो किसी को नहीं है, हमको कैसे हो गया। चूँकि ये बीमारी संक्रामक रोग बीमारी है तो इसलिए परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। पहले के समय में संक्रामक रोग होने की वजह से परिवार में फैल जाती थी, कोई इलाज संभव नहीं होता था तो एक से दूसरे को फैल जाती थी, लोग सोचते थे परिवार में लेप्रेसी चल रही है। लेकिन अब चूंकि इलाज संभव है और अगर प्रॉपर इसका इलाज किया जाए तो इससे आप पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है कि ट्रीटमेंट, इसका इलाज जो है लंबा है, तो लगातार इलाज डॉक्टर की निगरानी में, सरकारी अस्पताल में ये दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो उसको जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक बंद ना करें, और एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल और 1 साल से कम ट्रीटमेंट कभी ना लें। अपने परामर्श, चिकित्सक की परामर्श के अनुसार इस ट्रीटमेंट को 1 साल तक चलाएं। हम लोग जो समाज में कुछ लोग देखते हैं जिनके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं या इनका कोई अंग जो है कट गया है, तो वो उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो लोग लापरवाही से इलाज करते हैं। अगर हम लोग प्रॉपरली इलाज करें तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। हम लोग कोशिश करें कि ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें और सुन्न हो जाने की वजह से जो हिस्सा सुन्न हो जाता है तो उसकी देखभाल करने की आवश्यकता रहेगी। जैसे हम किसी भी महिला को होते हैं तो कहते हैं कि भाई आप पतीला हाथ से मत उठा दीजिए, हमेशा कपड़ा लगा के वो करिए। चाय पीते हैं तो ग्लास में रुमाल लगा लीजिए ताकि आपका हाथ न जलने पाए। इसी तरीके से जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो हाथ उनका जल जाता है। तो इसी तरीके से पाँव में है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कई लोगों के पाँव के जूता ही निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि सुन्न होता है। तो ऐसे मरीजों को हम लोग कहते हैं ऐसा जूता, फीते वाला जूता पहनिए और इस तरीके से कोई चीज़ अंदर घुसने ना पाए। और जब भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो तुरंत उसका इलाज करिए, घाव को बढ़ने ना दें। इलाज कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये घाव बन सकते हैं, क्योंकि सुन्नपन बना रहता है तो सुन्नपन का इलाज नहीं संभव है। देखभाल करके अपने सुन्नपन को ठीक रख सकते हैं। और आज के समय में सरकार द्वारा लेप्रेसी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सरकार की ओर से बहुत प्रयास किया जा रहा है कुष्ठ रोग का उन्मूलन हो सके। हालांकि अभी भी कुछ काम करना बाकी है, लेकिन सरकार का प्रयास सराहनीय है और हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग सरकार को सहयोग करें, जो भी मरीज हो उसका पूरा इलाज करें, उसकी काउंसलिंग करें और कोशिश करें कि वो समाज में किसी के लिए दिक्कत ना पैदा कर सके।
1: कुष्ठ रोग, कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप डॉक्टर शशांक रस्तोगी की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आप सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7:00। 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन सुनिएगा सुबह 7:30। दिन में 12:15 पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन होगा और रात 10:30 सुनवाएंगे पंडित उमाशंकर का सितार वादन। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिव्या श्रीवास्तव के स्वर में गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर उत्तम कुमार मलिक के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। वॉयस ऑफ प्रयागराज हमारा ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 10:05 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 10:30 बजे आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। इस श्रृंखला के अंतर्गत वसुधा बनर्जी से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनवाएंगे दिन में 11:30 बजे।

अपनी फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा। दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत डॉक्टर चित्रा पांडे से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा UTI कारण और उपचार। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। दिन में 2:30 बजे कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा, शशिबाला जैन, रामबाबू यादव और साथी। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5:00 बजे।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर के आएंगे शाम सवा पाँच बजे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे लोक भाषा कविता पाठ। लोक कवि होंगे सोमनाथ, साथ ही फूलचंद्र शर्मा और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनाए जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी में यथार्थवाद, रवि भूषण पांडे की वार्ता सुनाएंगे आज के हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में।

धन्य है अवध निवासी जहाँ स्वयं सच्चिदानंद राजा के रूप में विद्यमान हैं। उनकी छत्र छाया में इनका जीवन कृतार्थ हो गया है। एक दिवस मुनिवर वशिष्ठ श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए। समुचित आदर सत्कार पाकर कुलगुरु प्रेम विफल हो गए। उन्होंने राजा राम को वो प्रसंग सुनाया जब उन्होंने ब्रह्मा के आग्रह पर सूर्यवंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। बोले, यूं तो पुरोहिती कर्म बहुत अच्छा नहीं होता, इसी कारण वेद पुराण स्मृति सभी ने इसकी निंदा ही की है। किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ये भार इसलिए ग्रहण करने का परामर्श दिया था कि एक दिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण कर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। अतः जो स्थिति योग यज्ञ दान और तपस्या से प्राप्त होती है वो उन्हें इसी कर्म यानी पुरोहिती के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने याचना की, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में आपका प्रेम अक्षुण्ण बना रहे, कभी कम न हो।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर सुरेश वाडकर का था और संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन।

अभी आपने फिल्म संत ज्ञानेश्वर से ये रचना सुनी। रचना पंडित किरण मिश्र और धर्मेश तिवारी की थी, संगीत नंदू होनप का, आवाज सुरेश वाडकर की थी। और लीजिए आप सुनिए फिल्म तुलसीदास से ये गाना, ये भक्ति रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, रचना जी एस नेपाली की है और संगीत चित्रगुप्त का है।

इस भजन के साथ ही अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला

0: युवा सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है, उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
3: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
5: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को

0: बाद बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग अहिर भैरव में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ग्लैडविन चार्लिस और स्वरमंडल पर हैं राकेश प्रसन्ना।

अभी आपने पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी पर बजाई राग अहीर भैरव में ये रचना सुनी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ग्लैडविन चार्ल्स और स्वरमंडल पर थे राकेश प्रसन्ना। लीजिए अब सुनिए पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की ही बांसुरी पर बजाई ये भटियाली धुन।

अभी आप पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी पर बजाई ये भटियाली धुन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ग्लैडविन चार्ल्स और स्वरमंडल पर थे राकेश प्रसन्ना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी मना रहा है अपने स्थापना के 90 वर्ष का महोत्सव। इस अवसर पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आपके हमारे साथ का सफर इतना पुराना हो चला है। इस अवसर पर हमारे श्रोता अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लीजिए आप भी सुनिए।
1: नमस्कार, मैं संगीता सिंह। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी से मेरा लगाव बचपन से ही रहा है, मैं आज भी रेडियो सुनती हूँ। पहले हमारे मोहल्ले में 2-4 लोगों के पास ही रेडियो हुआ करता था, और जब कोई प्रोग्राम चलता था तो हम लोग वहाँ पर खड़े होकर सुनने लगते थे। ज़्यादातर हमारे यहाँ मीडियम वेव ही पकड़ता था और हम लोग उसे सुना करते थे। लोकगीतों के कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते थे, बच्चों के कार्यक्रम हम लोग सुना करते थे, नन्ही दुनिया, बाल संग। और संडे वाले दिन हम लोग रेडियो के पास जाकर बैठ जाते थे कि अभी बच्चों का कार्यक्रम आएगा। हम लोग चिट्ठी भी लिखा करते थे। बाद में मुझे भी रेडियो में काम करने का अवसर मिला। लगभग 3 सालों तक मैंने आकाशवाणी प्रयागराज में युवाणी के कंपेयर के तौर पर काम किया। बाद में फिर समय के अभाव के कारण मैं उस काम को आगे जारी नहीं रख सकी, लेकिन फिर भी वो यादें मेरे मन मस्तिष्क में आज भी तरोताजा हैं और आज भी मैं रेडियो की नियमित श्रोता हूँ। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश और लोकगीतों का कार्यक्रम भी मैं सुनती हूँ, और जो सुबह स्वास्थ्य परिचर्चा आता है उससे हमें बहुत अच्छी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती हैं। महिलाओं का कार्यक्रम जैसे पनघट, गृहलक्ष्मी, ये कार्यक्रम भी हम सुनते हैं, और मैं आगे भी रेडियो सुनती रहूँगी। तो एक बार फिर से आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, मैं अफजल खान प्रयागराज से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं भी आकाशवाणी इलाहाबाद का ड्रामा आर्टिस्ट हूं और मैंने ड्रामा शुरू किया है मधुर श्रीवास्तव जी के समय में। जब मधुर श्रीवास्तव जी ड्रामा प्रोड्यूसर थे तब से मैंने शुरू किया ड्रामा नौटंकी उनके साथ किया। निर्मला ठाकुर जी थी वो बाल संग देखती थी, नन्ही दुनिया देखती थी, तो बाल संग नन्ही दुनिया भी मैंने बहुत किया और अभी भी ड्रामा कर रहा हूँ। जनरल में जो ड्रामा आर्टिस्ट या मेरा वो पास है उसमें मैं कर रहा हूँ उसको।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
5: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
4: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता

0: और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है।

0: है दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
2: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे

0: ने खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: Akashwani se peshe khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीक नमाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिजाइलों से हमले किए हैं और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है अब खबरें तफसील से मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है मगरबी बंगाल में ABPMJAY के निफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ़ फराहम होगा जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं तफसील हमारे नामा निगार से
3: एनटीए की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीक़ेकार के तहत करवाया जाएगा एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाक़ है एनटीए ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक

0: पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नमाज पॉलिसी का एक क्लीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगैनियो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकत दारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगैनियो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नितिनयाहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंग बंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बेरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बेरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजाहमत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने इटली के फेलियो कोबिली को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्लाह। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
2: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा।

0: जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं नमस्कार, नमस्कार प्रयागराज। आज के इस अंक के साथ मैं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र सिंह। यकीनन आप बेहतर होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ सुन रहे होंगे अपना ये चहिता कार्यक्रम। आपने महासागर तो देखे होंगे ना, कुछ लोगों ने उनके किनारों पर रेत के घरौंदे बनाए होंगे, तो फिर किसी ने रेत पर अपने महबूब का नाम लिखकर लहरों के हवाले किया होगा। किसी ने किसी की आंख में सागर की गहराई देखी होगी, तो फिर किसी ने किसी की गंभीरता को सागर की गंभीरता से मापा होगा। किसी के गीत में सागर है तो किसी की कल्पना में, या फिर किसी लेखक शायर की कल्पना में। हमारी धरती का लगभग 70-72% भाग इन सागरों के हवाले है। मानव ने इनकी लहरों में कलाबाजियां की हैं, इनकी लंबाई गहराई मापी है, तमाम रहस्य खोले हैं, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है कि क्या क्या छुपा रखा है इन सागरों ने अपनी असीम जलराशि की गहराइयों में। 8 जून को पूरी दुनिया मनाती है विश्व महासागर दिवस। ये हमारे जीवन का स्रोत है जो मानवता और पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव के जीवन यापन का आधार हैं। महासागर पृथ्वी की कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ये पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है और दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और अनुमान है कि 2030 तक महासागर आधारित उद्योगों में 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने तमाम फायदों के बावजूद महासागर को अब समर्थन की जरूरत है। हम मानव प्रकृति ये है कि हम चीजों का दोहन तो करते हैं, प्रकृति से तमाम चीजें लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके संवर्धन के बारे में, या फिर उनकी स्वच्छता के बारे में। बड़ी मछलियों की लगभग 90% आबादी खत्म हो चुकी है और 50% प्रवाल भित्तियां नष्ट हो चुकी।

चुकी हैं। हम समुद्र से इतना कुछ ले रहे हैं जितना उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें मिलकर समुद्र के साथ एक नया संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे उसकी संपदा का दोहन ना हो बल्कि उसकी जीवंतता बहाल हो और उसमें नया जीवन आए। इस साल यानी कि 2026 में विश्व महासागर दिवस का विषय है पुनर्कल्पना, जो हमें महासागर को देखने और उसकी देखभाल करने के तरीके को बदलने के लिए आमंत्रित करता है। बहुत लंबे समय से हम इसे एक दूरस्थ वस्तु के रूप में देखते आए हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गांव गिराव में जिन्होंने शायद सागरों को नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी सुना हर किसी ने है, जानता हर कोई है कि सागर एक असीम जल राशि है। वास्तव में आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है ये महासागर। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भोजन जो हम खाते हैं और वो जलवायु संतुलन जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाता है। तो आइए आज सन 2026 के विश्व महासागर दिवस के अवसर पर हम सब भी प्रण लें कि हम जहां हैं जैसे हैं, हम प्रकृति के संरक्षण के लिए, महासागरों के संरक्षण के लिए हमारी ओर से जो भी बन पड़ेगा वो कदम हम जरूर उठाएंगे। हम मात्र संसाधनों के लाभार्थी बनने की बजाय इनके भविष्य के सच्चे संरक्षक भी बने। विश्व महासागर दिवस हम सभी को दैनिक जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। ये महासागर हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत हैं और जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिवस का उद्देश्य जनता को महासागर पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में सूचित करना, महासागरों के लिए नागरिक का एक विश्वव्यापी आंदोलन विकसित करना और विश्व के महासागरों के सतत प्रबंधन की परियोजना पर विश्व की आबादी को एकजुट करना है। संयुक्त राष्ट्र के कानूनी मामलों के कार्यालय के महासागर मामलों और समुद्र के कानून प्रभाग द्वारा गैर लाभकारी संगठन ओशनिक ग्लोबल के साथ साझेदारी में आयोजित इस वर्ष का वार्षिक कार्यक्रम महासागर के चमत्कारों का जश्न मनाएगा, जो जीवन का एक स्रोत है और मानवता और पृथ्वी पर अन्य सभी जीवों का समर्थन करता है। तो आवश्यकता है कि हम महासागरों के महत्व को समझें और जहाँ हैं जैसे हैं जिस रूप में जो भी कर सकते हैं वो हमें करना है, क्योंकि हम महासागर हमसे बहुत दूर हैं, हम सागरों से दूर हैं, लेकिन हम नदियों में जो कूड़ा कचरा या गंदगी डाल रहे हैं वो जाता तो महासागरों तक ही है। इसलिए हम जहाँ हैं जैसे भी हैं वहाँ से हम इसमें सहयोग कर सकते हैं और अपनी सहभागिता बनाए रख सकते हैं।

0: श्रोताओं, सागर की इसी गहराई के साथ, इसी गहराई की तरह गहरा है आपका हमारा नाता, यानी कि आकाशवाणी परिवार का और हमारे श्रोताओं का नाता। आकाशवाणी मना रहा है अपनी स्थापना के 90 वर्ष का जश्न, और इस मौके पर हमारे श्रोता अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेज रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे एक श्रोता की प्रतिक्रिया।
1: नमस्कार, मैं नरगिस। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार और तमाम श्रोता गणों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी से एक बहुत लंबा, यानी कि बहुत लंबा रिश्ता जुड़ा है, समझ लीजिए बचपन से। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मुंह जबानी याद हैं, जैसे गीत सुहाने, वो जो एक फिल्म थी, और ख़ास तौर पे हवा महल। हमेशा सोचती थी मैं कि कभी आकाशवाणी में काम करने का मौका मिलेगा, और ये सपना सच हुआ। मैं काफ़ी लंबे समय तक आकाशवाणी से जुड़ी रही, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ दिया आकाशवाणी ने। तो ये एक ऐसी सहेली बनकर जिंदगी में आया जिसने उस खालीपन को भर दिया। तो आप सभी लोगों को, सुनने वालों को और तमाम आकाशवाणी परिवार को मेरी तरफ से फिर से शुभकामनाएं।
0: आकाशवाणी के साथ अपना संबंध ऐसे ही बनाए रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रम, और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। और क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या आपको अच्छा लगा, ये सब कुछ हमें जानकर बहुत खुश

खुशी होती है। फिलहाल नमस्कार प्रयागराज के आज के अंक के साथ दी जन्मती अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र सिंह को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुंदरम तिवारी। नमस्कार प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: संदेश के पहले आपने गाना सुना फिल्म दुश्मन से, इसे हमने लिया था, रचना आनंद बख्श की थी, संगीत उत्तम सिंह का, आवाजें थी उदित नारायण और लता मंगेशकर की। और आवाज ही तो वो माध्यम है जिससे आकाशवाणी ने खड़ा किया है इतना भरा पूरा परिवार अपने श्रोताओं के साथ। आप हमें आवाज से पहचानते हैं, हम आपको आपके खतों और आपके मनोभावों से पहचानते हैं। ऐसे ही हमारा आपका रिश्ता मधुर मधुर और मधुरतम होता चला जाता है। आकाशवाणी में जाने कितने लोग आए गए,

लेकिन भले ही वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे साथ है। अपनी आवाज़ के माध्यम से वो आज भी जीवित हैं आपके हमारे बीच में। रेडियो की पहचान आपकी हमारी आवाज़।

अभी आपने लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में ये गाना सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म किनारा से। रचना गुलजार की थी, संगीत आर डी बर्मन साहब का। इसी के साथ फिल्म संगीत का

ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
1: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
1: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में 24 व 25 मई को दो दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रतिभाग किया। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री केपी मलिक की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी के कारण डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि
2: धूप में निकले सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां अस्पताल का रखरखाव और चिकित्सकों का व्यवहार IPD OPD अच्छी स्थिति में है।
1: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना डोर टू डोर अमरोहा में 22 मई से शुरू हो चुकी है जो कि 20 जून तक चलेगी। जिले में अब तक 3,518 प्रगणकों द्वारा 95,000 मकानों का सूचीकरण व गणना कर ली गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि
3: हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सेंसस कर्मचारी आपके घर पे आए आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दें। आप उनको पूरा डेटा एकदम शुचिता से अवेलेबल कराएं। इस डेटा का जो उपयोग है भारत के जनगणना में जो डेटा मिलता है उसका पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में उसका रोल होता है। जितना शुचितापूर्ण डेटा होगा उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और उतनी अच्छी लोकोन्मुखी स्कीमों का धरातल पे क्रियान्वयन किया जा सकेगा। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन पूरी और एकदम एक्यूरेटली दें। इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन वाली कार्रवाई किसी के भी विपरीत नहीं की जाएगी। ये केवल एक डेटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा हर समय कायम रखें।
1: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में अमरोहा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विकास भवन सभागार में 1 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्तर पर कुल 18 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर अमरोहा के 6 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 29 मई को अमरोहा में अनेक स्थानों पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गजरौला में हवन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों एवं क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ से हुआ। इसके उपरांत आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की आशा और विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं तथा देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर 1 जून को अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनौरा, गजरौला एवं हसनपुर ब्लॉक के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने कहा कि समय की मांग है कि सभी किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को पहचानने और उसमें आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य, भूजल स्तर एवं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह ने फसलों के साथ साथ सब्जियों एवं बागवानी में कृषकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग करने के कारण इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़

0: गया है। इसके कारण लाभदायक कीट एवं मधुमक्खियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित तोमर ने जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे।
1: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
2: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए और कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। मंत्री ने पौधारोपण को प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरोधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई में लापरवाही करने पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध और गाँवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की पहल को और मजबूत किया गया। जनपद कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बारिश और गरज चमक से भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन, राहगीरों और किसानों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले सप्ताह हुई बौछारें और बादलों की आवाजाही ने चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं, लू से काफी हद तक निजात दिलाई। बारिश के कारण पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक और हवाओं में ताजगी महसूस हुई। प्री मानसून की इस बारिश ने खेतों और पेड़ पौधों को नई जान दी है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने की स्थिति भी देखी गई है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस तिस्ती रसूलाबाद से केंजरी रूरुआ होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के नाम पर हुए 400 करोड़ के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मूसानगर थाने में FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम सभाओं की जमीनों का पुनर्ग्रहण निरस्त कर दिया है। 761.41 एकड़ जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके ग्राम सभा के नाम निहित करने का आदेश जारी हो चुके हैं। कानपुर देहात के गौसगंज भोगनीपुर मूसानगर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। अहिल्या आर्मी भारत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के अनेकों मंदिर, घाटों, धर्मशालाओं, कुओं और सड़कों का निर्माण कराया था। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और महेश्वरी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। कानपुर देहात में हाईस्कूल और इंटर परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन को दिया। राज्य मंत्री ने कहा, ऐसे सम्मान से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों।

अभी आप सम्वेद स्वरों में ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

शकील ने लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आपको उर्दू, हिंदी और अरबी फारसी का अच्छा इल्म था। दिल्ली में शुरू में सरकारी नौकरी करने के बाद आप मुंबई चले गए, जहां आपकी मुलाकात मौसीकार नौशाद से हुई और यहीं से शकील का फिल्मी सफर शुरू हुआ। शकील ने दर्द, बैजू बावरा, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मुगल आजम और मेरे महबूब जैसी फिल्मों के लिए तराने लिखे। 20 अप्रैल 1980 को आप इस दुनिया फानी से विदा हो गए।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

आप उर्दू में लिखते रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए ऐसे शख्स की जहानत का आलम क्या होगा। आप आज़ादी की मुहिम से भी जुड़े रहे। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशाल, रूह कायनात, नगमा साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज़ व कायनात, चिरागां, हज़ार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयां और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखीं। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी

इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए।

0: विकास और अवसर की जानकारी श्रोताओं के दिल में।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी अच्छी कलाकार हैं दिव्या श्रीवास्तव। इनके सुर में लीजिए, सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना।

इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आज की कलाकार थी दिव्या श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हिंदी में समाचार होंगे कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत शुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

आकाशवाणी एक ऐसा सफर, एक मानव जीवन के लिए एक ऐसी उपयोगी संसाधन जो किसी जमाने में किसी गांव शहर में किसी के स्तर का सूचक बन करके रहा, दूरांचल तक अपने माध्यम से सूचनाएं साहित्य संस्कृति प्रेषित करने का माध्यम रहा। किसी किसी के पास रेडियो हुआ करता था जो धीरे धीरे बन गया जन जन की आवाज, जो बना पूरे देश की आवाज, हमारी आवाज, आपकी आवाज, हमारे प्रयागराज की आवाज, वॉइस ऑफ प्रयागराज बना हमारा रेडियो। आकाशवाणी प्रयागराज देश के तमाम आकाशवाणी केंद्रों में लगभग छठवें नंबर का आकाशवाणी केंद्र बना। 1949 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर आकाशवाणी के साथ जुड़कर आकाशवाणी प्रयागराज ने भी अनेकों मील के पत्थर स्थापित किए।

0: आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा माध्यम था एक जमाने में जिसके माध्यम से हमारा जीवन संचालित होता था। हर घर में घड़ी नहीं थी, रेडियो के कार्यक्रमों से हम लोग समय का अंदाजा लगाते थे, कौन सा कार्यक्रम कितने बजे आता है, और उससे हमें पता चल जाता था कि समय कितना हो रहा है। देश दुनिया की खबरों को जानने का एकमात्र माध्यम आकाशवाणी था। हर जगह समाचार पत्र नहीं पहुंच पाते थे, हर घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। अभी अगर 70 के दशक की बात करें तो मुश्किल से गांव में एकाध टेलीविजन मिला करते थे, लेकिन आकाशवाणी हर जगह धीरे धीरे पहुंच रहा था। आज आकाशवाणी को हम सुन सकते हैं रेडियो सेट पर, अपने मोबाइल फोन के रेडियो ऐप पर, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, और इंटरनेट के माध्यम से तो आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों को देश दुनिया में कहीं पर भी जाकर लगातार सुन सकते हैं। आकाशवाणी की शुरुआत 1920 से 30 के दशक में हुई थी निजी रेडियो क्लब से। उस समय ये एक सरकारी संस्थान नहीं था, बल्कि निजी रेडियो क्लब में से इसकी स्थापना हुई थी। जून 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब से भारत में इसके प्रसारण की शुरुआत हुई। 23 जुलाई 1927 को प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने बॉम्बे स्टेशन शुरू किया। 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता स्टेशन शुरू हुआ। 1 मार्च 1930 को यह कंपनी काफी घाटे में चली गई, और इस प्रसारण को जब नहीं संभाल पाई तो इसके प्रसारण की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली। 1 अप्रैल 1930 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS की शुरुआत हुई।
1: मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर

0: समझने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।
1: समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा और आकाशवाणी ने भी अपने कलेवर बदलते रहे। 8 जून 1936 को ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 19 जनवरी 1936 को आकाशवाणी से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ। समाचार बहुत बड़े आकर्षण रहे तब से लेकर आज तक आकाशवाणी के माध्यम से। हमारे बड़े बुजुर्ग घर पर जब भी 7:20 का टाइम होता था, रेडियो लाओ प्रादेशिक समाचार आने वाले हैं, या फिर जो भी राष्ट्रीय समाचार आते थे, घर के बड़े बुजुर्ग बड़े ध्यान से उसे सुनते थे और आज भी युवाओं को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी हैं वो नियमित तौर पर आकाशवाणी के समाचार जरूर सुनते हैं और उससे अपने नोट्स तैयार करते हैं। 1936 में एम वी गोपाल स्वामी ने मैसूर में भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन बनाया और उसे आकाशवाणी नाम दिया। 1 अक्टूबर 1939 को पस्तो में विदेशी सेवा शुरू हुई। 1942 में नरीमन प्रिंटर ने नेशनल कांग्रेस रेडियो चलाया। यहीं से गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुई, इसका प्रसारण किया गया। और 1947 में भारत में 6 रेडियो स्टेशन बन चुके थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली,

और लखनऊ, और उसके बाद फिर नंबर आया आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का, जिसकी स्थापना 1949 में हुई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम मिला। ऑल इंडिया रेडियो का नाम ऑन एयर नाम आधिकारिक रूप से आकाशवाणी रखा गया, और इसका ध्येय वाक्य रखा गया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिस भावना के साथ आज भी आकाशवाणी के सभी केंद्र सेवाएं दे रहे हैं। 1958 में AIR की पत्रिका द इंडियन लिसनर का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। रेडियो ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के कार्यक्रमों से ग्रामीण भारत को बदला। युववाणी, नारी जगत, देशकाल, संगीत सभा जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। धीरे धीरे प्रसारण की अवधि भी बढ़ाई जाने लगी। 15 नवंबर 1997 में प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के अंतर्गत सम्मिलित हो गए।

0: कितना बढ़िया लगता है इन गीत को जब हम सुनते हैं, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, हर किसी को जो उसके दिन होते हैं, जो उसका गोल्डन मोमेंट होता है, वो उसके हृदय में, जहन में बिल्कुल उसी तरह तरोताज़ा रहता है जिस वक्त उसने उस पल को जिया होता है। तो रेडियो के जो प्रसारक हैं और जो इंजीनियर्स की टीम है, जो प्रशासन में है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी भूमिका मैं बताऊं सुधीर श्रोता बहुत बड़ी है। एक अभी ऑल इंडिया रेडियो ने ही एक सर्वे कराया कि क्या हमारे देश का जो प्रसारण है, जो ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण है, किसी और देश में भी सुना जाता है। अभिनव जी, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, स्पेन में वहाँ पे टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, अपना न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, जब वहाँ पे बहुतायत में टमाटर हो जाते हैं तो भारत से कुछ लोग जाते हैं, टमाटर को चुनते हैं और बाकी के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। अब उस समय जो भारत के लोग होते हैं, अकेले होते हैं, उनको स्पेनिश नहीं आती, जो लोग जाते हैं उनका साथी कौन बनता है? न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से हमारा जो केंद्र है और विविध भारती, मतलब प्रयाग, मुझे जानकर इतना आश्चर्य हो रहा था कि जो हमारे तकनीकी विंग के लोग हैं, उन्होंने जब बताया कि आप ये आंकड़े देखिए, तो सहसा मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि स्पेन में जहाँ के लोग वो हिंदी में सुन रहे हैं।
1: और न्यूज़ ऑन AIR ऐप आ जाने के बाद हम कहीं भी विश्व में कहीं भी बड़ी आसानी से सुने जा सकते हैं। आपको बस लाइव स्ट्रीम करना है, आम आकाशवाणी लाइव स्ट्रीम होने लगेगा और आप हमारे कार्यक्रम बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। बाकी एक सवाल ब्रिगेडियर साहब मन में आ रहा है, जब बात होती है फौजियों की, जब बात होती है, यूं तो सपना होता है बहुत लोगों का फौजी बनना, लेकिन एक डर भी होता है, ये अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, खासकर तब जब वास्तव में वो चीज़ होती है जिसके लिए फौजियों को भर्ती किया जाता है, यानी कि युद्ध, वॉर। उस समय की अगर मैं बात करूँ, आपका अनुभव लंबा चौड़ा रहा है, तो कुछ एक ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने नक्शा बदल दिया, जिन्होंने हमको गर्व करने का मौका दिया, बहुत सारे हमारे फौजी उसमें शहीद हुए, घरों के बेटे शहीद हुए, पत्नियों के पति शहीद हुए। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो उस समय भी क्या मुस्तैद था आप लोगों की तरह, आकाशवाणी?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उसी तरीके से, उसी जोश में और उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ में मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो पूरा मुस्तैद था। मेरे हिसाब से ऑल इंडिया रेडियो की सबसे बड़ी जो खसूसियत है, या आप बोल लीजिए करेक्टरिस्टिक है, वो है पहली प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। सो जिस हिसाब से जहाँ पर भी जो जरूरत होता है उसी हिसाब से उनके प्रोग्राम आप लोगों के रहते हैं। जैसे आपने बताया कि लड़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल जो न्यूज़ के बुलेटिन आते थे, जो न्यूज़ अपडेट आते थे स्वतंत्रता के बाद से ही लेकर और लेटेस्ट अभी तक के लड़ाइयों में या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो भी न्यूज़ इनपुट आते हैं एकदम प्रमाणिक और ऑथेंटिक होते हैं। उसमें कोई, जैसे हम आजकल देखते हैं आजकल के ज़माने में स्पीड के कारण कई चैनल और कई मीडिया में वो गलत न्यूज़ आती है, वो चीज़ ऑल इंडिया रेडियो में बिल्कुल नहीं है। इसके कारण एक भरोसा है, और साथ ही एक वो भी मैं बताऊं कि लड़ाई में, लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में या युद्ध तकनीक में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक होता है, जो कि मनोवैज्ञानिक युद्ध अगर उसको बोलें, उसमें भी ऑल इंडिया रेडियो का योगदान रहा है, चाहे वो 1971 की लड़ाई रही हो या पहले की लड़ाइयाँ रही हों, उससे किस तरीके से हम केवल अपने देशवासियों को ही जो असलियत है उससे वाकिफ नहीं करा रहे हैं, बल्कि जो पड़ोसी देश है वहाँ पर, जो हमारे दुश्मन देश था, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के फौजियों को हम अपनी चीज़ से, जो एक्चुअल चीज़ है उससे उनको वाकिफ करा रहे थे, और उनकी अपने सरकार या उनकी अपनी फौज का जो दोष है, जो झूठ है, उसका पर्दाफाश कर रहे थे। तो बिल्कुल आपके एकदम बात से ये हमेशा कर्मठ रहा है, और उसके बीच में जब भी ऑपरेशंस के बीच में जो ब्रेक मिला है, जब आदमी रेस्ट, जो सोल्जर है रेस्ट, रिकूप और रिफिट के लिए आया है, उस समय जो मनोरंजन के तौर पर, जो फैमिली से कनेक्ट करने के लिए जो बाकी चीज़ें हैं वो उसको दोबारा स्फूर्ति से भर देती हैं और उसको इनेबल करती हैं अपनी ड्यूटी उसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए।
0: बिल्कुल, अभी जब हम लोग गूंज के लिए बैठे हुए हैं, उससे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, नाजा मैम आप कह रही थी कि जब हम बात करें कि हमारे फौजी भाई लोग बहुत काम करते हैं, या हमारे देश के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, महिलाएँ हैं, सभी लोग अपनी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने देश के विकास में, व्यक्ति

0: के विकास में। तो आपने कहा एक समय आया था जब लोगों का मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ और लता जी को बुलवाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप अपनी आवाज लोगों की आवाज में बदल दीजिए ताकि लोग एनर्जाइज हो सके, उठ सके। फिर वो गाना कौन सा निकला था जब आपने कहा वो वाक्या सुनाई?
1: जी जी नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। और ये चाइना वार के जमाने की बात थी और उस वक्त थोड़ा सा मॉरल डाउन हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा शो किया गया, उसमें लता जी ने गाया ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। और उस वक्त जो मजमे की हालत थी वो सकते में था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रो रहे थे और इसने वो काम किया इस गाने ने फौजियों के दिल पे जो बारूद पे आग करती है, उनके अंदर इतना जोश भर दिया कि वाकई हमारी हस्ती इतनी इम्पॉर्टेंट है मुल्क और कौम के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की हिफाजत के लिए।
0: अभिनव जी, इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है रिकॉर्ड किया गया और रेडियो के माध्यम से पूरे देश में किया गया। आप सोचिए कि लोग जब इस गाने को सुने होंगे ऐ मेरे वतन के लोगों,
2: मैं आकाशवाणी पर ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद शैलेंद्र जी ने ये लिखा था।
1: जी जी,
2: आकाशवाणी पर ही मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था।
0: जी जी,
2: उन्होंने जब किसी राइटर का, किसी लेखक, किसी कवि को सुरों में पिरोया जाता है तो ये उसके लिए, खासकर अगर पिरोने वाला व्यक्ति लता जी जैसा हो, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि अभी नाजिया मैम ने बताया कि लोग रो रहे थे वहाँ पे, लिटरली रो रहे थे, ये होती है आवाज़ की ताकत, ये होती है।
1: जी बिल्कुल, आ जाते हैं।
2: तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ये शब्द इस तरीके से असर कर सकते हैं। शब्द कैसे असर करते हैं, शब्द कैसे दिखाते हैं, आवाज़ें कैसे दिखाती हैं, जो हम कोशिश करते हैं कि हम एक शब्द चित्र बना करके, अगर सर्दी का मौसम है, हम बद्रीनाथ में हैं, सामने आगे पीछे पहाड़ हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो सिहरन, वो ठंडक और वो जो दृश्य हमारे सामने है वो हम इस तरह से बताएं कि देखने वाले को थोड़ी गर्मी में अगर वो बैठा है तो थोड़ी ठंडक महसूस हो, थोड़ा अच्छा लगे। और यही हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। नासिया मैम, एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ज़रूरी प्रश्न है मेरे ख्याल से और युवाओं से ही जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ को लेकर के सरकार बहुत सतर्क है, आप बच्चियों को पढ़ाती हैं, आपको क्या लगता है युवाओं को इसको किस तरीके से लेना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है तो ये जिम्मेदारी बनाने में आपका, शिक्षकों का और उनका खुद का जो एक वक़ार है वो कैसे काम करता है, करना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि युवाओं को मुख्य धारा से, सही धारा से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला अगर एक है तो गलत रास्ता दिखाने वाले 25 हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो बहुत ज़रूरी है ये कि बच्चे के अंदर शुरू से ही एक एनालिटिकल पावर डेवलप किया जाए, सही और गलत की पहचान डेवलप की जाए, तो ही ये मुमकिन है। और ये शायद सिर्फ स्कूल नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखिए अब बहुत तेज़ी से ज़माना बदल रहा है और एजुकेशन का भी कमर्शलाइजेशन हो चुका है। हमारा स्कूल सबसे आगे हो
0: जी,
1: तो उसमें वो नैतिक शिक्षा वगैरह तो सब पीछे चली जाती हैं।
2: सही बात है,
1: जो आज के दौर में, तो इसलिए फैमिली का, परिवार का बहुत अहम रोल है, सराउंडिंग का रोल है, हम क्या चुने, किधर जाएं। अब टीवी तो किसी घर में खुलता नहीं है
0: जी,
1: और रील्स वगैरह कुछ भी, तो सुनने और पढ़ने की आदत डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सुनते हैं और जो पढ़ते हैं वो सही होता है।
0: बिल्कुल, और इसमें रेडियो ने बहुत अहम भूमिका निभाई है,
1: बहुत अहम।
0: जब हम बात करते हैं कि हम क्या सुने, भाषा पर बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैंने रेडियो से अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत सीखी है। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे जो लोग रहे हैं, जो इस प्रसारण यात्रा में साथ चलते आए हैं, उन्होंने कैसे बारीकी से शब्दों को देखा है, उसकी आवाज़ को देखा है। जैसे एक नदी बहती है उतार चढ़ाव करके, वैसे ही प्रसारकों ने, मैं बताऊं सिद्धेश होता हूँ, आवाज़ को वैसे ही बना करके, देख करके आप तक पहुंचाया है। तभी शायद जो हम शब्द बोल रहे हैं, बहुत सारे शब्द हमारे नहीं हैं, न वो आवाज़ें हमारी हैं, वो न जाने किसकी आवाज़ हमारी आवाज़ में है, हम ये बोल नहीं सकते।
2: और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब कोई कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो आप

0: नहीं रहे होते हैं रेडियो पे, आपको दिखाई पड़ना होता है। आप
1: हाँ.
0: कैसे दिखाई पड़ सकते हैं, कैसे? मैं बार बार युवाओं पर इसलिए आ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि अब जो एक तरह का माहौल है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत ज़्यादा युवाओं के हाथ में है। फौज जानी जाती है अनुशासन के लिए, फौज जानी जाती है अपने डिसिप्लिन के लिए। ये अनुशासन फौज में कैसे आ जाता है युवाओं में, जब नए रंगरूट भर्ती होते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है? क्या ये घर से नहीं हो सकता कि ये इतना अनुशासन, इतना डिसिप्लिन हमारे अंदर, सही और गलत को चुनने का, घर में नहीं हो सकता ये?
2: जी बिल्कुल, देखिए जैसे नाजिया मैम ने भी बोला कि पहली सिखलाई घर से ही होती है, तो और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ये अनुशासन परिवार चाहे तो बच्चे में घर से ही आ सकता है। बचपन से चालू हुआ, स्कूल से चला, और जहाँ पर भी जाता है, जिस माहौल में जाता है, वहाँ पर अनुशासन अगर बना रहता है तो हर जो हमारा नागरिक है उसका जीवन वैसे ही अनुशासित रहेगा जैसा कि एक फौजी में रहता है। क्योंकि फौज में क्या है, जब बचपन के बाद, स्कूल के बाद में जब वो फौज में आया, जो वहाँ माहौल है, जो वहाँ पर एक अनुशासन है, एंड उसके अलावा जो एक नियम पालन करने की वहाँ पर जिस पे तवज्जो है और जिस पे एक बेसिक सिखलाई है, वो अपने आप ही आदमी के, फौजी के, सैनिक के स्वभाव में आ जाता है। तो बिल्कुल अगर ये परिवार से हम लोग शुरू में ध्यान दें बचपन से, तो वो बिल्कुल एक अच्छे हर बच्चे में, हर इंसान में आ सकता है, और हर नागरिक उसी तरीके से अनुशासित हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं सर कि हम बचपन से घर में ये सारी कोशिशें करें, मैं बताऊं, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी पे बच्चों के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम, मजदूर भाइयों के लिए कार्यक्रम, हम सभी वर्गों के कार्यक्रम बनाते हैं, और मैं कहूँ शब्दों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से हम लोगों के घरों में छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताते हैं कि भाई घर को कैसे रखें, अपनी भूमिकाओं को कैसे ईमानदारी से जिए, वो चाहे पत्नी की भूमिका हो, सास की भूमिका हो, या फिर मुखिया की भूमिका हो, बच्चों को कैसे संवारे। आपने वो गीत सुना है, गज़ल फरीदा खानम जी की, मैं चाहती हूँ कि नाजिया मैम बताएं उसके बारे में।
3: जी, फरीदा खानम जी की गज़ल, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
0: बहुत ही खूबसूरत गजल है।
1: तो ये जो गजल है, जैसे ही रेडियो सेट पे गूंजती रही है, लोग उसका वॉल्यूम तेज करते हैं, और सारे लोग, पहले तो चाय की दुकान पे अभी भी लोग इकट्ठे होते हैं, और वो जब सुनते हैं, एक जो आप कह रहे थे कि काम के बीच में सुकून का पल होता है, वो शायद यही पल होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि जब पहली बार ये गज़ल गाई गई होगी, आज भी, अब तो बहुत उम्र हो गई है उनकी, लेकिन आज भी जब उनकी आवाज़ में ये गज़ल सुनी जाती है, या वो कहीं पर शो कर रही होती हैं, तो उनसे इस गज़ल की फरमाइश ज़रूर होती है। आज भी वही भाव तब भी आते हैं, और वो उतने ही प्रेम से गाती हैं।
1: तो चलिए, तो इस आवाज़ में डूबते चले जाएं हम लोग।
0: बिल्कुल।

0: अभिनव जी, जैसे ही ये गजल हमने अभी सुनी, आज जाने की जिद ना करो, मुझे याद है कि लोग रेडियो सेट स्पेशली रात में लगभग 8-10 बजे वो ऑन करते हैं और वो खटिए पे या चारपाई में, और वो आसमान में तारे रहते हैं, और फरीदा खानम जी की ये जो गजल बजती है, वो सूखी रोटी भी ऐसे अपना काम करती है शरीर में, जैसे ऐसा लगता है जैसे एक दीपक सजल रहा हो और एक सुंदर एहसास दे जाती है।
1: और ये दिनचर्या का हिस्सा था बहुत लोगों, अभी भी है कि वो जब तक रात में छाया गीत नहीं सुन लेते थे, कमल शर्मा साहब की वो मखमली सी आवाज जैसे लोरियां सुना रही हो, या कहीं पहाड़ में जहाँ लाइट ना हो रेडियो बज रहा हो और लता जी की आवाज आ रही हो कि लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना, और वो पूरी वादियों में वो प्यारी सी आवाज गूंज रही हो रही हो। एक प्रश्न मैं आप दोनों से करना चाहूंगा, ब्रिगेडियर साहब और नासिया मैम, बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि रेडियो सुनता कौन है, आपको क्या लगता है?

0: कि आज रेडियो की प्रासंगिकता कम हुई है, या इस पर आपके क्या विचार हैं?
1: देखिए, रेडियो सुनता कौन है ये कहा जा रहा है, बहुत कहा जा रहा है, लेकिन रेडियो की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमको दूसरे मीडिया सोर्स में, आज सबके घर में टीवी लगा होता है, कोई नहीं खोलता, कोई नहीं यूट्यूब चैनल देखना पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं करती, मैं भी सिर्फ मोबाइल पे रीडिंग करती हूँ। पर क्यों? क्योंकि उस पे जो मिल रहा है हमको वो कहीं कुछ काम का नहीं मिल रहा है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। रेडियो से जो हम जुड़ते हैं तो वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करता है। पहले भी हर वर्ग के लिए रेडियो के पास प्रोग्राम थे, कृषि वालों के लिए था चौपाल, बच्चों के लिए होता था नन्ही दुनिया, औरतों के लिए होता था गृहलक्ष्मी, और उर्दू पसंद करने वालों के लिए दोपहर में आती थी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, जिसमें उर्दू के बड़े बड़े राइटर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता था, तो हमको कुछ मिलता था। और वो आज भी कहीं ना कहीं रेडियो दे रहा है, लेकिन जो डिवाइसेस बदल गए हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे जो श्रोता हैं वो मिसगाइडेड हैं। तो थोड़ी हम मुझे भी आज मालूम हुआ कि रेडियो की ऐप है, मैं ज़रूर इंस्टॉल करूँगी और आज से मैं सुनूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये रील्स वगैरह, तो आज से मैं भी सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी।
2: ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वादा है
0: बिल्कुल
2: इस मंच से।
3: बिल्कुल ये वादा है। जी देखिए, मेरे हिसाब से जो लोग बोलते हैं कि रेडियो सुनता कौन है, शायद वो असलियत से दूर अपने एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में, आधुनिक ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं। आप जाइए, जैसे मैंने पहले बोला, आप किसी भी आप बॉर्डर इलाके में जाइए, वहाँ पर कोई भी फौजी होगा, उसका हमेशा एक साथी होता है, वो होता है रेडियो। और अपने जो टुकड़ी है, छोटी टुकड़ी है, 10 लोगों की या 30 लोगों की सेक्शन या प्लेटून, वहाँ पर भी जब खा रहे हैं या एक साथ में बैठे हैं, वो एक साथ बैठ करके प्रोग्राम सुनते हैं। आप जाइए गांव में, चौपालों में, वहाँ पर लोग सुन रहे हैं। आप जाइए पान की दुकान में या पर नॉर्मल होटल में, वहाँ पर लोग सुन रहे हैं। जैसे नाजिया मैम ने सही बोला कि ये शायद अकेला एक ऐसा मीडियम ऐसा मीडियम मीडिया है जिसमें कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, हर वर्ग के लिए, इसीलिए बड़ा रेलिवेंट है उनके लिए, और अंतिम पायदान पे जो इंसान है उसके लिए भी ये अवेलेबल है। और मुझे बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया रेडियो ने तकनीक को सही तरीके से अपनाया है। आपने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब लॉन्च किया है, आपका ऐप है, लाइव चैनल है, सो बहुत ही अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो सुनते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री की मन की बात भी इसी पे आती है।
0: बिल्कुल
2: अभिनव जी, आपको पता है मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकातें ट्रेन में हुई हैं, बसों में हुई हैं, चाय की दुकान या फिर जो बूंदिया समझते हैं, बूंदिया और सेव, वो मीठी वाली जो लड्डू जिससे बनता है, सब्जी की दुकान पर वो कहते हैं कि रेडियो हमारा है। तो मैंने कहा कि जी रेडियो आपका कैसे है? तो बोले आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो मुझे बताइए। तो उन्होंने, मैंने ये नहीं बताया कि मैं आकाशवाणी में काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके साथी छोड़ कर चले गए, जो इस दुनिया में नहीं रहे, रेडियो उनका साथी बन गया। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी रेडियो बना है,
1: बिल्कुल
2: वो रोशनी रेडियो है। तो मुझे लगता है किसी ने ये कहा कि हम किचन में रेडियो ऑन कर देते हैं जी, और उस झगड़े से हम मुक्त हो जाते हैं जो घरेलू झगड़े होते हैं। और मेरे हृदय में, मैं आपको बताऊं, साथी, और मैं जो हमारे अनाउंसर हैं, ये जो अभी प्रेमेंद्र जी हैं, अभिनव जी आप, और जो बहुत सारे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, उनके नाम लेते हुए मैंने उन लोगों को देखा और सुना है, मुझे लगा कि भाई ये तो जादू है जो आसमान से उतरा और लोगों के दिलों में बस गया।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके पीछे बहुत मेहनत भी होती है। आप जानती हैं कितनी मेहनत की जाती है। मैं आप दोनों को भी बताना चाहूँगा, नाजिया मैम और ब्रिगेडियर साहब, कि जैसे आप प्ले की बात कर रही थी, रेडियो प्ले, उसमें अगर कोई इफेक्ट चाहिए होता था, जैसे पानी का इफेक्ट चाहिए होता था, पानी की आवाज़ का इवन होता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बहुत सारे नेट पर इफेक्ट्स हैं उनको ना लेकर के हम लाइव इफेक्ट्स जाएं, उनको कैप्चर करें, रिकॉर्ड करें और उनको यूज़ करें। और ऐसा हम करते हैं। पानी की आवाज़ लेनी, चप्पू की आवाज़ लेनी है तो हम नाव पे बैठेंगे।
1: वाह,
4: और अगर इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत से हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों तक ये पहुँचती है और लोग पसंद करते हैं, इसको प्यार देते हैं। मुझे लगता है समय
2: अब ये कह रहा है, अभिनव जी
4: जाने की जिद कर रहा है।
2: आज जाना होगा, फिर से वो समा होगा, फिर से हमारे स्टूडियो में गेस्ट होंगे और हम लोग फिर बात करेंगे। सुधीर श्रोता जो इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव देख

0: रहे हैं, सुन रहे हैं, रेडियो पे सेट पे सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, अपने कार में बैठे अगर आप सुन रहे हैं, तो हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स, हमारा जो नंबर है 8004926250 पर अपना संदेश कैसा लगा आपको कार्यक्रम, आप चाहें तो अपने वॉइस मैसेजेस भी हमें भेज सकते हैं, हम उसे प्रसारित करेंगे, क्योंकि आपके बिना हम नहीं और हमारे बिना ये जो पूरा जहां है वो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन सा रहेगा। तो चलिए हम और आप मिलकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए वाली इस संस्था के साथ जुड़ते हैं और इसको आगे अनवरत बढ़ाते रहते हैं।
1: बिल्कुल, हम आप दोनों से भी ये गुजारिश करेंगे ब्रिगेडियर साहब और नाज़िया मैम की, चलते चलते एक नोट, कुछ आप अगर हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें, उनसे अपील करना चाहें, अपना अनुभव कैसा लगा आपको बताना चाहें।
2: जी जी जी, आकाशवाणी का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। आकाशवाणी नींव की ईंट है मीडिया की दुनिया में, और एक शेर नज़र करते हुए मैं विदा लूँगी। नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। थैंक यू।
3: मैं अभिनव जी और नेहा जी, मैं अपना सौभाग्य मानूंगा इसके लिए कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। और आपके श्रोताओं को मैं एक जस्ट ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम सब, आप सब अच्छे इंसान बने, जिम्मेदार नागरिक बने और अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे तरीके से निभाएं, जिससे कि हम सब मिल करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, जिससे कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहेगा, ये कारवां रुकेगा नहीं। और अभी आप बुंदिया का नाम ले रही थी नेहा जी, तो आपको पता है कि हमारे शायरों ने रेडियो में स्वाद भी खोज लिया है। सरफराज शाहिद साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा शेर है, बड़ा लज्जतदार शेर है कि गुमा होता है शाहिद रेडियो पे सुन के मौसीकी, मौसीकी मतलब संगीत, म्यूजिक। गुमा होता है शाहिद रेडियो पे सुन के मौसीकी, गुमा होता है शाहिद रेडियो पे सुन के मौसीकी कि पक्के रंग और नमकीन गरारे एक जैसे हैं।
0: क्या बात है,
1: पक्के रंग की तुलना उन्होंने नमकीन गरारों से की, जो मठरियां होती हैं उनसे की। और बिल्कुल, ये जो हमारा कारवां है ये पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है, बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि हमारी तरफ से आपको जो भी मिलेगा प्रामाणिक मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूरी नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ देना ज़रूरी नहीं है, सबसे तेज़ होना ज़रूरी है, विश्वसनीय होना, और यही विश्वसनीय होना।
0: बिल्कुल, साथ चलेंगे, साथ चले हैं, साथ चलेंगे, साथ देंगे। तो इसी के साथ हम सभी अपने गेस्ट को कहते हैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सुधीर श्रोताओं का शुक्रिया जो इस कार्यक्रम से जुड़े और सुने, और
1: बिल्कुल सभी का बिल्कुल शुक्रिया कहते हैं। और चलते चलते पूरे देशवासियों, जो भी हमको जहां से भी सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना समय दिया, इतना प्यार दिया। और पूरे वतन, वतन जो कि हमारा हमेशा आबाद रहेगा, हम पूरी कोशिश हमेशा ये करते रहेंगे कि आप तक हमेशा उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में आज तक पहुंचते आए हैं। ये 90 साल कब, 190 साल, 290 साल आपके प्यार से हो जाएंगे हम नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़िया मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपने बुलाया।
0: तो अब हम कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा विशेष सजीव प्रसारण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरीब।

0: श्रोताओं, आज स्थापना दिवस के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमने अपने श्रोताओं से बातचीत की, तो सुनिए उनके विचार।
1: नमस्कार, मैं संजय सिंह तोमर, आकाशवाणी प्रयागराज का एक बेहद गौरवान्वित।
2: नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता सिंह है और मैं प्रयागराज से हूँ। सबसे पहले तो आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 9 दशकों का ये अद्भुत सफर केवल प्रसारण का इतिहास नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं और विश्वास की अमूल्य धरोहर है। आकाशवाणी ने समय के साथ न केवल मनोरंजन किया है, बल्कि समाज को शिक्षित और जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, और यही कारण है कि आज भी इसकी मधुर आवाज हर आयु वर्ग के श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान रखती है। मुझे आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों की सबसे सुंदर बात यही लगती है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जहाँ एक ओर गृह लक्ष्मी महिलाओं के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारियां लेकर आता है, वहीं पनघट और लोक संगीत आधारित कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं। हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रम श्रोताओं को सीधे अपनी पसंद के गानों से जोड़ते हैं, जबकि एक ही कलाकार हमें महान कलाकारों के योगदान और उनकी यादगार प्रस्तुतियों से परिचित कराता है। इसी प्रकार कृषि जगत और पंचायत घर जैसे कार्यक्रम ग्रामीण भारत और हमारे अन्नदाताओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाकर समाज में जागरूकता और ज्ञान का प्रसार करते हैं। आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु है। और बदलते समय और नई तकनीकों के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता, गरिमा और लोकप्रियता को जिस प्रकार बनाए रखा है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। आज 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं आकाशवाणी प्रयागराज सहित पूरे आकाशवाणी परिवार को पुनः हार्दिक बधाई देती हूँ। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी प्रयागराज हमारे लिए केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि भावनाओं, ज्ञान, संगीत और अपनेपन का एक खूबसूरत सा संगम है। आपके सभी उद्घोषकों, निर्माताओं और पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद। जय हिंद।

आदमी और इंसान फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी।

0: News has revealed an organized cross-border syndicate sourcing methamphetamine from Myanmar. Illegal earnings of more than 142 crore rupees linked to the drug trafficking network have been identified so far. In the Philippines, five people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित अनंत लाल से शहनाई वादन सुनिएगा, राग शुद्ध सारंग और मुल्तानी। रात 10:30 पर पंडित उमा शंकर से राग हेम विहाग सुनिएगा शहनाई वादन पर। फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद 12:30 पर। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर सुनेंगी यूटीआई कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर चित्रा पांडे से नेहा गुप्ता की बातचीत। दोपहर 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा, कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा, शशि बाला जैन और रामबाबू यादव। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी नन्ही दुनिया कार्यक्रम से शाम 5:00। युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर। किसान भाई पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर लोक भाषा कविता पाठ सुन सकेंगे सोमनाथ से, और साथ ही फूल चंद्र शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत सुनिएगा। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता प्रसारित होगी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी में यथार्थवाद, वार्ताकार होंगे रवि भूषण पांडे। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 7:45 पर, कलाकार हैं उत्तम कुमार मले। रात 8:00 चित्रपट संगीत और 8:35 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम में रोग के समय कोशिका में होने वाले बदलाव विषय पर प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव से की गई बातचीत सुनिएगा। कहकशा गजलों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत रात 10:00। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: और अब सुनिए, स्थापना दिवस के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमने अपने श्रोताओं से बातचीत की, लीजिए सुनते हैं।
1: श्रोता, संगम की इस पावन धरती से उठने वाली आकाशवाणी प्रयागराज की आवाज सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि मेरे जैसे करोड़ों श्रोताओं के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। आज मेरे लिए बेहद भावुक और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारी अपनी आकाशवाणी अपने गौरव में 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस शानदार और ऐतिहासिक यात्रा के लिए आकाशवाणी के सभी अधिकारियों, प्रस्तोताओं, तकनीशियनों और समस्त परिवार को मेरी तरफ से 90वें स्थापना दिवस की कोटि कोटि बधाई। मेरी सुबह की चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक इस स्टेशन का हर कार्यक्रम मेरे दिल के बेहद करीब रहता है। चाहे वो हेलो फरमाइश में अपनी पसंद के गानों का इंतजार करना हो, या फोन इन प्रोग्राम के जरिए सीधे संवाद की वो आत्मीयता। कृषि जगत और पंचायत घर ने जहां हमारे ग्रामीण भाइयों को नई राह दिखाई है, वहीं तरक्की का रास्ता खोला है। वहीं गृह लक्ष्मी के जरिए घर आंगन की बातें दिल को छू जाती हैं। दोपहर के सन्नाटे को सुरों से भरता पनघट हो या किसी एक फनकार के जादू को समेटे एक ही कलाकार, इन कार्यक्रमों ने यादों का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया है। जब रेडियो पर लोकगीत गूंजते हैं तो माटी की सौंधी खुशबू का एहसास होता है।

0: युवावाणी हमारे युवाओं के सपनों और उनकी ऊर्जा को नई उड़ान देती है। आत्मा को सुकून देने वाला शास्त्रीय संगीत और ज्ञानवर्धन करती भेंट वार्ता। सच कहूं तो आकाशवाणी प्रयागराज का हर एक रंग निराला है। आप सिर्फ सूचना और मनोरंजन नहीं देते, आप हमारी संस्कृति और संस्कारों को सहेजने का महान काम करते हैं। 90 वर्षों का ये सफर इस बात का गवाह है कि तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन आकाशवाणी प्रयागराज का अपने श्रोताओं से दिल का रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। इस अटूट रिश्ते के लिए बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आकाशवाणी प्रयागराज को 90 वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। यूं ही हमारे जीवन को सुरों और ज्ञान से महकाते रहिए। आपका अपना नियमित श्रोता संजय सिंह तोमर।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए। पंडित अनंत लाल से राग शुद्ध सारंग शहनाई वादन पर।

0: अभी आप शहनाई वादन पर पंडित अनंत लाल से राग शुद्ध सारंग और मुल्तानी सुन रहे थे। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब सुनते हैं अपने श्रोताओं के विचार।
1: नमस्कार, मैं प्रयागराज से परिज्ञा सिंह। आज आकाशवाणी के 90 गौरवशील वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर बात करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए आकाशवाणी से जुड़े प्रत्येक अधिकारी, उद्देशक और तकनीकी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा, संस्कृति और संस्कारों का संरक्षक है। विशेषकर आकाशवाणी प्रयागराज ने साहित्य, कला और शास्त्रीय संगीत को जिस तरह संजो

0: रखा है वो वंदनीय है। यहाँ से प्रसारित होने वाले विचार प्रधान कार्यक्रम, परिचर्चाएं और साहित्यिक प्रस्तुतियाँ हमारे ज्ञान वर्धक के साथ साथ समाज को एक सकारात्मक दिशा देती हैं। आज के इस भागदौड़ भरे डिजिटल युग में भी आकाशवाणी की आवाज में जो ठहराव, विश्वसनीयता और शुद्धता है वो अद्भुत है। ये 90 वर्षों की अटूट निष्ठा का ही परिणाम है कि आज भी हम गर्व से कहते हैं ये आकाशवाणी है। आप सभी को इस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं हूं जयंत घोष, आकाशवाणी प्रयागराज का एक निष्ठावान श्रोता। आज हम सभी रेडियो प्रेमियों के लिए बेहद गर्व और ऐतिहासिक दिन है। हमारी जिंदगी का हर सुख दुख का सबसे सच्चा और भरोसेमंद साथी आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरा कर चुका है। इस अद्भुत और ऐतिहासिक अवसर पर पूरे आकाशवाणी परिवार और श्रोताओं को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां। संगम नगरी के आकाशवाणी प्रयागराज ने हमारे दिलों को जिस तरह छुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं। युवाओं की धड़कन युवाणी सीधे संवाद और फरमाइशों का पसंदीदा माध्यम हेलो फरमाइश और फोन इन प्रोग्राम ने हमेशा रेडियो और जीवंत रूप से जुड़े रखा। हमारे ग्रामीण अंचलों की शान पंचायत घर और किसानों के मार्गदर्शक कृषि जगत से लेकर हमारी लोक संस्कृति को संजोए रखने वाले कार्यक्रम, लोकगीत, पनघट और घर आंगन को महकाने वाली गृह लक्ष्मी हर घर की पहली पसंद है। वहीं आत्मा को असीम सुकून देता शास्त्रीय संगीत किसी एक फनकार के जादू को समेटे एक ही कलाकार से सुरीली महफिल और ज्ञानवर्धन करती भेंट वार्ताएं आज भी लाजवाब और बेजोड़ है।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनें फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं आ गई हूँ मधु आपके पसंदीदा फिल्मी गानों को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में जिंदगी की दौड़ भाग से थोड़े से पलों को, यानी खूबसूरत पलों को चुरा कर हम लाए हैं कुछ आपकी पसंद के फिल्मी गानों के साथ, और इन पलों को अपने एहसासों के नाम करना है हमें। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र की शुरुआत पर और सुनते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे जिनकी फरमाइश आप सबने की है। तो पहली पेशकश उस खूबसूरत एहसास के नाम जिसे हम कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, ये तो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एक मशहूर शेर कहा है, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मोहब्बत की गहराइयों को कितनी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया है, लेकिन इस एहसास को हम और भी गहरा करेंगे आपकी पसंद के इस नगमे के साथ। और इस गाने की फरमाइश हमें की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरशी ओशिका, आदित्य जंघेल।

और अदिति जंघेल, छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष नंदिनी ने, और गाना है यादों की बारात फिल्म से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

क्या गाना था! इस गाने में वाकई कुछ बोल ऐसे थे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम। बात तो बिल्कुल सही कही है, नज़रें मत चुराइए भाई। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ होती है कुछ हमारे खूबसूरत से क्षण जो अपनों के साथ आते हैं, और कुछ ऐसे लम्हे जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो छोटी छोटी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हर खुशी में एक गम छुपा होता है, हर गम में एक खुशी का साया होता है। बस नज़र चाहिए उस साये को पहचानने की, क्योंकि ज़िंदगी तो बस एहसासों का दरिया होता है, और ज़िंदगी के एहसासों का सफ़र है ये। कभी धूप है तो कभी छांव है, और इस सफ़र को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है अपनापन। तो सुनिए एक बेहतरीन गाना जिसकी फरमाइश हमें मिली है वारसी क्लब मीरगंज बरेली से, जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, मुरादाबाद से अयूब खान, झारखंड से उत्तम भगत, कटरा पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप जिस गीत को सुनना चाहते हैं वो गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में कॉलेज गर्ल फिल्म का गीत। भाई इतने खूबसूरत गीत की फरमाइश आप लोगों ने करी है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के इतने बेहतरीन गाने बजते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में कई जगह से नए नए श्रोता शामिल होते जा रहे हैं और उन सबके नाम मैं आपको पढ़ के बता भी रही हूँ। तो श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपनी प्रतिक्रिया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको नंबर बता देते हैं, नंबर है 8004926250। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो कुछ मुश्किलें होती हैं, मगर याद रखिएगा, जिस तरह हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। ज़रूरत है बस हमें सब्र की और हिम्मत की। गम न कर अगर सुबह की शबनम ना मिली, खुश नसीब है वो जिन्हें शाम का चिराग मिला। हर रोशनी में चमक होती है, बस उसे देखने वाली आंखों की जरूरत होती है। तो हम चलते हैं इस गीत की तरफ। इस गीत की फरमाइश जिन्होंने की है उनके नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनवाऊंगी सदमा फिल्म का ये गाना।

तो इस गाने की फरमाइश हमें आई थी जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, संकल्प और कृषव सिंह। हंडिया से रेखा यादव, महेंद्र यादव। गांव फूपिया से रोशनी। मीरापुर प्रयागराज से गुन यादव, शिवानी यादव, रानू यादव और संध्या यादव। आप सुन रहे हैं संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आप की पसंद, और एक खूबसूरत सी पंक्तियां याद आ गईं। मेरा एक रिश्ता ऐसा है, ना नफरत है ना इश्क पहले जैसा है, ना सन्नाटा है ना बातों का सिलसिला पहले जैसा है। और सुनो, रिश्ते ऐसे भी ख़त्म नहीं होते, उसके नाम का असर आज भी पहले जैसा है। अब ये मत पूछो ये रिश्ता कैसा है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें की है मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन और इनके परिवार के अन्य सदस्य। त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, असम से अनूप भट्टाचार्य, सुतपा भट्टाचार्य, आगरा से राजू लवानिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का जुर्म फिल्म का ये गाना।

0: इसी के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्थापना दिवस के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमने अपने श्रोताओं से बातचीत की, तो सुनते हैं उनके विचार।
1: नमस्कार, मैं संजय सिंह तोमर, आकाशवाणी प्रयागराज का बेहद गौरवान्वित और नियमित श्रोता। संगम की इस पावन धरती से उठने वाली आकाशवाणी प्रयागराज की आवाज

0: सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि मेरे जैसे करोड़ों श्रोताओं के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। आज मेरे लिए बेहद भावुक और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारी अपनी आकाशवाणी अपने गौरव में 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस शानदार और ऐतिहासिक यात्रा के लिए आकाशवाणी के सभी अधिकारियों, प्रस्तोताओं, तकनीशियनों और समस्त परिवार को मेरी तरफ से 90वें स्थापना दिवस की कोटि कोटि बधाई। मेरी सुबह की चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक इस स्टेशन का हर कार्यक्रम मेरे दिल के बेहद करीब रहता है। चाहे वो हेलो फरमाइश में अपनी पसंद के गानों का इंतजार करना हो, या फोन इन प्रोग्राम के जरिए सीधे संवाद की वो आत्मीयता। कृषि जगत और पंचायत घर ने जहां हमारे ग्रामीण भाइयों को नई राह दिखाई है, वहीं तरक्की का रास्ता खोला है। वहीं गृह लक्ष्मी के जरिए घर आंगन की बातें दिल को छू जाती हैं। दोपहर के सन्नाटे को सुरों से भरता पनघट हो या किसी एक फनकार के जादू को समेटे एक ही कलाकार, इन कार्यक्रमों ने यादों का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया है। जब रेडियो पर लोकगीत गूंजते हैं तो माटी की सौंधी खुशबू का एहसास होता है। वहीं युववाणी हमारे युवाओं के सपनों और उनकी ऊर्जा को नई उड़ान देती है। आत्मा को सुकून देने वाला शास्त्रीय संगीत और ज्ञानवर्धन करती भेंट वार्ता। सच कहूं तो आकाशवाणी प्रयागराज का हर एक रंग निराला है। आप सिर्फ सूचना और मनोरंजन नहीं देते, आप हमारी संस्कृति और संस्कारों को सहेजने का महान काम करते हैं। 90 वर्षों का ये सफर इस बात का गवाह है कि तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन आकाशवाणी प्रयागराज का अपने श्रोताओं से दिल का रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। इस अटूट रिश्ते के लिए बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आकाशवाणी प्रयागराज को 90 वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। यूं ही हमारे जीवन को सुरों और ज्ञान से महकाते रहिए। आपका अपना नियमित श्रोता संजय सिंह तोमर।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Palta Assembly re-election held on the 21st of last month, just 48 hours before

0: शिरोडकर ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान की बड़ी तादाद को देखते हुए हर शिफ्ट में तकरीबन 4,81,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान के पुरअमन निकात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया, महकमे पुलिस और जिला हुकाम की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इम्तिहान मराकज की कड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV निगरानी के निजाम नस्ब किया गया और मराकज पर मुस्तकिल मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर्स और पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में उम्मीदवारों को नेक ख्वाहिशात दी हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम पाती में लिखा कि सनातन सकाफत में फितरत में मौजूद हर जानदार चीज को तख्लीक का अटूट हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनु के तहफ़ की कोशिशें उसी वक्त कामयाब होगी जब अवामी शराकत बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रियासत के बाशिंदों से खिताब करते हुए वजीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो फितरत को न सिर्फ सयाहों के तौर पर बल्कि तालिब इल्मों के तौर पर दरियाफ्त करें, अपने तजुर्बात को व्लॉग्स और मजामीन के जरिए शेयर करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक दीगर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वजीर आजम की क्यादत में बेमिसाल 12 साल जिसमें हिंदुस्तान में लाखों महरूम खानदानों की जिंदगियों में इज्जत, सलामती और एतमाद की शानदार दास्तान है। उन्होंने लिखा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने वाला ये 12 साल का सफर सिर्फ स्कीमों का सफर नहीं है बल्कि घरों का सफर है जहां पहली बार सहूलियात पहुंची। इन खानदानों का सफर है जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि हुकूमत उनकी दहलीज पर पहुंच गई है। उन्होंने इन तारीखी 12 बरसों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 की मुख्तलिफ निकात का जायजा लिया और जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुल्क का काबिले एतमाद अवामी नशियाती इदारा ऑल इंडिया रेडियो आज अपना 90वीं सालगिरह मना रहा है। आज के दिन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशन चलाता है। नशियात 23 जबानों और 146 बोलियों में नशर की जाती है। आकाशवाणी का नारा है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की खुशी के लिए, यानी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बहने सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

आकाशवाणी है। ये महज शब्द नहीं, एक एहसास है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत को एक सूत्र में पिरोया है। कभी रेडियो के एक छोटे से यंत्र से निकलने वाली आवाज महज ध्वनि नहीं होती थी, ये समय की धड़कन थी। समाज की चेतना थी और जनमानस की संवेदनाओं का सजीव विस्तार थी। घरों के आंगन, गांवों की चौपालें, शहरों की बैठक और खेतों की मेड़ें इसी आवाज से आबाद रहती थीं। समाचार, संगीत, साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन का ऐसा विश्वसनीय संगम शायद ही किसी अन्य माध्यम ने प्रस्तुत किया है।

0: नमस्कार, मैं हूँ रितिका अवस्थी
1: और मैं हूँ दीप्ति मिश्रा। आज जब आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर रही है, तब ये केवल एक प्रसारण संस्था की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास की एक गौरव गाथा है, जिसे हम सब ने मिलकर जिया है। आकाशवाणी की ये यात्रा 8 जून 1936 में औपचारिक रूप से शुरू हुई। स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक, युद्धों और राष्ट्रीय संकटों से लेकर विकास और प्रगति की कहानियों तक, आकाशवाणी ने हर दौर में जनता और शासन के बीच एक विश्वसनीय सेतु की भूमिका निभाई है।

एक गौरव गाथा है जिसे हम सब ने मिलकर जिया है। आकाशवाणी की ये यात्रा 8 जून 1936 में औपचारिक रूप से शुरू हुई। स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक, युद्धों और राष्ट्रीय संकटों से लेकर विकास और प्रगति की कहानियों तक, आकाशवाणी ने हर दौर में जनता और शासन के बीच एक विश्वसनीय सेतु की भूमिका निभाई है।

0: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संस्थान की जिसने भारत की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाया, जिसने सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में अमूल योगदान दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय जनजीवन की आवाज़ आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल एक प्रसारण संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास की कहानी है। ये वो माध्यम है जिसने देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोया, अनगिनत प्रतिभाओं को मंच दिया और करोड़ों लोगों को जानकारी, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान किया।
1: एक दौर था वो जब रेडियो खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी।
0: बिल्कुल,
1: ये एक लग्जरी था। लेकिन इस माध्यम की खूबसूरती देखिए कि इसने कभी अमीरी गरीबी का भेद नहीं किया। पूरे मोहल्ले या गांव में किसी एक के पास यदि रेडियो होता था तो उसे वो जहां सबसे ऊंचा खंभा होता था उस पे एंटीना बांध दिया जाता था और शाम को पूरा गांव उस ट्रांजिस्टर के इर्द गिर्द सिमट जाता था।
0: बिल्कुल।
1: वो रेडियो

0: नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का केंद्र बिंदु था।
1: एकता का इससे सुंदर परिचय दीप्ति और क्या
0: क्या
1: होगा
0: हो सकता
1: ना,
0: है?
1: जब इस वक्त हम बात करते हैं एकता की, अखंडता की, तो ये कितना सुंदर एक माध्यम साबित होता है। आकाशवाणी भारत की राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण सेवा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1936 में हुई थी, जब इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था। बाद में महान साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा सुझाए गए आकाशवाणी नाम को व्यापक रूप से अपनाया गया और आज आकाशवाणी देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय जन संचार माध्यमों में से एक है। अपने 90 वर्षों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल समाचार ही प्रसारित किए हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को, लोक परंपराओं को, संगीत, साहित्य और जन भावनाओं को सहेजने का कार्य भी किया है।
0: बिल्कुल, और अगर बात करें भारतीय संस्कृति और साहित्य के संरक्षण में इसके योगदान के बारे में, तो वो योगदान अतुलनीय रहा है। हवा महल, युवाणी और बाल संघ जैसे कार्यक्रमों ने पीढ़ियों की सांस्कृतिक अभिरुचि का निर्माण किया। इसने लोक कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, इसीलिए इसे भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जीवंत अभिलेखागार कहा जाता है। और जब बात अपनों से जुड़ाव की होती है रितिका, तो भला उन कार्यक्रमों को कैसे भुला जा सकता है जो सीधे हमारे दिलों में उतर गए। दोपहर के सन्नाटे को दूर करती जब सखियां चहकती आवाज में कहती सखी सहेली, और वो समय होता था जिसने देश की लाखों महिलाओं को एक सहेली का साथ दिया। रसोई की खुशबू के बीच गूंजता कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जो महज एक शो नहीं बल्कि हर भारतीय नारी के सामर्थ्य, उसकी कला और उसके अधिकारों की मूक गवाह भी है।
1: बिल्कुल सच कह रही हैं। और मात्र इन्हीं सब कार्यक्रमों का परिचय आकाशवाणी नहीं है। अगर हम शुरुआत की बात करें, इतिहास की बात करें, या स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो स्वतंत्रता आंदोलन से राष्ट्र निर्माण तक आकाशवाणी का इतिहास भारत के आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रेडियो ही सूचना का सबसे प्रभावशाली माध्यम था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत की पहली आवाज रेडियो के माध्यम से ही करोड़ों लोगों तक पहुंची थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रीट विद डेस्टिनी रेडियो के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचा। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण, कृषि विकास, शिक्षा विस्तार और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: बिल्कुल, और फिर दौर आता है 1957 का, जब विविध भारती ने घर घर दस्तक दी। लेकिन रेडियो के इस सुनहरे दौर का जिक्र तब तक अधूरा रह जाता है रितिका, जब तक हम उस शख्सियत की बात न करें जिसने अपनी आवाज से पूरे देश को सम्मोहित कर दिया था।
1: सही कह रही
0: है। अमीन सयानी जी की है ना। बुधवार की वो शाम कौन भूल सकता है जब देश भर की सड़कें सूनी हो जाया करती थी। लोग अपने अपने ट्रांजिस्टर से कान लगाकर बैठ जाया करते थे सिर्फ विना का गीत माना सुनने के लिए,
1: और वो आवाज गूंजती थी कि नमस्कार बहनों और भाइयों, क्या बात है।
0: और मेरी कि इसमें विशेषता ये है कि अमीन सयानी जी ने बहनों और भाइयों कहके संबोधन किया था।
1: बहुत सुंदर, कितना सुंदर संबोधन, कितना आत्मीय संबोधन। और जब बात इस कार्यक्रम की हो रही है तो, और कार्यक्रमों की हो रही, तो भारत को गाँव का देश कहते हैं। आकाशवाणी ने किसानों, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है, जैसे कृषि संबंधी कार्यक्रम, मौसम की जानकारी, पशुपालन एवं बागवानी सलाह, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, और इन सभी कार्यक्रमों ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज भी लाखों किसान आकाशवाणी के कृषि प्रसारणों से लाभान्वित होते आ रहे हैं
0: और जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ अगर ये चर्चा न की जाए कि एक तरफ घर का आंगन था तो दूसरी तरफ थी सरहद की बर्फीली चौकियां। देश की हिफाजत में तैनात हमारे जाबाज फौजी भाइयों की आकाशवाणी का कार्यक्रम जयमाला एक संजीवनी की तरह था। जब विविध भारती पर जयमाला में फौजियों की पसंद के गाने बजते थे, उनके परिवारों के संदेश पढ़े जाते थे, तो सरहद पर बैठा हर सिपाही मुस्कुरा उठता था और रातों के सन्नाटे को

0: मखमली गानों से सजाने वाला छाया गीत जिसने शब्दों और सुरों के जादू से हर दिल को सुकून दिया।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी ने कितना स्वर्णिम युग रचा है और आज तक उसी एक काम को इतने सुंदर तरीके से पूर्ण कर रहे हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं। और आकाशवाणी ने भारतीय संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के अनेक महान कलाकारों को पहचान दिलाने में आकाशवाणी का विशेष योगदान रहा है। देश के लोकगीत, लोक नृत्य, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक परंपराएं आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक श्रोताओं तक तो पहुंची, जैसे महान कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर और अनेकों अनेक विश्वविख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां आकाशवाणी के अभिलेखागार की आज भी अमूल्य धरोहर है।
0: बिल्कुल, और अगर रितिका इसमें क्रिकेट प्रेमियों के लिए बात ना की जाए तो आकाशवाणी की बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, है ना। ये आकाशवाणी का एक अलग ही भावनात्मक संसार था क्रिकेट प्रेमियों के लिए। टेलीविजन से पहले लाखों श्रोता ट्रांजिस्टर से कान लगाए रहते थे। संजय बैनर्जी और सुशील दोषी जैसे कमेंटेटरों की आवाजें खेल प्रेमियों की स्मृतियों की अमिट हिस्सा बन गई। मैदान का रोमांच और मैच के हर उतार चढ़ाव को शब्दों में जीवंत कर देने की कला ने आकाशवाणी को खेल प्रसारण का पर्याय बना दिया था। यही विश्वसनीयता समाचारों में भी रही। जब संचार के माध्यम सीमित थे तब निष्पक्षता और गंभीरता का सबसे भरोसेमंद स्रोत आकाशवाणी ही था।
1: बिल्कुल दीप्ति, मैंने अपने बचपन में जिस समय मैं रेडियो से रूबरू हो रही थी, मैंने एक बहुत ही रोचक चीज महसूस की थी और मुझे लगता है वो सभी ने महसूस की होगी। और मैं ना जिस वक्त रेडियो सुनती थी उस वक्त मैं अपने कानों को आंखों में तब्दील होता देखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब देख रही
0: हूँ,
1: सुन रही हूँ और मैं सब देख रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, इसी चीज ने मेरी सुनने की क्षमता को ना बहुत सुंदर बनाया। रेडियो मेरे बचपन से मेरा साथ ही रहा,
0: हम सब का साथ ही रहा है।
1: हमारे घर में हम कहीं हम बाहर निकल,
0: शुरुआत रामचरितमानस के चौपाइयों से होती थी। आज भी वो ध्वनि जैसे कानों में घुली हुई सी है।
1: किसी भी दुकान पे चले जाइए, किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, किसी भी लोगों की सभा में, कहीं भी आप देखिए रेडियो बज रहा है। इतनी सुंदर और इतनी रूबरू पहचान मुझे नहीं लगता कि किसी भी और यंत्र से हमारी जुड़ी होगी। और आकाशवाणी के द्वारा अर्जित किया गया श्रोताओं का जो प्रेम और विश्वास था, वो जब देश का कोई भी महत्वपूर्ण घटना होती थी, लोग विश्वसनीय जानकारी के लिए आज भी आकाशवाणी को ही सुनते हैं, मानते हैं और उन समाचारों को ही वो फॉलो करते थे।
0: अभी भी करते हैं।
1: प्राकृतिक आपदाएं हैं, चुनाव, राष्ट्रीय समारोह या अन्य महत्वपूर्ण अवसर, आकाशवाणी ने सदैव अपने श्रोताओं को निष्पक्ष और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई है। और इसी विश्वसनीयता और तथ्यपरकता के कारण आकाशवाणी समाचार आज भी विशेष सम्मान रखता है।
0: बिल्कुल, और अगर हम आज के दौर की बात करें, सोशल मीडिया का शोर है हर तरफ। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस डिजिटल युग में हमारा रेडियो कहाँ खड़ा है। तो भाई, सीधा सा उत्तर है कि रेडियो आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उस्ताद है। भाई, सोशल मीडिया आपसे आंखें और आपके दोनों हाथ मांगता है, लेकिन रेडियो आपसे हैंड फ्री और आइस फ्री मनोरंजन देता है। ये आपके काम में बाधा नहीं, बल्कि आप अगर गृहिणी हैं, रसोई में हैं, ड्राइवर हैं तो लंबी सड़क पर, और छात्र हैं तो उसकी मेज पर, एक निस्वार्थ हम सफर की तरह सुकून देता है। और इस गौरवशाली 90 वर्षों के सफर का सबसे सुंदर और सजीव उत्सव अभी हाल ही में हमारी आकाशवाणी प्रयागराज में भी हुआ। हमें देखने को मिला। यादों की इस कारवां को समेटते हुए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसने इतिहास को वर्तमान से जोड़ दिया। जब इस मंच पे सूंधी माटी के लोकगीतों की तान टूटी तो पूरा स्टेडियम झूम उठा। और सोने पे सुहागा तब हुआ रितिका, जब भारतीय वायुसेना के बैंड ने अपनी सदी हुई धुनों और जाबाज लय से समा बांध दिया और ये साबित कर दिया कि आकाशवाणी की तरंगे आज भी उतनी ही ऊंची और गौरवमयी उड़ान भर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं दीप्ति। समय के साथ आकाशवाणी ने स्वयं को आधुनिक भी बनाया है। मीडियम वेव से एफएम प्रसारण तक डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल ऐप और इंटरनेट रेडियो, डिजिटल आर्काइव द्वारा आज हमारे श्रोता देश और दुनिया के किसी भी कोने

0: कहीं से आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हैं और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और जन सरोकारों के कारण प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि रेडियो आज भी उन क्षेत्रों तक पहुंचता है जहां अन्य माध्यम सीमित हैं। आपदा, संकट या आपातकालीन परिस्थितियों में भी रेडियो सबसे भरोसेमंद माध्यमों में से एक माना जाता है,
1: चाहे जो माध्यम हो, लेकिन इसकी आत्मा वही है, जनसेवा, विश्वसनीयता और सांस्कृतिक संवर्धन।
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी का ये सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और विश्वसनीय पत्रकारिता का प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। आकाशवाणी की इस अनंत आकाश और आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम नमन करते हैं जिनकी धड़कनों में ये आवाज़ आज भी गूंजती है।
0: और आज जब हम आकाशवाणी अपने 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रही है, तब हम इसके योगदान को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये भी भारतीय जनमानस की सशक्त आवाज बनी रहेगी।

0: दोस्तों, सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं ऋतिका, अभी हमने रेडियो की बात की,
1: जी
0: रेडियो में ही हम बहुत सारी चर्चाएं भी करते हैं, इसी से अब जो हमारा अलग सेगमेंट है सेहत से जुड़ी बातें हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं जिन पर हम अक्सर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, झिझक,
1: खासकर महिलाओं से जुड़ी
0: हाँ, और झिझक के चक्कर में उन्हें बड़ा बना लेते हैं।
1: जी।
0: ऐसी ही एक बेहद आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
1: जी
0: तो इसी पर सुनते हैं अपने श्रोताओं के आग्रह पर इसका पुनः प्रसारण, जिसमें चित्रा, डॉक्टर चित्रा पांडे से बात कर रही हैं नेहा गुप्ता।
1: श्रोताओं, आज हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। यूटीआई क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, आखिर इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रा पांडे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
2: धन्यवाद नेहा जी।
1: डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर कहते हैं कि यूटीआई की परेशानी से ग्रसित हैं, आखिर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या?
2: देखिए, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि इससे ही हमें पता चलता है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसकी सूजन या उसके इन्फेक्शन को कहते हैं, जब उसमें संक्रमण हो जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है।
1: जी।
2: यूरिनरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है किडनी से, क्योंकि वहीं पर जो है वो मूत्र या यूरिन बनता है, यूरेटर। उसके बाद पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिनरी मीटर्स या जो ओपनिंग होती है। तो ये पूरा तंत्र ही यूरिनरी सिस्टम कहलाता है और इसी के इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
1: मैम, ट्रैक का मतलब हम मार्ग से समझे ना, कि वो पूरी नली होती है उसमें
2: जी,
1: इन्फेक्शन हो
2: पूरा
1: गया।
2: मार्ग जहां पर यूरिन बनता है, जहां से फिर वो स्टोर करने की जगह यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और फिर जहां से यूरिथ्रा में आते हुए फिर ये शरीर से बाहर निकलता है, उस पूरे सिस्टम को हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। और इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
1: जी।
2: जो कॉमन होता है, ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर और उसकी जो नली होती है यूरिथ्रा, उसका इन्फेक्शन आता है।
1: जी
2: अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और अगर ये किडनी में भी हो जाता है, तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं और ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है।
1: यानी कि अगर किसी को यूटीआई हुआ और उसने देखभाल नहीं की, प्रॉपर क्योर नहीं लिया, तो शायद ये बढ़ता है और किडनी तक पहुंच जाता
2: जी
1: होगा,
2: बिल्कुल, इसीलिए
1: है
2: ये
1: ना?
2: बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूरिन इन्फेक्शन जब भी पता चले या जब भी आपको ये लगे कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी तुरंत जांच कराएं और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, ये होता तो कई लोगों को है, लेकिन कुछ ही लोग स्टेप लेते हैं, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं चलता होगा कि हो गया है। तो कैसे कोई जाने कि उसको ये इन्फेक्शन हो गया है मूत्र मार्ग में?
2: देखिए, इसके बहुत स्पेसिफिक लक्षण होते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यूरिन में, जिसकी
1: ओ
2: वजह से वो हमारे पास आते हैं। जैसे यूरिन में जलन होना, यूरिन करते समय पेन होना, यूरिन में इन्फेक्शन जब होता है तो बैड स्मेल भी यूरिन में आ सकती है और कलर भी यूरिन का चेंज हो जाता है।
1: मतलब कुछ पीला होगा, दुर्गंध
2: हाँ,
1: बहुत ज्यादा
2: यूजली हम उसको
1: होगी।
2: बोलते हैं टर्बिड, जैसे थोड़ा सा मटमैला सा कलर उसका हो सकता है और दुर्गंध भी आती है यूरिन में से कई बार। और इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है और फीवर भी आ सकता है। ठंड देके फीवर आना, जिसे हम यूजली समझते हैं कि मलेरिया
1: बुखार
2: का
1: है।
2: मेन लक्षण है,
1: हाँ।
2: लेकिन यूटीआई का भी कई बार ये इसी तरह से डायग्नोसिस बनती है और ये भी एक मेन लक्षण होता है कि फीवर विथ चिल्स और नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, ये होता कैसे है?
2: देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम बहुत बेसिक रीजन से लें तो सबसे पहला कारण होता है पुअर हाइजीन। अगर साफ सफाई का ना रखी जाए, पेरिनियल पार्ट्स की नीचे के हिस्से की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज ये होता है कि जो यूरिन को होल्ड करके रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं घर से बाहर हैं या वर्किंग गर्ल्स हैं, घर से बाहर है, यूरिन लगा और लेकिन उसका कोई ऐसा प्रॉपर जगह नहीं है
1: वॉशरूम नहीं
2: यूरिनेट
1: जा
2: करने की,
1: रहे
2: वॉशरूम।
1: यूज़िन।
2: हाँ, तो जब होल्ड करते हैं और अगर ये ऐसा कई बार रिपीट होता है, उसकी वजह से भी यूरिन जब ब्लैडर में बहुत समय तक रहता है, वो भी इन्फेक्शन को प्रमोट करता है।
1: डॉक्टर साहब, कई

0: बार जैसे दादी लोग नानी लोग बोलते हैं कि भाई वस्त्र सिर्फ ऊपर ही अच्छे नहीं पहनने हैं, हमारे हर तरीके के वस्त्र जिस भी अंग के लिए हो वो बहुत साफ सुथरे
1: जी जी
0: सूती
1: बिल्कुल
0: वाले होने चाहिए। तो क्या वो
1: जी
0: ठीक कहा करती
1: जी
0: थी?
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो नीचे वाले जो वस्त्र हैं जो डायरेक्ट हमारे शरीर के कांटेक्ट में है, उनका साफ और सूती वस्त्र होने चाहिए। ये नहीं कि उस तरह के हार्श मटेरियल के बने हो जिससे कि नीचे रैशेस हो जाएं या नीचे कुछ कट
0: इलास्टिक
1: जाए।
0: वाले
1: हाँ,
0: ऐसे
1: तो
0: नहीं
1: उस
0: है।
1: चीज़ का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवन यूटीआई छोटे बेबीज़ में भी देखा जाता है, छोटे से छोटे बच्चे में और महिलाओं में हर स्टेज में यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इवन छोटे बच्चों को जो डायपर पहनाते हैं वो एकदम जब ज़रूरी हो तभी पहनाना चाहिए, जब घर से बाहर ले जाएं उसमें भी उसकी हाइजीन का ध्यान रखें। तो
0: ये तो
1: ये
0: बहुत इम्पोर्टेंट बात
1: जी
0: आपने
1: जी
0: कही।
1: बिल्कुल, छोटे बेबीज़ में या गर्ल्स में उनमें भी यूटीआई हो सकता है।
0: वो जगह भी लाल हो जाती है ना, वो चाहे
1: हाँ
0: बड़े हों या बच्चे हों,
1: जी
0: बुजुर्ग
1: जी
0: हों, है ना,
1: जी
0: आसपास के जो अंग हैं हमारे, जो थाई हैं आसपास, वो पूरी रेड हो जाती है मैम।
1: और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 40% से 50% महिलाएं कभी ना कभी उनको एक लाइफ टाइम में यूटीआई का सामना करना पड़ता है, जबकि पुरुषों में सिर्फ 13 से 14% इससे अफेक्टेड होते हैं बाय एंड लार्ज। तो महिलाओं में इसलिए होता है, एक तो महिलाओं का जो यूरिथ्रा होता है, जो पेशाब की नली होती है, वो छोटी होती है, तो किसी भी इन्फेक्शन का पेरिनियम से ब्लैडर में पहुंचने के
0: आसान है
1: आसान है ना।
0: जी।
1: और दूसरा, महिलाओं में जो योनि का मार्ग है और जो लैट्रिन का रास्ता है वो पास पास है, तो
0: जी
1: वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि
0: हाँ
1: बैक्टीरिया बहुत आसानी से यूरिनरी मीटर्स तक या यूरिन का जो छिद्र है वहां तक आ सकते हैं। तो इस वजह से महिलाओं में ज्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार महिलाओं ने ये भी कहा जो यूटीआई से पीड़ित हैं कि भाई दर्द होने लगता है और असहनीय दर्द है, किसी भी काम में उनका दिल नहीं लगता फिर, और उनको लगता है कि जल्दी से ठीक हो, थकान सी लगती है, ऐसा क्यों होता है फिर?
1: देखिए, यूटीआई एक तरह का इन्फेक्शन है, जो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि संक्रमण है, जिसकी वजह से पूरे ब्लैडर में या पेशाब की थैली में और रास्ते में सूजन आ जाती है। उस सूजन की वजह से पेन होता है, और ऐसा बहुत बार होता है कि जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो जो महिलाएं होती हैं वो हमारे पास बहुत डिस्ट्रेस में आती हैं कि बस कोई ना कोई दवाई चाहिए। उसमें इतनी ज़्यादा जलन और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो वाकई असहनीय होती है। तो अब उसमें सबसे पहली सलाह होती है कि आप यूरिन टेस्ट के लिए दो और ये मेडिसिन तुरंत तुरंत अभी इस्तेमाल करिए, ताकि थोड़ी देर में इसका असर आ जाएगा, देन दैट पेशेंट विल
0: जी
1: बी रिलीव।
0: डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं ने जो यूटीआई से पीड़ित हैं उन्होंने कहा कि बहुत यहाँ पे रफ हो जाते स्किन या बहुत खिंचता है, तो कुछ ने कहा कि भाई नारियल का तेल मुफीद है, कुछ ने कहा नहीं सरसों का तेल अच्छा है तो रैशेज नहीं आएंगे, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, अगर कोई ऑयल यूज़ करना है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, क्योंकि
0: नारियल
1: कौन
0: तेल।
1: को हाँ, नारियल तेल सबसे ज़्यादा सूदिंग होता है। इसके अलावा स्पेशली मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं पेरिनियल एरिया में यूज़ करने के लिए, वो मॉइस्चराइजर भी अच्छे होते हैं
0: यानी
1: ड्राइनेस
0: कि
1: के
0: आपको
1: लिए।
0: कुछ लगा लेना बेहतर है,
1: जी
0: उसको रूखा
1: बिल्कुल
0: ना रखें।
1: बिल्कुल, रूखा ना रखें, क्योंकि रूखा रखने से फिर जब स्क्रैचिंग होगी और वो स्क्रैचेस भी इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, तो वो स्किन सूदिंग रहे इसके लिए कोई ना कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो ऑयल के रूप में करें या मॉइस्चराइजर के रूप में करें।
0: कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी उसके विज्ञापन देखने को मिलते हैं कि आप यूटीआई से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत है तो इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
1: देखिए, वो जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए, जो आजकल वेजाइनल वॉश आ रहे हैं उसकी आप बात कर रहे हैं, वेजाइनल वॉश जिस समय वेजाइनल इन्फेक्शन हो उस समय कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं हाइजीन के लिए, लेकिन उसको रेगुलर यूज़ कभी नहीं करना चाहिए।
0: क्यों?
1: वेजाइनल वॉश का रेगुलर यूज़ करने से जो उस एरिया का पीएच होता है वो चेंज हो जाता है, और वो फिर लॉन्ग टर्म में वो हार्मफुल होता है। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको रूटीन ना बनाए, सिर्फ जिस समय ज़रूरत है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए 3 दिन 5 दिन मैक्सिमम 7 डेज इतना ही यूज़ करें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि यूरिन इन्फेक्शन है या वेजाइनल इन्फेक्शन है, और बहुत बार ये दोनों इन्फेक्शन किसी भी महिला को एक साथ हो सकते हैं।
0: फिर कैसे
1: तो
0: पता चलेगा?
1: ये जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूरा नीचे से जांच करते हैं, पूरा जिसको हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो पूरा जांच करते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सिर्फ यूटीआई है या इसके साथ वेजाइनल और बल्बल इन्फेक्शन है, और
0: बहुत
1: उसके
0: झिझकने की जरूरत

0: नहीं है, क्योंकि
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल
0: हम झिझकेंगे,
1: जी
0: डॉक्टर साहब के सामने नहीं आएंगे, तो समस्या बड़ी हो सकती है।
1: हाँ देखिए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है एक तरह से, इसलिए इसमें हेजिटेशन की वजह से ही काफ़ी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, और फिर जब एकदम अनबियरेबल हो जाता है, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब महिलाएं हमारे पास आती हैं।
0: तो ये कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारी बातचीत में हमारे श्रोता सुन रहे थे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कारण और उपचार। डॉक्टर चित्रा पांडे से नेहा गुप्ता जी की बातचीत। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को आज के जायका सेगमेंट की ओर, जिसका
1: बिल्कुल
0: विषय है स्टीम फूड, हल्का खाना भारी फायदा। और बिल्कुल, आज की तेज रफ्तार से भरी जीवन शैली में लोग स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण स्थान देने लगे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। और ऐसे में स्टीम फूड यानी कि भाप में पकाया गया भोजन एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। ये
1: बिल्कुल
0: भोजन न केवल हल्का और सुपाच्य होता है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ और फिटनेस प्रशिक्षक स्टीम फूड को नियमित आहार में शामिल करने की सलाह देते हैं।
2: भाप में पका हुआ खाना या स्टीम्ड फूड स्वाद और सेहत का वो बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। इसके फायदे इतने हैं कि जैसे कि अभी रितिका जी ने बताया कि इसके गिनते रह जाएंगे, लेकिन आप पूरा उसको गिन नहीं पाएंगे, अब थक जाएंगे।
0: जी
2: अब जैसे कि इसमें गर्मा गर्म इडली हो गई, सूजी का ढोकला हो गया, मोमोज या स्टफ्ड रंग बिरंगी सब्जियां जिन पर चाट मसाला और नींबू छिड़का जाए तो भला किसके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा।
0: बिल्कुल
2: तो चलिए बनाते हैं कुछ क्विक रेसिपी इसी पर। तो पहली है मल्टीग्रेन वेजी ढोकला। सामग्रियाँ हैं सामान्य सी जो हमारे हर रसोई घर में मिल जाती हैं,
0: जी
2: 1 कप सूजी, आधा कप बेसन, थोड़ा सा दही, आपके मनपसंद बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च और उबले हुए कॉर्न। और बनाने की विधि बहुत ही आसान है। पहले सूजी, बेसन बेसन और दही को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लीजिए। अब इसमें सारी सब्जियां स्वाद अनुसार नमक, अदरक, मिर्च का पेस्ट और चुटकी भर इनो ज़रूर मिलाइए। एक थाली में हल्का सा तेल लगा के इस बैटर को फैला दीजिए और स्टीमर और या कढ़ाई में जो भी है आपके पास उसमें स्टैंड रखकर 10 से 12 मिनट के लिए भाप से भाप दीजिए। वो पक जाएगा, ठंडा होने पर अपने मनपसंद आकार में से कट कर लें। और इस पर अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ते या राई का सूखा हुआ छौंक लगा सकते हैं और अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे परोसिए।
0: और ये देखिए कितना स्वाद, मतलब मैं तो सुनते सुनते मतलब मुझे स्वाद आ गया। और कहते हैं ना कि ये मात्र जैसे स्टीम फूड, जितने भी स्टीम फूड की बात हम कर रहे हैं, ये वाकई हल्का भोजन है और स्वाद में भरपूर है और आपके लिए फायदे तो अनेक हैं। लेकिन ये है क्यों विशेष? क्योंकि इससे ना बहुत सारी दिक्कतें कम हैं। अगर कम तेल में बात करें, खाना बन रहा है और अधिक स्वास्थ्य लाभकारी है, पोषक तत्वों की सुरक्षा है में, पाचन के लिए लाभकारी है, वजन नियंत्रित करने में भी सहायक होता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए
2: बहुत
0: बहुत ही
2: लाभदायक है।
0: उपयुक्त है। और जब गर्मियों में स्टीम फूड का महत्व की बात करें तो मुझे तो लगता है इससे अच्छा, इससे हल्का और इससे सुपाच्य खाना
2: कुछ
0: ही
2: भी नहीं
0: नहीं
2: हो
0: है,
2: सकता
0: है ना? तो
2: है।
0: केवल स्टीम फूड मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी पर
2: निर्भर
0: निर्भर रहिए
2: रहिए।
0: या पर्याप्त है, लेकिन हाँ ये एक बेहतर
2: विकल्प
0: विकल्प
2: है
0: और
2: आपके पास,
0: इसके लिए आपको जरूर सोचना चाहिए और इस ऑप्शन को जरूर
2: अपनाना
0: अपनाना
2: चाहिए।
0: चाहिए।
2: नहीं, अभी जैसे रितिका डॉक्टर साहब भी कह रही थी
0: जी
2: कि अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन है तो
0: जी
2: ये इस तरह का भोजन आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। और जब हम किसी इन्फेक्शन से लड़ रहे हों तो पेट को आराम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
0: बिल्कुल
2: तो इसीलिए ऐसे फूड पर हमेशा निर्भर मत रहिए, लेकिन हाँ इस पर भी निर्भर रहा जा सकता है कुछ
0: जी
2: समय के लिए, जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
0: बिल्कुल, स्वाद और स्वास्थ्य का अनमोल संतुलन अगर आपको देखना है तो आप स्टीम फूड को एज एन ऑप्शन पहले अपना कर देख सकते हैं, और फिर मुझे तो यकीन है कि आप तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन
2: बन
0: जाएगा।
2: जाएगा
0: और अब
2: बिल्कुल।
0: अपने श्रोताओं को ले चलते हैं आज के एक ऐसे सेगमेंट की ओर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है भोर, जिसमें आज का विषय है निर्णय लें समझदारी से। क्योंकि जीवन का पूरा जीवन मुझे लगता है हमारे निर्णयों पर आधारित है कि हम किस प्रकार के निर्णय
2: निर्णय
0: लेते
2: लेते
0: हैं,
2: हैं।
0: और उसी पर आधारित हमारा पूरा जीवन होता है। तो आइए सुनते हैं विषय।

0: अच्छा तनु,
1: जी
0: आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि बाहर से तो कई बार हम ठीक ठाक दिख रहे होते हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर मन मस्तिष्क में या फिर शरीर के किसी अंग में ऐसी हलचल होती है, ऊहापोह होती है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है।
1: बिल्कुल होता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये तब होता है जब हम एक निर्णायक स्थिति में होते हैं, जब हम किसी ऊहापोह की स्थिति में होते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारा दिमाग और हमारा शरीर, इसका कुछ तालमेल सा नहीं बन पा रहा है, या दिमाग की जो उलझन है वो शायद शरीर पर कहीं असर कर रही है।
0: हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो
1: हाँ
0: और वो परिणाम तक न पहुंच रही हो। तो परिणाम से पहले का ये हम कहें, कष्ट कहें, प्रोसेस कहें, सफ़र कहें, जब हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, हम शायद कुछ खोज रहे होते हैं कि कोई आवाज़ कहीं से हमारा सपोर्ट करे और हमसे ये बात कह दे कि हाँ बस यही करो।
1: हाँ
0: हमारी धड़कन इतनी बढ़ी हुई होती है, डर भी लग रहा होता है, मन में तमाम तरह की बातें चलती हैं, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा,
1: सही होगा या गलत।
0: सही होगा या गलत, या इसके बाद हम टिक पाएंगे कि नहीं।
1: हाँ,
0: ऐसे में सबसे अच्छा दोस्त क्या होता होगा?
1: जहाँ तक मेरा अपना जो डिसीजन लेने का तरीका है नेहा जी, वो ये है कि एक बात है, कोई चीज़ अगर सुधरी तो बहुत फ़ायदे दे के जाएगी, बिगड़ी तो शायद तजुर्बा दे कर जाएगी। इसलिए जहाँ पर मुझे ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ सही है, मैं इसको अपने दम पे कर सकती हूँ और मुझे ये अपने आगे के जीवन के लिए करना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ। क्योंकि जब आप कई लोगों पे डिपेंडेंट होके काम करते हो ना, तो ज़्यादा डर होता है फेलियर का।
0: यहीं पे पॉइंट नोट करने वाली बात है दोस्तों। हम कई बार इतना सुनने लगते हैं, जो निर्णय हम ले नहीं पाते, मन में वैसे ही उलझन चल रही होती है, हम तमाम रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लोगों से फ़ोन पर या उनसे मिलकर उस विषय पर या उस परिस्थिति पर इतनी बातें करते हैं और उसकी इतनी दिशाएं खुल जाती हैं, विकल्प खुल जाते हैं, कि हम एकाग्र ही नहीं हो पाते
1: हम सही तरफ की रोशनी देख ही नहीं पाते।
0: नहीं देख
1: और
0: पाते।
1: नेहा जी, यहाँ पे सिर्फ राय की बात नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज की भी बात है। सपोज़ हमें मैन पावर की ज़रूरत है या हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है, तो देखिए, मैं किसी सामने वाले को गलत नहीं कहती कि वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा या मुझे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर किसी के अपने काम है, हर किसी की अपनी ज़रूरतें हैं। ठीक, तो अगर वो हमें नहीं कर पा रहा है तो उसके अपना कुछ काम होगा, उसकी अपनी कोई ज़रूरत होगी। लेकिन एक लिहाज, एक रिश्ता भी है। सपोज़ उसने कह दिया कि हाँ करेंगे, आगे देखा जाएगा क्या होता है, एक्चुअली वो टाइम आ गया जब आपको उसकी ज़रूरत है, उस वक्त वो बहाना बनाने लगा, बहाना शायद सही शब्द नहीं है, या उसने आपको अपनी परिस्थिति उस वक्त बताई जब आप उसके भरोसे पे आगे बढ़ चुके हो, तब इससे तो बेहतर अकेला चलो रे।
0: पता है दोस्तों, जब तमाम तरह की आवाज़ें हो, जो भी बात हो रही थी कि हम अपने आप को ही नहीं सुन पाते, बैठ जाइए। सबसे अच्छा ये है कि आप समय लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: आपने वो चीज़ या वो परिस्थिति क्यों क्रिएट की थी, वो बात सुनिए और अपने पल

0: को पहचानिए। कहते हैं ना कि अपनी माटी भी सोने से अधिक कीमती होती है, और ये बात एकदम सच है, क्योंकि जो चीज़ आप अपने कर्म से प्राप्त करते हैं तो उसमें आपकी खुशबू भी छुपी हुई है, आपके कर्म भी छुपे हुए हैं, आपकी मेहनत भी छुपी हुई है, और ये उलझन भी, इस उलझन से कभी मत घबराइए।
1: बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, परिस्थितियाँ भी दो तरीके की होती हैं। एक तो वो जो प्राकृतिक है, अचानक आपके सामने कुछ आ गया, सपोज़ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। एक वो जो आप प्लान करते हो कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे घर लेना है। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय लेने का तरीका अलग होता है। जब पहली परिस्थिति की हम बात करें तो वहाँ पे मेरा मानना यह है कि हमें ईश्वर के आगे खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। जो बेस्ट है करिए, बेस्ट सोचिए, जो आपकी कैपेसिटी में है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो करिए, और ईश्वर पे विश्वास रखिए। डॉक्टर्स,
2: तो अभी आप सुन रहे थे भोर, जिसमें बातचीत कर रही थी तनु आर्य और नेहा गुप्ता। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, सुझाव जरूर दीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर है 8004926250। और इसी के साथ हम करते हैं नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थीं अपना मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's external services division broadcast to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the news services division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country in varied terrains, 24/7 in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस

0: मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन

0: गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक

0: होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारत वंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुँचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और

0: बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: बात और कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मधु दीदी की आवाज और अंदाज काफी आकर्षक लगती है। 90 वर्ष के इस सुरीली आत्मीय और यादगार सफर के लिए आकाशवाणी प्रयागराज को कोटि कोटि धन्यवाद।
7: नमस्कार, मैं प्रयागराज से परिज्ञा सिंह। आज आकाशवाणी के 90 गौरवशील वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर बात करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए आकाशवाणी से जुड़े प्रत्येक अधिकारी, उद्देशक और तकनीकी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा, संस्कृति और संस्कारों का संरक्षक है। विशेषकर आकाशवाणी प्रयागराज ने साहित्य, कला और शास्त्रीय संगीत को जिस तरह संजो कर रखा है वो वंदनीय है। यहाँ से प्रसारित होने वाले विचार प्रधान कार्यक्रम, परिचर्चाएं और साहित्यिक प्रस्तुतियां हमारे ज्ञान वर्धक के साथ साथ समाज को एक सकारात्मक दिशा देती हैं। आज के इस भागदौड़ भरे डिजिटल युग में भी आकाशवाणी की आवाज में जो ठहराव, विश्वसनीयता और शुद्धता है वो अद्भुत है। ये 90 वर्षों की अटूट निष्ठा का ही परिणाम है कि आज भी हम गर्व से कहते हैं ये आकाशवाणी है। आप सभी को इस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने लोकगीत। कलाकार हैं सूरज कुशवाहा। इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं लाचारी।

0: और अब लीजिए सुनिए स्थापना दिवस के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे श्रोताओं के संदेश।
1: नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता सिंह है और मैं प्रयागराज से हूँ। सबसे पहले तो आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 9 दशकों का ये अद्भुत सफर केवल प्रसारण का इतिहास नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं और विश्वास की अमूल्य धरोहर है। आकाशवाणी ने समय के साथ न केवल मनोरंजन किया है, बल्कि समाज को शिक्षित और जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। और यही कारण है कि आज भी इसकी मधुर आवाज हर आयु वर्ग के श्रोताओं के दिलों में विशेष

0: मुझे आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों की सबसे सुंदर बात यही लगती है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जहाँ एक ओर ग्रह लक्ष्मी महिलाओं के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारियां लेकर आता है, वहीं पनघट और लोक संगीत आधारित कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं। हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रम श्रोताओं को सीधे अपनी पसंद के गानों से जोड़ते हैं, जबकि एक ही कलाकार हमें महान कलाकारों के योगदान और उनकी यादगार प्रस्तुतियों से परिचित कराता है। इसी प्रकार कृषि जगत और पंचायत घर जैसे कार्यक्रम ग्रामीण भारत और हमारे अन्नदाताओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाकर समाज में जागरूकता और ज्ञान का प्रसार करते हैं। आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु है। और बदलते समय और नई तकनीकों के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता, गरिमा और लोकप्रियता को जिस प्रकार बनाए रखा है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। आज 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं आकाशवाणी प्रयागराज सहित पूरे आकाशवाणी परिवार को पुनः हार्दिक बधाई देती हूँ। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी प्रयागराज हमारे लिए केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि भावनाओं, ज्ञान, संगीत और अपनेपन का एक खूबसूरत सा संगम है। आपके सभी उद्घोषकों, निर्माताओं और पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद। जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शशि बाला जैन के स्वर में, झूमर।

रामबाबू यादव और साथियों के गाए इस खेमटा गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: रितिका दीदी, इस समय हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। कितना आलस घेर रहा होगा ना उनको,
0: बिल्कुल
1: और इस आलस में वो बैठे होंगे, या तो खेल रहे होंगे, या मोबाइल चला रहे होंगे, या तो बिस्तर पे पड़े पड़े आलस
0: ठंडी ठंडी एसी की हवा
1: खा
0: खा
1: ले।
0: रहे होंगे। और
1: बिल्कुल।
0: भाई इतनी गर्मी है कि बनता भी है, लेकिन जब बात होती है कि थोड़ा आलस है, गर्मी की छुट्टियां हैं, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जब बात होती है अच्छी आदतों की, तो सबसे पहले कौन सी आदत की बात होती है? सुबह जल्दी
1: जल्दी
0: उठने
1: उठने
0: की।
1: की।
0: तो आज हम अपने बच्चों से इसी आदत पे, इसी बात पे, इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत होती है, ये तो हमने अभी बात की, और ये आदत हमें स्वस्थ, खुश और अनुशासित बनाती है। तो आज हम आपसे इसी विषय पर बात भी करेंगे कि
1: बिल्कुल।
0: सुबह जल्दी उठना हमारे लिए क्यों अच्छा होता है।
1: सबसे अच्छी बात बताएं, इसमें ये है कि बच्चों को ढेर सारा समय मिल जाता है खेलने के लिए। अब देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप ढेर सारी पेंटिंग्स बना सकते हैं, ढेर सारे जो आपके हॉबीज़ हैं अपने गेम्स में, जैसे कुछ क्रिएटिव करते हैं बच्चे, कुछ घर बनाते हैं, किसी ब्लॉक से बनाते हैं, या कुछ भी। आप सुबह जाके क्रिकेट भी खेल सकते हैं, अपने पार्क में जाके बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 बजे तक सो रहे हैं छुट्टियों में, कि क्यों कौन उठे, छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, तो ऐसे में आपके पास कौन सा समय बचेगा? दोपहर का, जब मम्मियाँ बिल्कुल आपको घर से निकलने नहीं देंगी।
0: बिल्कुल। तो हमारे जब भी हमसे बड़े कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और सुबह जल्दी उठने से हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। सुबह का वातावरण शांत और ताजगी भरा होता है, इसलिए जल्दी उठने से हमारा पूरा दिन अच्छा और उत्साहपूर्ण भी बीतता है। सुबह
1: बिल्कुल।
0: जल्दी उठने से पढ़ाई में हमारी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि सुबह मन शांत रहता है, माहौल शांत रहता है, इसलिए पढ़ी हुई बातें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं।
1: इसका मतलब समझ रहे हैं रितिका दीदी क्या कह रही हैं? जो इतना ढेर सारा होमवर्क मिला है ना बच्चों, ये
0: हाँ
1: आपका अच्छे से कंप्लीट हो
0: हाँ और
1: जाएगा,
0: आपको लंबे समय तक याद
1: याद
0: रहेगा कि आपने
1: रहेगा।
0: क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। और
1: बिल्कुल।
0: सुबह जल्दी उठने से हमारे स्वास्थ्य जो है ना, हमारी जो हेल्थ है वो बेटर होती है। सुबह की ताजी हवा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, और यही कारण है कि हम नियमित रूप से अगर जल्दी उठने वाले बच्चों में अपनी गिनती शुमार करें, तो हम अधिक चुस्त रहेंगे, अधिक सक्रिय रहते हैं। और अगर हम जल्दी उठते हैं, तो जैसा कि दीप्ति दीदी ने बोला कि हम

0: में खेल, व्यायाम, इन सब चीजों का, हमारी सारी मनपसंद चीजों के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है।
1: आज सुबह का समय वैसे भी रितिका कितना सुंदर होता है
0: हाँ
1: ना। चिड़ियों की चहचहाहट, चाहे सूरज की ठंडी ठंडी कोमल सी किरणें जब पड़ती हैं, और उस पे अगर आप पार्क में हैं या आपके आसपास पेड़ हैं तो उनकी जब कोमल कोमल पत्तियां हिलती हैं ना, तो अपने आप मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अगर आपने
0: बिल्कुल
1: बच्चों ध्यान दिया होगा तो आप ये जानते होंगे कि नेचर से जुड़ना कितना अच्छा होता है उस टाइम पर
0: और जब
1: आप।
0: नेचर की बात कर रही हैं दीप्ति दीदी, तो इसी नेचर में, इसी फ्रेशनेस में सुबह सुबह टहलना, योग करना, खेलना हमारे शरीर को और मजबूत बनाता है। सुबह जल्दी उठने से हम समय की कीमत समझते हैं। जो बेस्ट थिंग इसमें है, टाइम मैनेजमेंट हमें समझ में आता है किस तरीके से करना है। और जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारे दिन भर के काम जो है ना,
1: बड़े
0: वो
1: आसानी से
0: बिल्कुल, वो
1: और जल्दी हो
0: ऑर्गेनाइज्ड हो
1: जाते।
0: जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: चिड़ियों की मधुर आवाज़ और सुबह की शांति मन को भी बहुत सुकून देती है। सुबह जल्दी उठने से हमारी अच्छी आदतों का विकास होता है, हमारे अंदर गुड मैनर्स डेवलप होते हैं, और जल्दी उठने वाले बच्चे अधिक मैनर्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी होते हैं। तो
1: और दादाजी से बहुत ढेर सारी कहानियां भी और
0: हाँ
1: चॉकलेट्स टॉफी भी मिल जाती है सुबह
0: बिल्कुल, तो इसलिए
1: बच्चों।
0: प्यारे बच्चों, आज से ही सुबह जल्दी उठने का संकल्प लें और अपने दिन की शुरुआत मुस्कान और उत्साह के साथ करें। जल्दी सोना, जल्दी उठना, स्वस्थ, बुद्धिमान और सफल बनना। और इसी के साथ सुनवाते हैं आपको आज का ये गीत।

0: इतना सुंदर गीत सुनवाया रितिका दीदी
1: और सारे
0: आपने।
1: सारे हमारे प्यारे जो छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे प्यारे प्यारे सारे बच्चे हैं, सारे श्रोता हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था सब हमारे सामने बैठे हैं
0: हाँ,
1: और
0: कितना
1: हम
0: बढ़िया
1: उन्हें,
0: सुना रहे
1: हाँ, और हमें उन्हें इतना प्यारा गीत, इतना प्यारा कार्यक्रम सुना रहे हैं। और जब बात हो रही है कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे विश्व के मरुस्थलों के बारे में।
0: हाँ, मरुस्थल। मरुस्थल क्या होते हैं फिर
1: मरुस्थल
0: ये?
1: क्या
0: हाँ
1: होता है? तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपसे ये सवाल पूछने वाली थी, तो दीप्ति दीदी ने मुझसे पूछ दिया कि क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे विशाल क्षेत्र भी होते हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। ऐसे सूखे हुए और रेतीले क्षेत्रों को मरुस्थल यानी कि डेजर्ट कहा जाता है। मरुस्थल केवल रेत से ही नहीं बने होते, बल्कि कुछ मरुस्थलों में चट्टाने, कंकड़ और बर्फ भी होती है। अब जो आपने पूछा दीप्ति दीदी कि मरुस्थल क्या होता है, तो मरुस्थल वो स्थान होता है जहाँ साल भर बहुत कम बारिश होती है और यहाँ
0: ओहो,
1: दिन में गर्मी और रात में बहुत ज्यादा
0: ठंड
1: ठंडक हो
0: हो
1: सकती
0: सकती है,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अब बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल, मतलब जो ऐसे तो बहुत सारे मरुस्थल हैं लेकिन जो प्रमुख हैं और जिनके बारे में हमारे बच्चों को, हमारे श्रोताओं को पता
0: जानना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए, उनमें से सबसे पहले तो है सहारा
0: सहारा,
1: मरुस्थल।
0: बिल्कुल।
1: ये विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है।
0: अब दूसरा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो है थार मरुस्थल। इसे
1: अच्छा,
0: ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और बच्चों ये जानते हैं, ये इंडिया के राजस्थान, आप सभी जानते हो, और पधारो मारे देश है ना, तो सभी सुनते हैं बच्चे। यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति, लोकगीत और ऊंट के मेले प्रसिद्ध हैं।
1: और तीसरा है गोबी मरुस्थल। हाँ, ये एशिया का प्रसिद्ध मरुस्थल है। यहाँ रेत के साथ साथ चट्टानी क्षेत्र भी पाए जाते हैं। सर्दियों में यहाँ बहुत अधिक ठंडक पड़ती है।
0: और अब चौथा है कालाहारी मरुस्थल। ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। यहाँ कई प्रकार के अन्य जीव भी, वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ भागों में घास और कुछ में झाड़ियाँ भी उगती हैं।
1: अब सबसे अनोखा जो मरुस्थल है उसके बारे में बताते हैं आपको, अंटार्कटिका मरुस्थल। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और यहाँ रेत नहीं होती बल्कि बर्फ की मोटी परतें होती हैं और
0: ओहो,
1: बहुत कम वर्षा होने के कारण इसे मरुस्थल कहा जाता है।
0: ये तो वाकई बहुत अनोखा है।
1: बिल्कुल, तो ये बर्फ से बना मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब मरुस्थल की बात हो गई तो मरुस्थल में रहने वाले जीव कौन-कौन से होते हैं? ऊंट, रेगिस्तानी लोमड़ी, छिपकली, सांप, बिच्छू, ये सभी जीव कम पानी में जीवित रह सकते हैं और इनकी यही विशेष क्षमता
0: क्षमता
1: होती है।
0: और इसमें कुछ रोचक तथ्य भी हैं
1: अब
0: दीदी,
1: वो क्या है?
0: जैसे कि सहारा मरुस्थल इतना बड़ा है कि इसमें कई देश समा सकते हैं। और अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अभी जैसे बताया आपने, थार मरुस्थल विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले मरुस्थलों में से एक है। और कुछ मरुस्थलों में दिन और रात के तापमान में 30
1: तीस से
0: से
1: चालीस
0: 40 डिग्री
1: हाँ
0: सेल्सियस तक का
1: अंतर
0: अंतर
1: हो
0: हो
1: सकता
0: सकता
1: है।
0: है।
1: तो मरुस्थल हमें ये सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन संभव है। प्रकृति का हर रूप अद्भुत है, अनोखा है, इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। अब हम आप बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं। क्या बच्चों तुम बता सकते हो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल कौन सा है?
0: मैं बताऊँ दीदी,
1: हाँ बताइए, चलिए मान लेंगे,
0: मान लेंगी
1: मान लेंगे।
0: थार
1: हाँ,
0: मरुस्थल।
1: तो इस प्रश्न को पूछने का यही मतलब था कि हमने आपको जो जानकारी आज दी उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत

का सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल थार मरुस्थल है। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action.
1: APJ Abdul Kalam ki ye lines aaj bhale hi koi explicitly na bolta ho, magar aaj bhi ye utna hi sach hai jab baat sapno aur vicharon ki aati hai. Hello, hello, hello and good evening to you all. Main hoon aapki host Sejal
0: aur main hoon aapki saathi Unnati and a warm welcome to you all in another episode of Yuvani. Dosto, jab vicharon ki baat aati hai to har shaam hum bhi aate hain naye vichar, nayi urja aur nayi taazgi ke saath. दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हम कितने ज़्यादा टेक सैवी हो गए हैं और कितने ज़्यादा एडवांस्ड एरा में हम जी रहे हैं, जहां हर रोज़ नए नए एडवांसेस हो रहे हैं टेक की फील्ड में और हर रोज़ एआई नए नए मुकाम पर दिख रहा है. क्यों?
1: बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, या यूं कह लो कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट. क्योंकि हर चीज़ के प्रॉस हैं तो कॉन्स भी हैं. अब बात ये आती है कि हम डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन को क्या एज अ बून या एज अ टूल देखते हैं, या उसका मिसयूज़ करते हैं. और उन्नति, पता है, ये बात तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड. यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में सबकी ज़रूरत के अनुसार तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं.
0: बिल्कुल, मगर बचपन से हमने ये पढ़ा और सुना तो है ही, लेकिन आज के टाइम पर ये देख करके ऐसा लगता है ना कि ये उतना एप्लीकेबल नहीं दिखाई पड़ता है. कई सारी ऐसी फर्म्स हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टेक की फील्ड में आगे तो बढ़ रही हैं, पर क्या टेक्नोलॉजी और एआई अब सिर्फ एक निशानी बन गया है लोगों को ये दिखाने का, समाज को ये दिखाने का कि हम दूसरों से कितना आगे हैं? और मतलब मान लो कि एक कंपटीशन वाला बिहेवियर आ चुका है, ठीक है. लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन हमेशा बुरा ही होता है. हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड एंड शुड बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन. यूथ लाइफ का भी यही एक प्रिंसिपल है. मगर देखा जाए तो अब सस्टेनेबल और डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं और महज शब्दों से बढ़कर कुछ ज़्यादा या कोई प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ इशारा नहीं करते हैं, बस टेक्स्ट बुक तक ही रह गए हैं.
1: और इसका परिणाम पर्यावरण में मौजूद रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन. देखा जाए तो हम में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर्यावरण के प्रति इग्नोरेंट होते जा रहे हैं. एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बस अब थ्योरी तक रह गए हैं, जो कि खतरे की घंटी भी है. अब जरा मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग इस पर्यावरण दिवस पर, जो कि 5 जून को था,

0: पेड़ लगाने या पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया। आई नो नति कि बहुत ही कम होंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये बस एक मामूली सा प्रश्न लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई वही समझ सकता है जो इसके डाउनसाइड से सफर कर रहा हो।
1: वो सभी पेड़, पौधे, जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हर जंगल, ग्रासलैंड्स, नदी, समुद्र, महासागर, झील और बाकी दूसरे वाटर सोर्सेज या टेरेस्ट्रियल सरफेस पर पाए जाते हैं, चाहे वो बड़े जीव हो या छोटे, सब पर वही खतरा मंडरा रहा है। कई तो ऐसी भी स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है, और शायद कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई इवन बिफोर दे वर डिस्कवर्ड। और तो और कई ऐसी नॉन स्पीशीज़ भी है जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजिकली साउंड तो हो ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो गेटिंग एनवायरमेंटली अनसाउंड। पता है सेजल, एक स्टडी में पाया गया है कि हम जो AI यूज़ करते हैं, उस बड़े से AI मॉडल को ट्रेन करने में शुरुआत से 10 से 15 गैलन्स पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
0: बाप रे उन्नति, ये तो सच में बहुत

0: गई हैं। देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजिकली साउंड तो हो ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो गेटिंग एनवायरमेंटली अनसाउंड। पता है सेजल, एक स्टडी में पाया गया है कि हम जो AI यूज़ करते हैं, उस बड़े से AI मॉडल को ट्रेन करने में शुरुआत से 10 से 15 गैलन्स पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
1: बाप रे उन्नति, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमाउंट है पानी का।
0: बिल्कुल, और ये अमाउंट हमारे हर एक प्रॉम्प्ट देने से, जो हम AI को प्रॉम्प्ट देते हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ता है। तो मान लो अगर एक इंसान 12,000 प्रॉम्प्ट्स दे तो 1 गैलन पानी का इस्तेमाल होता है,
1: यानी कि प्रॉम्प्ट पर 0.32 मिलीलीटर, राइट? मगर ये नंबर तो बहुत ही छोटा है। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ इंडिया ही वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में आता है। तो मान लो अगर हर 10 लोग एक साल के लिए 1200 प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, तो पर डे, तो यानी हर घंटे वो 5 प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं। और फॉर अ ईयर तो लगभग 140 लीटर पानी का इस्तेमाल, यानी 37 गैलन्स।
0: बिल्कुल
1: हो सकता है फिर तो ये एक इंडिया जैसी डेंसली पॉपुलेशन वाली कंट्री में तो ये आंकड़े और भी अनइमेजिनेबल होते होंगे।
0: बिल्कुल, अनइमेजिनेबल, अनकाउंटेबल, अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी कह लो।
1: मगर एक AI जायंट में पानी का क्या काम?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो जो पानी का इस्तेमाल होता है वो उनके डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में होता है, ताकि उनके जो सिस्टम्स हैं, उनकी जो मशीनरी है, उनको ठंडा रखा जा सके, कोई हीटअप ना हो, ताकि वो परफेक्टली फंक्शन कर सके। उसके बाद पानी का इस्तेमाल बिजली जनरेट करने के लिए किया जाता है, बिजली जो सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि भारी मात्रा में उनके वहाँ पे ऑपरेशंस जो होते हैं वो अच्छे से चल सके।
1: और इसका सोर्स?
0: इसका सोर्स तुम बता ही दो अब हमारे श्रोताओं को।
1: तो इसका सोर्स वो सारे ओशंस, रिवर्स, सीज, लेक्स बनते हैं, जो कंजर्वेशन के मामले में तो इग्नोरेंस की शैडो में आ जाते हैं, मगर रिसोर्सेज और हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए लाइट में आ जाते हैं, विच ब्रिंग्स अस टू आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन,
0: एंड दैट इज वर्ल्ड ओशन डे, यानी विश्व महासागर दिवस, जिसे हर साल आज ही के दिन यानी 8 जून को मनाया जाता है। मगर यहाँ एक इंट्रीगिंग सवाल आता है कि महासागर यानी ओशन और समुद्र यानी सी में अंतर क्या है, क्या तुम बता सकती हो सेजल?
1: बिल्कुल, ओशंस की बात करें तो ये सी से ज्यादा बड़े होते हैं और धरती का लगभग 71% हिस्सा इन्हीं ओशंस का पानी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा शरीर 75% पानी होता है। ओशंस ज़्यादा बड़े और गहरे होते हैं, जबकि सीज उन्हीं ओशंस का एक छोटा सा हिस्सा है।
0: और ओशंस यानी कि महासागर जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के जनरली बीच में होते हैं, जबकि जो सीज होते हैं वो अक्सर ज़मीन से पार्शियली या पूरी तरह से घिरे होते हैं। यूँ समझ लीजिए, एवरी सी इज़ अ पार्ट ऑफ एन ओशन, बट एवरी ओशन इज़ नॉट अ सी।
1: यानी ओशन पूरी दुनिया के एक पानी का विशाल घर होता है, जबकि सी उस घर का एक खास कमरा है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या कहती हो, मतलब अब तुम्हें भी लग रहा होगा, मेरे श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि उन्नति और सेजल का तो बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्यों?
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना अपने प्रोग्राम का पहला ट्रैक सुनवा दिया जाए।
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, जैसा कि हम आज के चर्चा के बारे में बात कर रहे थे, जो कि है वर्ल्ड ओशियन डे, तो उसी कड़ी में अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से मुख्य महासागर हैं। हमारी धरती के टोटल 5 मुख्य महासागर हैं, जिनके नाम हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर और आर्कटिक ओशियन।
4: और उन्नति महासागरों में हजारों लाखों प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जीव जंतु और पानी में वाले पेड़ पौधों की और छोटे जीवों की, जिन्हें फाइटोप्लांकटन या जूप्लांकटन कहते हैं। बड़ी मछलियां जैसे व्हेल्स।

0: sharks, dolphins, समुद्री कछुए, octopus, crabs, कोरल्स से लेकर लाखों छोटी छोटी मछलियाँ, जिनके बीच उनका अलग अलग फूड चेन चलता है, और ताकि इकोसिस्टम मरीन बैलेंस रहे।
1: बिल्कुल। और इसके डेट की बात करें तो हमने आपको बताया कि आज ही के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो पर्पस है।
0: और इसका पर्पस है कि महासागरों की महत्ता और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसे 2008 में यूएन ने ऑफिशियली रीऑर्गेनाइज किया था।
1: और इसके महत्व की बात करें तो इसके महत्व में शामिल है महासागर धरती के जो ऑक्सीजन है उसका सबसे बड़ा जो प्रोवाइडर है वो होता है, फिर जलवायु परिवर्तन और वेदर, इन सब को वो कंट्रोल में रखता है, करोड़ों लोगों को रोजगार, जीविका और खाद्य पदार्थ भी प्रदान करता है। महासागरों की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखना हमें जो ज़रूरी है उसके बारे में जागरूक करता है ये दिन। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं, उसमें भी ये मदद करता है।
0: अब बात इस बात की आती है कि हमारे ओशंस के लिए क्या क्या चीज़ें खतरे में, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें
1: हमारे
0: अपने
1: ओशंस को डेंजर में लाते हैं।
0: बिल्कुल। और जिसमें पहला है प्लास्टिक प्रदूषण, जो हम सब कहते हैं कि प्लास्टिक भाई बैन कर देना चाहिए, और अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन, महासागरों का एसिडिफिकेशन, हैबिटेट नष्ट करना।
1: और अगर हम इस साल के थीम की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आर ब्लू प्लैनेट। यानी कि सेजल ऐसे भी समझ लो ना कि हमारा एक ब्लू प्लैनेट जो है वो भी एक पूरा प्लैनेट हमारे लिए घर ही है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोई भी अपने घर को गंदा तो नहीं रखना चाहेगा, तो जैसे कि हम डेवलपमेंट की और एआई की फील्ड्स में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि डेवलपमेंट करने के साथ साथ हमें उसे सस्टेनेबली भी यूज़ करना चाहिए।
0: तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की चर्चा की कुछ बातें वर्ल्ड ओशन डे पर। तो करेंगे आपसे और भी बातें, पर उससे पहले आइए सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत।

0: दोस्तों, एज यू नो कि भाई हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो खास होता ही है। तो आज भी है हमारे पास कुछ खास, और वो है वार्ता। और उसका शीर्षक है भारत में विलुप्त होती जनजातियां एवं उनका संरक्षण। और वार्ताकार है अंशी यादव। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये वार्ता।
1: भारत एक विभिन्नता से भरा देश है। विश्व में किसी देश में अगर अनेक प्रकार के लोग, समुदाय, परंपरा और भाषाएं पाई जाती हैं, तो वह हमारा देश भारत ही है। इसी विभिन्नता का एक हिस्सा है भारत में पाई जाने वाली जनजातियाँ, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्राइब्स कहते हैं। जनजाति वास्तव में आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैज्ञानिक शब्द है। यह एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के वक्त अस्तित्व में था, या अब राज्य के भूगोलिक नक्शे में बदलाव के बाद उससे बाहर है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है, और इनके लिए कई तरह के विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इनकी भाषा, धर्म, त्योहार, खान पान, नृत्य व संगीत अलग है। ये भारत की जनसंख्या का 9% हिस्सा हैं। ये छोटे छोटे गांव में, जो कि उत्तर के हिमालय से दक्षिण के द्वीप अंडमान निकोबार तक फैले हैं, ये ज़्यादातर मध्य भारत में पाए जाते हैं। कई समुदाय जैसे मध्य प्रदेश के गोंड, राजस्थान के भील्स, पश्चिम बंगाल के संथाल्स विश्व में जनजाति प्रेमियों व शोधकर्ताओं का आकर्षण है। ये सभी जनजाति भारत के टूरिज्म क्षेत्र में इनकम जनरेशन में भी सहयोग करते हैं। ब्रिटिश काल के उपरांत डेमोक्रेसी अर्थात जनतंत्र आने के बाद ऐसी जनजातियों के अस्तित्व पर भारी असर पड़ा। आज़ादी के बाद सारी जमीन का मालिकाना भारत सरकार को सौंप दिया गया, और इसी में जंगल की जमीन, जो कि अधिकतर जनजातियों का घर हुआ करती थी, उनसे छिन गई। इसी कारणवश देखते ही देखते जनजातियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। उनके साथ साथ उनकी भाषा, परंपरा भारत से कम होने लगी। और आज के समय में ब्रिटिश काल के समय से कम जनजातियां हैं, जिनमें से कई विलुप्त हो चुकी हैं या उन्हें विलुप्ति का खतरा है। इनमें से एक है अंडमानी जनजाति। ये अंडमान निकोबार के द्वीप में पाई जाती हैं, जो कि कई वर्षों तक समाज से अलग या एकांत में रहती थी। इनकी पहचान इनके अलग तरह के शारीरिक कद, परंपरा व व्यवसाय से जाना जा सकता है। इनके प्रमुख व्यवसाय शिकार करना, सब्जियां उगाना या मुर्गे पालना है। 18वीं सदी के आखिर तक, जब ये जनजाति पहली बार दुनिया के परिचय में आई, अनुमान यह था कि ये 7,000 अंडमानीज 5 अलग अलग समुदाय में बट गए, जिनकी संस्कृति, रहने का स्थान बदल गया। 20वीं सदी तक इनकी संख्या पर बुरा असर पड़ा। बीमारी, लड़ाई व क्षेत्रों के खो जाने के कारण आज के वक्त 400 से 450 अंडमानीज ही बचे हैं। इनके 3 समूह विलुप्त हो चुके हैं और सिर्फ 2 ही बचे हैं। इन्हीं में अगली जनजाति आती है मध्य भारत, गुजरात, राजस्थान में पाई जाने वाली रबरी जनजाति। यह एक नोमैड यानी बंजारों की जनजाति है, जो खुले आसमान के नीचे झोपड़ी या तंबू में रहती है। इन्हें देसाई, रैबारी देवासी, हीरावंशी,

0: रायका तथा मालधारी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में लगभग 1000 वर्षों तक रबनी ने राजस्थान या मैदानों पर राज किया है। माना जाता है ये समूह ईरानियन पठार से बहुत वर्षों पहले भारत में आया था। इनके प्रमुख व्यवसाय ऊंट बकरी को पालना और उनसे व्यवसाय करना है। रबरी जनजाति की औरतें अपनी एम्ब्रॉयडरी स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। ये कई तरह के बैग, शॉल, रजाई को बना के बेचती हैं। यह जनजाति विश्व के विलुप्ति के खतरे की सूची में आती है। अगली जनजाति है झारखंड की बिरहोर जनजाति। ये भी बंजारों की जनजाति है जो कि झारखंड में पाई जाती है और बिरहोर भाषा का ही प्रयोग करती है। बिरहोर दो शब्दों से बना एक शब्द है जिसमें बिर मतलब जंगल और होर मतलब आदमी है। इनकी पहचान इनके छोटे कद और लंबे चेहरे से की जा सकती है। इनका ये मानना है कि ये सूर्य के अंश हैं और खरवार जनजाति जो कि सूर्य का वंश मानी जाती है इनके भाई हैं। बिरहोर की जनसंख्या आज के समय में 8 से 9 हज़ार या उससे कम ही है जो कि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी कतार में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कमर जनजाति भी आती है जिनकी संख्या 1991 में 20,500 थी जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 666 ही बची। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जनजाति अनुसंधान संस्थान ने 1990 में इसका अनुमान लगाया था कि भुखमरी, बीमारी और कई और कारणों से इनकी जनसंख्या को खतरा है। उसके उपरांत भी इनकी व्यथा में कोई बदलाव नहीं आया और जनसंख्या बहुत ही तेजी से गिरी। इसी प्रकार केरला के कदर ट्राइब्स हैं जो कि कोचीन के पहाड़ों में खेती किया करते थे। 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या केवल 3,000 ही बची थी जो आने वाले कुछ सालों में और कम हुई। केरला में ही पाई जाने वाली कुरुम्बा जनजाति जो कि नीलगिरी पर्वत पर रहा करते थे गरीबी के कारण जनसंख्या में भारी गिराव देख चुके हैं। जनजातियों की विलुप्ति के साथ न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरे विश्व को एक अलग संस्कृति, भाषा, विरासत और परंपरा को खोने का नुकसान होगा। विभिन्न संस्कृति एक देश के विकास का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी कारणवश जनजातियों की संख्या संरक्षण न केवल सरकार, एनजीओ बल्कि आम जनता का भी कर्तव्य है। 2015 के एक शोध के अनुसार झारखंड के संथाल जनजाति ने बताया कि उनकी संस्कृति का ज्ञान उन्हें सिर्फ शब्दों, कहानियों या उनके लोकगीतों के जरिए ही हुआ। उनका मानना है स्कूल में बच्चों को भारत के इतिहास के साथ उनकी संस्कृति के इतिहास में भी बताना चाहिए। आम आदमी को जनजातियों को समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहिए। लोग अक्सर उन्हें छोटा या अनपढ़ समझते हैं जिस कारणवश वो अपनी संस्कृति को भूलकर बाहरी दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इनके लिए कई नियम बनाए हैं जैसे पर्यटकों को उनकी गली से गुजरना वर्जित होता है लेकिन लोग बार बार वहां से गुजर के उन्हें मजबूर करते हैं उनके ही क्षेत्र से चले जाने के लिए। आम आदमी को सरकार के बनाए ऐसे हर नियमों का पालन करना चाहिए। जनजातियां हमारे इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। इनका वर्णन हमने इतिहास में राजपूत काल की कहानियों में जरूर सुना होगा। जंगल को बचाना या जंगल के जन और जीव को बचाना भारत जो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है उसकी विभिन्नता बरकरार रखने में जरूर सहयोग देगा।
1: दोस्तों अभी आपने सुना वार्ता जिसका शीर्षक था भारत में विलुप्त होती जनजातियां एवं उनका संरक्षण और वार्ताकार थी अंशी यादव। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की ओर। वैसे प्रेरणा केवल एक सफलता से नहीं मिलती, प्रेरणा मिलती है उस सफर से जिसमें मुश्किलें भी हों, चुनौतियाँ भी हों, असफलताएं भी हों, लेकिन फिर भी कदम मंजिल की ओर ही बढ़ते रहें।
1: बिल्कुल, सक्सेस इज नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ फार यू आर विलिंग टू गो।
0: सही कहा तुमने उन्नति। और वैसे भी साथियों, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर चलने की कोशिश करता है। शायद प्रकृति हमें बचपन से ही ये सीख देती है कि गिरना असफलता नहीं है बल्कि आगे

0: बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। हर असफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनौतियों को देखकर रास्ता बदलने के बजाय अपने कदम और भी मजबूत कर लेते हैं।
1: और आज की हमारी जो प्रेरणा पुंज है वो भी एक ऐसी ही युवा खिलाड़ी है। एक साधारण परिवार में जन्मी इस बेटी ने अपने सपनों को सीमित परिस्थितियों के हवाले नहीं किया, उन्होंने अपने हौसलों को पंख दिया और हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए उस मुकाम तक पहुंची जहां पहुंचने का सपना दुनिया भर के खिलाड़ी देखते हैं।
0: जिम्नास्टिक्स एक ऐसा खेल जिसमें शरीर का संतुलन, मन का धैर्य और आत्मविश्वास की ऊंचाई तीनों की परीक्षा होती है। आपकी एक छोटी सी गलती वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है, लेकिन उस खिलाड़ी ने इस खेल में खुद को और निखारा और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। तो आइए आज प्रेरणा पुंज में मिलते हैं भारतीय जिम्नास्टिक्स की उस चमकती हुई सितारा से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। हम बात कर रहे हैं प्रणति नायक के बारे में।
1: कहते हैं कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कभी संसाधनों की कमी, तो कभी असफलताओं का दर्द। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और प्रणति नायक ने अपनी चुनौतियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया।
0: और आपको बता दें कि प्रणति नायक का जन्म 6 अप्रैल 1995 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, उनके पिता एक बस चालक के रूप में काम करते थे। प्रणति बचपन से ही बहुत फुर्तीली थी, खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में जिम्नास्टिक्स शुरू किया। रोज कई घंटों की कठिन ट्रेनिंग, थकान और चोटों के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
1: बिल्कुल, उनकी खास पहचान वॉल्ट स्पर्धा में बनी। वॉल्ट जिम्नास्टिक्स की सबसे चुनौतीपूर्ण स्पर्धाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें गति, संतुलन और साहस तीनों की आवश्यकता होती है। और साल 2014 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया और साल 2019 में उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ आया। एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और ये उपलब्धि इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक्स में भारत को बहुत कम पदक मिले थे और उनकी इस सफलता ने देशभर में उन्हें पहचान दिलाई।
1: वैसे तो हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक्स में भाग ले। प्रणति ने भी ये सपना देखा था। सालों की मेहनत और समर्पण के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई किया। इन्होंने भारतीय जिम्नास्टिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2025 में एशिया आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में भी उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और वो कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी महान तब बनता है जब वो गिरकर फिर उठता है और आगे बढ़ता है। उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि अनुशासन, मेहनत और धैर्य से मिलती है। प्रणति नायक का जीवन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सपने देखते हैं और उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, अगर खुद पर विश्वास हो तो कोई भी कठिन परिस्थिति हमें व्याकुल नहीं कर सकती। बस एक बस चालक की बेटी से लेकर के ओलंपिक तक का सफर तय करने वाली प्रणति नायक सच्चे अर्थों में प्रेरणा स्रोत है।
0: और वो कहते हैं कि इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब कभी किसी युवा को लगे कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है या फिर मंजिल बहुत दूर है, तब उसे प्रणति नायक के बारे में सोच लेना चाहिए। एक साधारण परिवार से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का उनका सफर हमें बताता है कि सफलता केवल सुविधाओं की मोहताज नहीं है, ये उन लोगों को ही मिलती है जो हर चुनौती से लड़ना जानते हैं। तो ये थी कुछ बातें प्रणति नायक के बारे में। और अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर, क्यों उन्नति।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी में आपसे पूछते हैं एक प्रश्न है और उसका उत्तर हम अपने प्रोग्राम के अगले दिन के कार्यक्रम में बताते हैं। तो दोस्तों, दिनांक 7 जून यानी कल का प्रश्न था कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका सही उत्तर है 8, जिसमें

0: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है।
1: इसी के साथ हमारा आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। आप अपना जवाब हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर 8004926250 पर। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर पहुँचे उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, वी होप कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप अपनी फीडबैक्स हमें ड्रॉप कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है
1: yuvvnialt@gmail.com।
0: तब तक के लिए आप अपना रखे ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त, मुझे यानी उन्नति
1: और मुझे यानी सेजल को
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो

0: हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद। यह कार्यक्रम रात 8 बजे सुनवाया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे शोभनाथ से लोकभाषा कविता पाठ। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में उत्तम कुमार मलिक के गाए भजन प्रसारित किए जाएंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण कार्यक्रम रात 10 बजे होगा, इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर रामपाल से दुर्गेश मिश्र की बातचीत सुनवाई जाएगी, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा, इसमें हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की वार्ता, एसिडिटी का होम्योपैथिक उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित रामाश्रय झा का ख्याल गायन सुनिए 7:30 बजे, रामशंकर का ख्याल गायन 12:15 बजे और उस्ताद बहादुर खां का सरोद वादन हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 बजे। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में जलज श्रीवास्तव के गाए गीत सुनिए 9:50 पर। मनोज कुमार गुप्ता के गाए भजन 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे। अनुराधा श्रीवास्तव, संतोष कुमार यादव और साथी के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में। पुरुषोत्तम फूलचंद शर्मा और साथी और संगीता राय के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 2:30 बजे। विभव शंकर और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 5:00 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा 10:30 बजे। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी विमला अग्रवाल की वार्ता, क्या घर का काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी। 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे करियर की बात। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे इंदु शेखर त्रिपाठी से रामायण पाठ और गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9:30 बजे। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने अपने कुछ श्रोताओं से बातचीत की, तो लीजिए सुनिए उनकी प्रतिक्रिया।
1: I am Jhilmil from Prayagraj and I just wanted to say that your programs are just pure love. Programs like Bolte Nagme, Chitti Aayi Hai, Hello Farmaish and Yuvani, they are my absolute favorites and they are super duper entertaining. I'd like to add on that 90 years is a massive milestone. So huge congratulations to the program head and all the amazing broadcasters. In fact, a huge congratulations to the whole team for always keeping us hooked. Keep rocking, guys, and I wish you all the very best and many more years of success ahead. Thank you.
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान संवे स्वरों में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने अपने कुछ सुधीर श्रोताओं से बातचीत की, तो लीजिए सुनिए उनके विचार।
1: I am Jhilmil from Prayagraj and I just wanted to say that your programs are just pure love. Programs like Bolte Nagme, Chitti Aayi Hai, Hello Farmaish and Yuvani. They are my absolute favorites and they are super duper entertaining. I'd like to add on that 90 years is a massive milestone. So huge congratulations to the program head and all the amazing broadcasters. In fact, a huge congratulations to the whole team for always keeping us hooked. Keep rocking, guys, and I wish you all the very best and many more years of success ahead. Thank you.
2: मैं एके वर्मा, प्रयागराज से। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर हमारी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। 9 दशकों से आकाशवाणी शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का एक विश्वसनीय माध्यम रहा है। मैं स्वयं आकाशवाणी प्रयागराज का एक नियमित श्रोता हूं। आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित कार्यक्रमों में स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करने वाला एक सराहनीय कार्यक्रम है। प्रातः 8:45 पर प्रसारित होने वाले नमस्कार प्रयागराज स्थानीय परिवेश और जन सरोकारों से जोड़ने वाला एक सराहनीय कार्यक्रम है, जिसे मैं विशेषकर पसंद करता हूँ। गजलों का कंपेयर्ड कार्यक्रम कहकशां अपनी सुमधुर प्रस्तुति और चयनित गजलों के माध्यम से मेरी पहली पसंद बना हुआ है। साथ ही वर्तमान में प्रसारित श्रृंखला आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां, इस कार्यक्रम में नेहा जी द्वारा आकाशवाणी से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के साथ की जा रही आत्मीय बातचीत हमें सुनहरे अतीत की अविस्मरणीय स्मृतियों से जोड़ती रहती है। मंगल कामनाओं के साथ मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि आकाशवाणी भविष्य में इसी प्रकार के उत्कृष्ट, उपयोगी और जनहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन और मनोरंजन करने के साथ ही सफलता के नित नए आयाम स्थापित करता रहेगा।
0: छह 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः।

0: देशे सुशासनस्य नीति निर्माणस्य आधारः। पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सीबीएसई बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता संदर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादश वर्षेषु शासनस्य नीति निर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणं, स्वच्छ भारत अभियानं, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धन जनानां जीवनस्तरे स्थितस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेऽपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं मीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्यां राष्ट्रिय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायां आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अपराह्णे नवदेहली नगरे भारत सभा अभवत्। अस्यां सभायां विपक्षस्य विभिन्नाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस पार्टी इत्यस्य वरिष्ठः नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा ममता बनर्जी, वरिष्ठः नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सूले च आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे उक्तवान् यत् सभायां 25 राजनैतिक दलानि उपस्थितानि आसन्। सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता, सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है।

0: पंचो राम राम।
1: बद्री भैया
0: हाँ भैया,
1: भैया हो इस समय तो हम समझते कि खेती किसानी जोरान पे हुई तैयारी।
0: भैया ए समय देखा कि धान के लौगही हो से पहले जोन तैयारी की जाए, एक तो खेते का कि जोत वोत ले भैया एक बार, और दूसर भैया ए समय एकदम तैयारी बा धान के नर्सरी रहो एक।
1: बिल्कुल। अब भैया साथ साथ एक तैयारी और रखा भैया, मेड़बंदी के इस समय मजबूती से भैया तैयारी कैला हो। कहीं से देखा कल जात है बद्री भैया कि खेत का कुछ है गहराई तक का जौन माटी होला वो उपजाऊ होला।
0: हाँ ऊपर वाली परत है भैया, मान के
1: हाँ
0: चला।
1: अब भाई हो हम कहीं कि देखा बारिश भी कुछ दिन बाद शुरू हो जाए तो माटी के कटाव से किसान के बड़ा नुकसान हुआ।
0: बिल्कुल सही कहन भैया।
1: तो भैया हो मेड़बंदी का पूरा व्यवस्था कैला और खेत अगर खा लूँ छो तो ओके वही अनुसार भैया जौन हो कि परत दर परत बना लो के कहें से कि पानी का बहाव देखा क्षरण जो ना माटी का कटाव ये तेजी से न होए।
0: सही कहन भैया। और जेकर खेत भैया मान लें अगर आप मेड़बंदी कह चुका है और ऊंच खाल जो है सब बराबर है, तो अबे मोटा मोटा भैया ईमान के चला कि 1 महीना से 1.25 महीना का समय धान के लौगही में है। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे में
1: बिल्कुल
0: अगर आप चाहा तो हरी खाद तैयार करे बरे के 1.25 महीना का समय भैया बहुत पर्याप्त
1: बहुत
0: होता।
1: बहुत भैया बहुत बा। और वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती अगर करिए ना हो बद्री भैया तो देखा हो वैज्ञानिक भैया लोग जैसे सलाह देते हैं और उसे हो पैदावार भी बढ़िया होता है, मजबूत दाना भी पैदा होता है, अब भैया किसान खुशहाल भी रहता
0: बिल्कुल
1: है।
0: भैया। अरे समय तो ब्लाके भैया जान रहा है, इसमें सब्सिडी वाला जो अनुदान वाला है, इसमें बढ़िया दाना आ गया है, चला
1: बिल्कुल
0: जाए और
1: बिल्कुल
0: आराम से ले लें। ओकर एक चीज बहुत बढ़िया भैया, वैज्ञानिक से पहले से ही प्रमाणित बहु।
1: प्रमाणित बाय बिल्कुल। और अगर भैया देखा मान लो अपने घरे का रखल अगर कभो भी बीज डालें तो ओकर शोधन जरूरी है।
0: सही बात
1: हाँ
0: है।
1: भैया पूरी तरह से रहें तो देखा हो बद्री भैया खेत किसानी का बात तो होता रहता है। आज 8 जून हो,
0: सही बात है भैया।
1: अब भैया आज देखा न भैया विश्व सागर दिवस हो।
0: हाँ
1: हाँ तो भैया हम कहीं कि ई सब जौन दिवस के रूप में मनावल जाते न एकर मकसद एक होता हो कि एकर संरक्षण एकर सुरक्षा। तो भैया देखा सुरक्षा कैसे हुई पहले तो ये जानब जरूरी हो कि सागर से हमारे जीवन का संबंध बा का जुड़ाव बा।
0: सही बात है भैया।
1: तो भैया देखा एक चीज बता दें कि जौन सागर हो ये पृथ्वी के जलवायु के संतुलन में बड़ा भूमिका एकर हो।
0: सही बात है, एकदम सही।
1: अब भैया देखा यो कहते ना कि जौन सांस लेवे बदे ऑक्सीजन चाहे ना एकर भी उपलब्धता भैया सागर के माध्यम से होता है।
0: भैया हम एकदम आपसे सहमत है कि अगर सागर न हो भैया, और सागर के अंदर जोन पौधा पावा जाते हैं, अगर उनसी ऑक्सीजन न तैयार हो भैया, तो समझा कि जौन हम आप सांस लेते हैं, हम सोची थी सिर्फ जौन हमारे अगल बगल पेड़ पौधा हैं उसी ऑक्सीजन केवल बन पावती है, तो ये गलत आ भैया। हमारे लोग को 50% लगभग।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बद्री भैया देखा सागर से ही कई भैया भैयन का पेट पालत है। मछली से लेके हो तमाम तरह का देखा एकरे अंदर शैवाल रहते हैं जौने का खूब बढ़िया दवाई भी बनत है बड़ा शक्तिवर्धक भैया औषध के रूप में भी प्रयोग में आवत है।
0: सही बात है, सही
1: तो
0: बात है।
1: भैया हो हम कहें कि सागर के माध्यम से भोजन के साथ साथ हो भैया कितना भैयन के रोजगार भी मिलत
0: और
1: है।
0: का और का
1: तो हम कहें भैया जे हमारे जीवन में हमारे जीवन शैली में इतना रोल करत बा तो ओके हम काहे बिगाड़ी।
0: एकदम। और एक घनश्याम भैया एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि अगर जान ले कि आज की तारीख में यानी कल से अगर महासागर न होए, तो समझा सूरज के जितनी रोशनी आवत यह है ना, इतने में पृथ्वी उबले लग गए,
1: उबले लागे
0: और या
1: बिल्कुल
0: तो भैया
1: बिल्कुल
0: वो बर्फ पूरी बन जाए।
1: बिल्कुल बदरी भैया हो जौन प्रकृति हो ना भैया पेड़ पौधा से लेके पानी से लेकर के हवा से लेके सब संतुलित रही तब जीवन संभव हो। और नहीं तो भैया तमाम तरह के दिक्कत आई।
0: एक चीज़ और भैया देखें कि जितना सागर सहयोग करा था हमारे लोग का,

0: हम लोग थोड़ा सोका दुखी है इस समय करते ही। इस समय भैया एक रिपोर्ट आओ यहाँ है कि मतलब प्लास्टिक का जो प्रदूषण है ना भैया,
1: बिल्कुल कह
0: समुद्र
1: गई
0: में
1: ला, कह
0: बहुत
1: गई ला
0: ज्यादा
1: भैया,
0: बढ़ता है।
1: बिल्कुल। तो भैया हो देखा, प्लास्टिक का प्रदूषण समुद्र में तो भैया नुकसान देता, और प्लास्टिक तो हर जगह नुकसान देता
0: सही
1: हो।
0: बात है भैया,
1: तो भैया हो एकर प्रयोग से जो है बचे के जरूरत हो, अपन प्रकृति अपन पर्यावरण के सजा के संवार के रखे के जरूरत
0: बिल्कुल।
1: हो।
0: और भैया एकदम जुड़ा है सागर, जुड़ा है हमसी, हमसी जुड़ा है सागर।
1: बिल्कुल
0: अगर हम
1: बिल्कुल
0: लोग भैया यहीं जो पेड़ काट काट के सोचते हैं कि महल खड़ा कर ले,
1: बिल्कुल
0: जितने पर्यावरण गर्म हुई भैया, हुआ सागर का जल बढ़प शुरू हुई, यानी अगर समंदर बीमार हो जाए भैया, तो जो धरती का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जाए।
1: बिल्कुल। आ देखा भैया हो, उन्नत भेल प्रगत भेल, बड़ी बड़ी जहाज के माध्यम से भी यातायात का एक साधन सागर भी बनल। भैया एकरे से भी तमाम तरह का तेल रिसाव हो जात है, तो ऐसे भी भैया सागर अपन बड़ा प्रदूषित हो जात है, और के अस्तित्व पर खतरा आ जात है।
0: सही बात है घनश्याम भैया। हम कहा देखा कि बहुत सारे किसान भाई हों, हमहू लोग जब भी कभी समुंदर अगर घूमे देखे जाता है, तो भैया हुआ एक चीज का तो ये संकल्प आप आज ही ले लिया कि प्लास्टिक थैली वगैरह का इस्तेमाल भैया हुआ
1: हाँ,
0: ना करबे।
1: जितना तोसे हो सके भैया, सकेल सके उतना
0: हाँ
1: तो तू सुरक्षा दा।
0: एकदम सही।
1: मछली भी आवश्यकता से अधिक भैया अगर पकड़वा, तो देखा मछली का पानी का सफाई भी करत है।
0: एकदम
1: तो भैया यहू से दिक्कत हो। हाँ ठीक है, एक व्यापार हो एक व्यवसाय हो, लेकिन एके भी सोच समझ के भी करे के जरूरत हो।
0: एकदम भैया, व्यापार व्यवसाय से आप बड़ा अच्छा याद दिलाया कि अगर भैया महासागर और सागर ना हो, तो जौन चीज हमका लोग का चाहिए पेट्रोलियम में है भैया, हम लोग आज अपने घरे या दुआरे खरीदे तो मान लो 100 रुपया लीटर मिल जाता है। अगर कहीं पेट्रोलियम आवे का भैया रास्ता समुद्र से ना हो, तो समझा 500 रुपया
1: खर्चा,
0: दे दे लीटर में मिलते।
1: हाँ खर्चा बढ़ जाए
0: हाँ
1: तो भैया हो ये अपने जीवन में देखा, आज बत कही होत बा तो भैया सुने वालन भी भैयन के लगत हुई कि आज जौने चीज के बारे में हम सोचत नहीं रहे, वो हमारे जीवन में हमारे जीवन शैली में कितना ओकर महत्व बा और कितना ओकर योगदान बा।
0: सही बात है। तो ये 8 जून को भैया दिन आज अभिनंदन करे एक दिन अपने सागर का, अपने प्रकृति का, कि उनकर संरक्षण जब हम करब तो भैया हमहू संरक्षित रह पाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और आज ये प्रण ले लें बहुत सारे भैया लोगन के, तो हो सकला कि आज बात बतकही से जानकारी भैल हो, बहुत सारे भैया लोग जानत हुई हैं। तो भैया हो देखा, हम कहीं ना कि एक दूसरे के समझावे से हो, एक दूसरे के कहे से
0: सही बात
1: भैया
0: है।
1: जानकारी भी फैलत है, और भैया प्रेम से ओके मनमावल भी जा सकेला। तो भैया हो देखा, समुद्र का अपने सागर का सुरक्षा करा, तब जीवन सुरक्षित रही, संसाधन सुरक्षित रही, तो हमार त्योहार जो जीवन शैली हो वो बढ़िया रही।
0: एकदम सही कहा घनश्याम भैया। और मैं एक चीज अंतिम एक बार और कहा चाह भैया कि देखा कहा जाता है, जैसे हम लोग विज्ञान पढ़े कि जल से ही हमारे लोग का जीवन आया है, तो भैया अगर महासागर सागर हमका जीवन दे है, तो आज समय भैया आ गया बा कि हम उनका जीवन दे, उनका
1: बिल्कुल
0: संरक्षित
1: बिल्कुल
0: करी।
1: बिल्कुल संरक्षित। देखा प्रकृति जौन कह लगी मानव निर्मित ये सब चीज नहीं हो, ये सब उपहार में मिलल हो।
0: सही बात
1: है
0: है।
1: प्रकृति हमें तो है देहले हो, तो हम कहीं भाई के संजो के न रखबा, एके सहेज के न रखबा, तो भैया ये कहाँ से फिर मिली।
0: सही बात है।
1: तो जौन प्रकृति हमें देहले बा, ते पर हमार तुहार भैया ये धर्म कर्म बनत है कि ओके हम संवार के रखें, ना संवार सका तो बिगड़बो मत करा।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: भैया,
1: तो
0: तो यही
1: भैया
0: संकल्प के साथ सारे पंच भाइयों से अपील पर भैया, ना सिर्फ महासागर सागर बल्कि जितना जल स्रोत हैं सबको बहुत सम्मान करा, उनका बचावा, और प्लास्टिक जोन उपयोग करा थे सिंगल यूज एकर भैया छोड़ा।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, काफी हद तक देखा कमी भेल, थोड़ा सजगता आया, लेकिन अभी पूरी तरह से सजगता एक तरह से कहल जाता है भाई नहीं हो। हम कहीं भैया शहर बाजारे निकला, दो चारठे भैया झोला घरे में सिवाय के रखले रहा, झो साइकिल में टांग ला, गाड़ी के डिग्गी में रखला। हम कहीं कि भैया जब तोहरे पास सामान रहे तो तुके प्लास्टिक का जरूरते न
0: और
1: पड़ी।
0: घनश्याम भैया गांव को मनाई के झोलक कौन समस्या हो, तो पैंटो पायन हुक सी देहन, बोरिया पायन हुक सी
1: बिल्कुल
0: देहन।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम कहीं अगर दुकानदार प्लास्टिक में चोरी छिपे दे भी, तो भैया ओके वहीं पर समझाए दें ना लें, और दुकानदार से भी कहें कि ये तरह के भैया गलती न करा, ये अपन पर्यावरण अपन प्रकृति बहुत बहुत संजो के रखे के।

0: जरूरत
1: एक
0: हो।
1: ठू तो उदाहरण घनश्याम भैया हिया पंच भाइयन के दे चाहब कि आप एक ठू पन्नी ले और उ पन्नी के एक हाथ माटी खोदा और हुएन रख दिया, ओकरे ऊपर पूरी माटी डाल दिया और तू एक साल तक पड़ा रहे ना, एक साल बाद ओका खोदा।
0: गलबे नहीं करत न, वो खत्म हो न गल है। हम कहीं जला दे तो देखा कितना गाढ़ा धुआं निकल के अपन जौन की पर्यावरण की भी दूषित करत हो। तो भैया वो हर तरह से नुकसानदायक हो।
1: सही
0: और
1: बात
0: भैया हो देखा हम बताएं कि हमारे पड़ोसी भैया राम अवतार भैया रहने बड़ी निक गाय, बड़ी सुघर गाय रहल उनकर। अब भैया हो पन्नी में कुछ खाए पिए के सामान लगल रहल, वो गाय छूट गई, वो भैया पन्निए सहित चबाई गई।
1: राम राम राम राम
0: अब
1: देखा।
0: हाँ भाई समझ ला कि खाना पिए अब छोड़ देस, वो भैया धीरे धीरे पेट फूले लागल, वो गाय भैया मर गई, हाथे से
1: बाप
0: निकल गई। तो
1: बताओ।
0: सोच ला कि ये कितना हद तक नुकसानदायक भाई।
1: सही बात है भैया।
0: हाँ तो भैया ऐसे बच बचा के रह के जरूरत है, और ऐसे बहुत दूरी बनावा अपने तो बनेबे करा। आओ भैया और भी भैया लोगन के समझावा, गदेलन के समझावा ये कितना नुकसानदायक चीज़ हो। तो भैया अगर प्रयास जन जन प्रयास करी न हो बद्री भैया, तो ऐसे भैया ये तरह का समस्या से निदान हो ही चाहिए।
1: बिल्कुल। और घनश्याम भैया जौन आप वास्तविक एक घटना सुनाया, ये एक उदाहरण ला, एका चाहे कहानी समझ लें आप, चाहे उदाहरण समझ लें और चाहे जीवन का सार समझ
0: बिल्कुल
1: लें कि अगर
0: बिल्कुल
1: आप प्लास्टिक का गवा पेटे में, तो ये समझ के
0: ई
1: चला कि
0: सच्चाई हो,
1: हाँ
0: ई सच्चाई हो भैया। तो ऐसे जो है दूरी बना के रखा के जरूरत हो
1: सही बात है।
0: बदरी भैया।
1: हाँ भैया।
0: भैया देखा हो मार पंच भैया कहते हुए कि आज कौन कौन कार्यक्रम लेके आयल हुआ, तो भैया देखा गीत गौनाई तो होबे करी,
1: हाँ
0: और आज भैया देखा ये जोन बात बत कही होत रहा है ना, तो यही पर भैया सामयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भारतीय समुद्र यहू पर चर्चा सुनल जाए।
1: हाँ
0: तब मन तो लहकत बा भैया कि फूलचंद शर्मा और संघातिन भैया बैठल हुआ हो, इनसे एक विकास
1: हाँ
0: गीत हो
1: हाँ एक
0: जाए।
1: बार भैया ढोल
0: हाँ
1: मजीरा बजाए दे
0: हाँ
1: जाए, ओकरे बाद फिर पंचायत आगे
0: बिल्कुल
1: बढ़ाए।
0: बिल्कुल सुना।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: हाँ भैया,
4: देखा हो पूर्णचंद शर्मा संघातिन का गव नहीं हो गया, असनेस भी हो गया।
3: हाँ भैया,
4: अब भैया देखा जौन बात होत रहल के समुद्र का सागर का जीवन में कितना महत्व है।
3: हाँ भैया,
4: यही पर भैया देखा सामयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भारतीय समुद्र ओम प्रकाश दिवाकर भैया पर देखा कुछ बताओ थे। एक तो सुना, हमार पंचो सुना।
3: बिल्कुल भैया सुनो।

सामरिक सबसे आम तौर पर स्वीकार की जाने वाली परिभाषाओं में से एक है। रणनीति अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने और संचालन को निर्देशित करने की एक विधि है। भारत का 80%

वह व्यापार और 90% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरता है। पश्चिम एशिया से भारत, चीन, जापान और यूरोप तक प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। सामरिक भूगोल एक चिंतन के रूप में उन स्थानिक क्षेत्रों पर नियंत्रण या पहुंच से संबंधित है जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कौन से क्षेत्र स्थानिक क्षेत्र माने जाएंगे, यह मानवीय आवश्यकताओं और विकास के साथ बदलता रहता है, और बदले में इससे सामरिक भूगोल भी बदलता है। भारत की सीमा से लगे तीन समुद्र हैं। कन्याकुमारी भारत का एकमात्र शहर है जो तीन सागरों को छूता है। कन्याकुमारी दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर को टच करता है। कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ तीन समुद्रों का संगम है। भारत में 9 राज्यों के पास समुद्र तट हैं। ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हैं। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दरों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। हिंद महासागर भारत का सबसे गहरा समुद्र है। इस महासागर का सबसे गहरा हिस्सा जावा ट्रेंच है। साथ ही इसकी गहराई लगभग 7,450 मीटर है। यह गहराई इसे समुद्र की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही इस समुद्र का नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। हिंद महासागर उत्तर में एशिया से घिरा है जिसमें भारत देश भी शामिल है। पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। यह दक्षिण की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर वामावर्त दिशा में घूमता है। हिंद महासागर के शीर्ष पर और पूर्वी गोलार्ध के हृदय स्थित भारत हर तरह से व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता है। अपनी स्थिति, आकार और आर्थिक संसाधनों के कारण यह तटीय देशों में सबसे शक्तिशाली देश है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर भारत की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो संभावित खतरों के विरुद्ध एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है तथा नौसैनिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक मार्ग है। भारत का समुद्री सिद्धांत इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप इसकी भूमिका पर बल देता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत प्रमुख संवादों के माध्यम से अपनी सामरिक साझेदारियों को मजबूत कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत के सामने जिस तरह की समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हैं, उन्हें देखते हुए भारत के लिए इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख ताकतों के साथ व्यापक और समझदारी भरी साझेदारियां करना जरूरी हो गया है। भारत में पहली बार सुनामी 26 दिसंबर सन 2004 को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अब तक की सबसे घातक सुनामी में से एक रही है। इस राष्ट्रीय आपदा से प्रेरित होकर भारत सरकार ने ऐसी समुद्री आपदाओं को कम करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया।

0: हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बंगाल की खाड़ी है, जो लगभग 8,39,000 मील स्क्वायर के क्षेत्र को घेरती है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में स्थित है। यह दो बड़े आर्थिक ब्लॉकों सार्क और आसियान के केंद्र में स्थित है। यह उत्तर में चीन के दक्षिणी भू आबद्ध क्षेत्र और बांग्लादेश और भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों को प्रभावित करता है। प्राचीन शास्त्री भारत में बंगाल की खाड़ी को वंगा सागर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन तमिल साहित्य में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक और नाम वंगा कदल था। इसे कलिंग सागर के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल की खाड़ी गर्म पानी और नम हवा चक्रवात को बढ़ावा देते हैं। बंगाल की खाड़ी चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है, इसलिए इसे कोई ठंडा पानी नहीं मिलता। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, जो आम तौर पर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म पानी के ऊपर बनते हैं, जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बंगाल की खाड़ी दुनिया में सबसे बड़ी है और विविधता वाले समुद्री वातावरण के साथ प्राकृति के वरदान में से एक है। यह कई दुर्लभ और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों और मैंग्रोव के बड़े विस्तार का घर है, जो पारिस्थितिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और इनमें 572 द्वीप हैं। दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह और उत्तर में अंडमान द्वीप समूह इन द्वीपों के दो मुख्य भाग हैं।
1: भैया देखा कितनी बढ़िया बात जौन है बताओ चला गया ना। ऐसा लगा कि सारा जो दृष्टिकोण है भैया ना ओम प्रकाश भैया का सब एकदम वही तरीके से
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया हो। भैया देखा सही बात बा हो कि अपन प्राकृतिक संसाधन जौन हो एकर भैया सही से अगर उपयोग हुई और एकर देख रेख हुई तो भैया ये जौन देखत है ना कि अपार गर्मी पड़े लगत हो तो अपार जाड़ा पड़े लगत हो, कहीं कहीं बारिश होते तो इतना ज्यादा होते कि विनाशकारी हो जाते। तो भैया हो ये प्रकृति के असंतुलित होए का कारण।
1: बिल्कुल भैया, और असंतुलन का कारण हम ही लोग है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो भैया दोष तो हमारे त्योहार हो तो ई भाई एक दू जाने के चेते से न काम चली हो एकरे बदे अभियान के रूप में भैया एक तरह से ना अभियान के रूप में लेके चले के हुई आज जन सहभागिता भी वही स्तर पर भैया बढ़ावे की।
1: बिल्कुल घनश्याम भैया, हम ही कहा कि देखा हम अपने बाबा के समय के बाद देखी तो माए बाबा हरन पूरा बाग वोग बड़ी बड़ी लगाए चारों तरफ पेड़ घोरू घर सब बढ़िया कच्चा और बढ़िया प्राकृतिक रूप से। ओकरे बाद पापा के समय आए, बाबा के समय के बाद में तो नहुक साथे लगभग सारी चीज रही, लेकिन अब हम सोची कि हमारे आवे वाली जो पीढ़ी बा ओका हम का दे के जा बगिया हम छोड़े नहीं,
2: बिल्कुल
1: प्राकृतिक खेती हम करित नहीं। तो अगर हम कोनो चीज अगर संभाल के ना रखब तो आवे वाली अपनी पीढ़ी के सामने का मुंह दिखाऊ।
2: ये हो देखा बाग वाली बात क्या हो तो गांव के बहरे से गांव देखे में रहता लगे कि पेड़े से तोपल।
1: सही बात है, एकदम सही बात।
2: कौन ऐसा घर द्वार रहे जहाँ चार ठे पांच ठे नीम का पेड़ न रहे।
1: ए भैया जेकरे द्वारे पेड़ न रहा उनका मनई कहाँ गिना जात रहा।
2: हाँ बिल्कुल भैया, द्वारे पशु न हो खूटा पर और भैया पेड़ पौधा न हो। दूसर की भैया देखा बाग बागवानी हो इतना फल हो कि भैया नात रिश्तेदार में पहुंचावल जाए।
1: सही बात है,
2: बल्टी भर भर के भैया आम के जो ना पाल पड़े लेके लोग बैठे खाए ओके।
1: सही बात है,
2: कहले गल भैया कि जब आम का समय आवे तो भोजन कहाँ ज्यादा बने।
1: एकदम सही बात है भैया, हमका खूब याद बा कि जब सीकर पाक जाए भैया तो सवेरे सवेरे उठ के जैसे आज का लड़का मांग करत है कि मम्मी हमें चाय चाहिए और मांग, वैसे हम लोग भैया सवेरे सवेरे बल्टी में ले आए के बाबू रख दें और सब जने भाई बहन बैठ जाए और बढ़िया एक एक ही निकाले खाए पड़ा रहा,

0: गिनती नहीं होत रही कि कई ढिका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हो इस तरह देखा मकई होत रहे। ये भैया कहावत कहल जा हो कि चार महीना पनुआ पताई, चार महीना आम, चार महीना कोसली कोयला, आगे दाता राम।
0: क्या बात है भैया।
1: तो भैया सब एकदम नोहर हो गया, देखे के नहीं मिलत है, अब सुने में कहानी आवत।
0: सही बात है भैया। अब एकर कारण भैया यह आगे देखें, अगर हम चाहते हैं कि आवे वाली हमारी पीढ़ी भी वो सब देख पावे जोन हम देखे, कहे कि जोन आजकल भैया एक नवा शब्द जोन अंग्रेजी में बोला जाता है कि जनरेशन गैप।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो भैया उस शब्द हम आगे आवे वाले समय में हमारे बाद वाली जोन पीढ़ी है ना वो तो जनबे न करी कि दुढ़ बैल लगाए के हरे से पूरा पूरा खेत जो डबा जात रहा, पुराई बांध के पूरा पानी खेते में लगाए लीन जात रहा। अब तो मनई क्या करें, कहें कि बटन दबाओ और अब पानी निकलत है तो कहें ट्यूबवेल पानी ऐसे मिलत है।
1: ए, एक थे देखा हम बात कहते हंसी वाली बात बाहो।
0: हाँ
1: बदरी भैया हमारे पड़ोस में माड़ो गड़ल।
0: अच्छा।
1: तो माड़ो में एक सिस्टम रहल भैया कि उमन हरीश बांधल जाले।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ बांधा जाए।
1: ये हो गांव में दिन भर हरीश खोजायल
0: मिल बना है कि
1: गदेला हरीश जनते नहीं बहन के का होला। जब भैया पंडित जी आए गए ना पूजा के समय भैल तो पता चल कि हरीशे नहीं। तो जे घरे के बुजुर्ग रहे कहें वही भूसौरिया में रखल
0: रखा है।
1: तब जब आयल तो लड़का कहें कि दादा एके तो हम कई बार देख। तो यह भैया ये दुख के बात हो।
0: सही बात है।
1: थुन्नी बड़ेर हरीश जुआ भैया ये सब लड़कन के ना शब्दावली हो जाइए।
0: सही बात है भैया। अब गांव देहात के लड़का भैया जे तरीके से आधुनिक परंपरा बढ़ा, परंपरा तो ना कहा भैया, पश्चिमी सभ्यता के देखा देखी में भगा जाता है, चमक धमक में भगा जाता है। लेकिन विश्वास करें भैया जौन अपने गांव में अपने खिया आनंद है ना कि आप अपने को खुद को स्वस्थ रखा था, चार पैसा कमाता है, और सबसे बड़ी बात देश के विकास में आप अपन सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बदरी भैया कहो खटिया बिन जाए रस्सी से, आ वही पर हल्का चदरा डाल के सुतते हैं लोग, रस्सी से समझ ला भैया वो जौन का कल जला कौन
0: प्रेशर।
1: अब भैया ये देखा ये हमार तो बुजुर्ग हमार तो पुरनिया भैया बहुत पहले से करत
0: हैं। हाँ, सही बात है
1: भैया। देखा गोड़े की ओर उंचन रहे, थोड़ा गांठदार रहे, एड़ी पर दबाव पड़े, ब्लड सर्कुलेशन जो उनकी बढ़िया रहे। तो भैया ये सब वैज्ञानिक तौर तरीका रहे जीवन को हो, आ एके आज लोग पिछड़ापन मानत है।
0: सही बात है। फोम के गुद्दा पे लेट के मनाई कहे हम बहुत आधुनिक हो गया
1: ही,
0: और पैरा के जो उन गद्दा बना के मनाई लेटे कहा है वो बड़ा पिछड़ा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जौन हमार पुराना समय के खान पान रहल, जौन रहन सहन रहल भैया हो वो बड़ा वैज्ञानिक रहल,
0: रहा रहा
1: ऊपर सोचे के जरूरत हो ओके समझे के जरूरत हो। आज देखा थे कि पहले कुआं से पानी खिंचाए, जाता ओखर मूसर चले सब स्वस्थ रहे। अरे हे भैया ये कुल अब लड़का नहीं करे चतन हो, लड़का जाए के वो मशीन जिम।
0: सही बात
1: जिम में भैया वह कमुआ करत हैं। लेकिन भैया तब ओमन जो के एक अलग उनकर सोच हो।
0: सही बात है भैया। वह कमुआ कह के आदमी शरीर को स्वस्थ रखे, चार पैसा जोन दूसरे खर्चा हो रहा है उनका बचाव है, और जोन समय पे काम न पूरा हो पावे उनका समय पे पूरा कर ले, और सबसे बड़ी बात भैया जोन अपने दूसरे में एक लोग जब बात कराए बैठे साथे काम करें तो जोन प्रेम रहा वो प्रेमोए गायब हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब तो भैया वो पड़ोसी पड़ोसी की यहाँ ना बैठे
0: ना बैठे। सही बात है।
1: अपने में सब मस्त। अरे पड़ोस तो छोड़ा हो, अगर घरे में तीन ठे भाई हुए
0: हाँ
1: भैयावन के आपस में बतियाओ महीनों बीच।
0: सही बात है। एक के छते के नीचे मनाई रहा था, पता लागू अपने कमरा से ना निकरेन वो अपने ना निकरेन। और आजकल तो भैया एक ठी बहुत बढ़िया दूरभाष यंत्र चला है, आजकल वो दूरभाष यंत्र बन गया है स्मार्टफोन।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मतलब स्मार्ट आदमी का रहा स्मार्टफोन हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल भैया।
0: स्मार्ट आदमी का रहा कि एक दूसरे के साथ और बंधा पंच भाइयों के साथ किसान भाइयों के साथ मिल बांट के और बढ़िया उन्नति खेती करा उनका ठीक उल्टा होई गो।
1: अरे भैया हम कहीं ये हो बहुत नीक चीज बाय कर सही से
0: उपयोग करा एकदम सही।
1: भैया बेवजह बैठल बाय फोन लगा के पूछत बाय कि फोन लग गया ससुरारी पूछे का बनल खाना में दाल में नमक ठीक बा कि ना। अरे करे बदी छोड़िए भैया।
0: सही बात है।
1: गदेला लेके मन भैया देखत बैन हुआ खेलत बैन अब टीवी देखत बैन वीडियो देख। अरे ऐसे पढ़ाई लिखाई करा अच्छी जानकारी ला अच्छी अच्छी चीज खोजा। तो भैया हो कहल जाता कि दुनिया का पूरी जानकारी हो जेबा में।
0: सही बात है भैया। इंटरनेट तो भैया ऐसी चीज है कि आप अगर एक जमाना रहा कहा जाता रहा कि इस मनई गुरुकुल पढ़े जाए

0: और जब तक वेद पुराण न पढ़ लें ज्ञान न होए। आजकल मोबाइले में भैया आपका सारा वेद पुराण नहीं विज्ञान भरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सही चीज के तलाशा।
0: हाँ,
1: सही चीज के तलाश कर, ये बहुत अच्छी चीज हो।
0: एमा घनश्याम भैया, हम एक बात और कह चाहब कि देखा एमा, सिर्फ हम लड़कियन को दोष नहीं दे सकित, हम अपने पीढ़ी का और अपने माई बापों को तो और अपने आप को स्वयं को दोष देव कि देखा हम अपने सहूलियत बड़े सोचित कि लड़किया को मोबाइल दे दे, अपने काम में व्यस्त रहा, हम अपन अलग अपने काम में व्यस्त रही।
1: बिल्कुल भैया, दोस्त जे सयान समृद्ध बा वही के मान। अरे छोट लड़का पहले रोए हो,
0: हाँ,
1: गोद में लड़का कोरा में रोए तो उनके खेल खिलौना दे जाए, उनके वो झुंझुना दे जाए, वो बजाय उमन ओके देखा है, ओके सुने। अब तो भैया हो कार्टून लगा के दे देते बैठे, वही में निहारत बटन, आँख पर बुरा प्रभाव पड़त बा, दिमाग पर वही समय से जौन हो उनके असर आ जाता।
0: अच्छा भैया, हम कहे कि देखा अगर एक ठू कुछ और संगीत लोग गीत और झंझनाए जाए ढोल मजीरा भैया, तो पंचायत एकदम अपने चरम पे आ जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो देखा मोहन लाल कांस्कार और उनका साथी।
0: हाँ
1: भैया देखा एकदम तैयारी में हुआ ढोलक मजीरा लेकर के, अब भैया से सुनल जाए गौने।
0: हाँ भैया सुनाओ।

0: भैया बजर पड़े हो ऐसा गर्मी
1: और
0: मची
1: सही
0: है।
1: बात भैया, बजर गर्मी पड़ती हुआ है इस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम कहीं हो कि सही समय पर मौसम अपने बढ़िया उफान में रहे हो, तो भैया देखा यह तो चाहत हो प्रकृति भी
1: सही बात
0: है
1: है
0: कि
1: एकदम।
0: जाड़ा के समय में जाड़ा पड़े, गर्मी के समय में गर्मी पड़े, बारिश में खूब बढ़िया बारिश हो, तो भैया यह तो अपने यहाँ का विशेषता है।
1: यह विशेषता। और भैया, और जिस तरीके से भैया मौसम इस समय है, इहमा आपन बहुत ख्याल रखें, अपने मवेशी का बहुत ख्याल रखें, और अगर खेते में जाता हैं तो दोपहरिया के समय भैया छोड़ के सुबेरे संजय बहुत सुबेरेन हो जात, सूरज भगवान निकल गया दिन और देर शाम की बूढ़त हिन, तो वही
0: बिल्कुल
1: बीच में काम करें।
0: बिल्कुल, आज देखा जो उनके कहला है ना कि गोरु चौवा का ध्यान रखे, तो ध्यान रखे कि भैया खाली इतने नहीं कि उनके छाँव में बांध दें, उनके समय पर ताज़ा पानी भी
1: पानी
0: रखावल
1: दें।
0: करें, और अगर भैया नया बाग हो तो कर जो ना कि थाला बना के सिंचाई उचाई का भी बड़ा ध्यान रखें, और सिंचाई भैया विशेष रूप से शाम के समय करें ताकि ठंडा ठंडा पानी रात भर उनके मिले और पौधा जो ना सूखी रहे।
1: घनश्याम भैया देखा, एकरे साथे आप पंच भाइयन से एक अपील करे एक बार कि देखा पंच भाई हरन, हम लोग आज आपको बहुत सारी जानकारी दीन, बहुत सारा चीज सुनवावा गवा, लोक गीतों सुनवावा गवा। अब देखा हम लोग चाहे कि आपके मन में का चलता है वो हमका बतावा।
0: भैया हो बिल्कुल सही बात कहते हैं कि देखा जब दोनों तरफ से बात बत कही होत रहते ना,
1: हाँ
0: तो भैया कार्यक्रम अच्छा से अच्छा भी पहुंचा था और उनकर खेती किसानी में उनके लाभ भी होता, तो भैया ये तो देखा हो तबे न हुई हो बद्री भैया जब उनके आपन कोनो भैया संपर्क नंबर बताइए।
1: बिल्कुल भैया। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आप एक ऐसे नंबर लिखा जिस पर आप हमका लोग को व्हाट्सअप कह सकत है, और व्हाट्सअप पे आप जोन मैसेज भेजवा वो हमका मिल जाए। नंबर नोट कर ले भैया, 800-4926-2525। नंबर एक बार और नोट कर ले जा किसान भाई, 800-4926-2525।
0: ये देखा हमारे किसान भैया पढ़ा लिखा होता है एक बार एक।
1: अंग्रेजी जाना
0: हाँ
1: था
0: बिल्कुल
1: तो अंग्रेजी में नंबर बताया था घनश्याम भैया का है।
0: हाँ भैया देखा 8004926250।
1: तो व्हाट्सएप के साथे साथे देखा किसान भाई, आप लोग आजकल अगर सोशल मीडिया चलावा था, फेसबुक चलावा था, तो आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से, आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से आप जाबत फेसबुक पे आपको पेज मिली, हुआ आप लाइक कर सकत है, कमेंट कर सकत है, और संदेशा दे सकत है पंचायत भवन का कि आप का ऐसा आपका कार्यक्रम लगता है और का सुनना चाहता है।
0: बिल्कुल ओके भैया देखत रहबात, और कार्यक्रम कौन कौन हमारे यहाँ से प्रसारित होए वाला हो ओकर भी आपके समय मिल जाए और आप ओके भी सुन सकबा।
1: तो भैया चला चली के बेला हो गए, तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने अपने कुछ श्रोताओं से बातचीत की, तो लीजिए सुनिए उनकी प्रतिक्रिया।
2: मैं एके वर्मा, प्रयागराज से। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर हमारी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। 9 दशकों से आकाशवाणी शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का एक विश्वसनीय माध्यम रहा है। मैं स्वयं आकाशवाणी प्रयागराज का एक नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित कार्यक्रमों में स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करने वाला एक सराहनीय कार्यक्रम है। प्रातः 8:45 पर प्रसारित होने वाले नमस्कार प्रयागराज स्थानीय परिवेश और जनसरोकारों से जोड़ने वाला एक सराहनीय कार्यक्रम है, जिसे मैं विशेषकर पसंद करता हूँ। गजलों का कंपेयर्ड कार्यक्रम कहकशां अपनी सुमधुर प्रस्तुति और चयनित गजलों के माध्यम से मेरी पहली पसंद बना हुआ है। साथ ही वर्तमान में प्रसारित श्रृंखला आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। इस कार्यक्रम में नेहा जी द्वारा आकाशवाणी से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के साथ की जा रही आत्मीय बातचीत हमें सुनहरे अतीत की अविस्मरणीय स्मृतियों से जुड़ती रहती है। मंगल कामनाओं के साथ मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि आकाशवाणी भविष्य में इसी प्रकार के उत्कृष्ट, उपयोगी और जनहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन और मनोरंजन करने के साथ ही सफलता के नित नए आयाम स्थापित करता रहेगा। एक बार फिर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः हार्दिक बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएँ।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश

पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान

0: बिन्दु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
4: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुँचेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
5: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट

0: प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरख कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
5: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
6: गुड इवनिंग।
7: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रोफेसर मुश्ताक अली की वार्ता, अज्ञेय के मुखर मौन की अभिव्यंजना।
8: जब अज्ञेय ने काव्य में मौन की अभिव्यंजना की बात की, तो उनका उद्देश्य उस समय क्या रहा होगा, यह जानना बेहद ज़रूरी है। जून 1966 में बेलग्रेड रेडियो से प्रसारित एक वक्तव्य में अज्ञेय ने साफ साफ कहा है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि कविता भाषा में नहीं होती, वह शब्दों में भी नहीं होती। कविता शब्दों के बीच की नीरवताओं में होती है, और कवि सहज बोध से जानता है कि उससे दूसरे तक पहुंचा जा सकता है, उससे संलाप की स्थिति पाई जा सकती है, क्योंकि वह जानता है कि मौन के द्वारा भी संप्रेषण हो सकता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए अज्ञेय ने एक कविता भी उद्धृत की। वह कविता द्रष्टव्य है। मुझे 3-2 शब्द कि मैं कविता कह पाऊँ, एक शब्द वह जो न कभी जिह्वा पर लाऊं, और दूसरा जिसे कह सकूं किंतु दर्द

मेरे से जो ओछा पड़ता हो, और तीसरा खरा धातु पर जिसको पाकर पूछूं क्या न बिना इसके भी काम चलेगा, और मौन रह जाऊं मुझे तीन दो शब्द कि मैं कविता कह पाऊं। जाहिर है इस कविता में अज्ञेय ने यदि किसी चीज़ की प्रतिष्ठा की है तो वह न तो भाषा है, न तो शब्द है, न तो अर्थ है, वह केवल मौन है। अज्ञेय ने अपने इसी वक्तव्य में मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि जिस किसी ने भी अच्छा काव्य पढ़ा है उसने लक्ष्य किया होगा कि कवि शब्दों का न केवल भरपूर सार्थक प्रयोग करता है बल्कि कभी कभी शब्दों या वर्णों का उपयोग न करके ही अर्थ की वृद्धि करता है, यानी शब्दों का ही अर्थ गर्भ उपयोग नहीं, अर्थ गर्भ मौन का भी उपयोग करता है। मुझे हमेशा लगा है कि यही भाषा का श्रेष्ठ कलात्मक उपयोग है, जिसमें न केवल शब्दों के निहित और संभाव्य अर्थों का पूरा उपयोग किया जाता है बल्कि उन अर्थों का भी जो कि शब्दों के बीच के शब्दहीन अंतराल में भरे जा सकते हैं। मैंने जब कहा केवल सही शब्द मिल जाएं तो उसका यही आशय है। सही शब्द वे ही हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें, अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सकें। अज्ञेय की कविताओं में आए मौन की आलोचकों ने अलग अलग दृष्टियों से व्याख्या की है। आज के मशहूर आलोचक श्री शंभुनाथ इसे बिटवीन द लाइंस का मुखर होना मानते हैं, और रोला बार्थ के हवाले से कहते हैं कि रोला बार्थ ने एक उपमा दी थी कि देह का वह अंग अधिक आकर्षित होता है जहां पोशाक उसे किंचित खुला छोड़ देती है। इस अंतराल मौन या बिटवीन द लाइंस का मुखर होना पाठक पर निर्भर करता है। ऐसे मौके पर उसकी सृजनात्मक कल्पना का सक्रिय होना जरूरी होता है। हम अज्ञेय की कविता में सुस्पष्ट अर्थ से भिन्न अनगूजें संकेत और अर्थ की धुंधली प्रतिच्छायाएं पाते हैं, इसलिए अज्ञेय की कविताएं सामान्य रीति से अलग हटकर पाठ की मांग करती हैं। ग्राहक, पाठक या श्रोता कविता में अंतराल या मौन का अर्थ कैसे ग्रहण करे, इस पर भी श्री शंभुनाथ ने सवाल उठाया है और कहा है कि अज्ञेय ने तार सप्तक में अपने वक्तव्य की इस धारणा का विस्तार कभी नहीं किया कि अभिव्यक्ति में एक ग्राहक या पाठक या श्रोता को वे कैसे अनिवार्य मानते हैं। अज्ञेय के दूसरे वक्तव्य कि यह ग्राहक या पाठक कवि के बाहर क्यों हो, क्यों न उसी के व्यक्तित्व का एक अंश दूसरे अंश के लिए लिखे, इस पर भी सवाल उठाते हुए श्री शंभुनाथ ने कहा है कि फिर कवि अपनी रचनाएं क्यों प्रकाशित कराता है या सुनाता है। कविता न शून्य में जन्म लेती है और न पाठक श्रोता के बिना उसका भविष्य है। कहना यह चाहिए कि पाठक अर्थ उत्पन्न करने वाला खुद भी एक सृजनकर्ता होता है, उसके बिना कवि की गति कहाँ। जाहिर है अज्ञेय की कविताओं में मौन का अर्थ ग्रहण करना एक जटिल प्रक्रिया है जिससे पाठकों को ही नहीं आलोचकों को भी दोचार होना पड़ता है। अज्ञेय के मशहूर आलोचक श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी मौन के प्रयोग को एक नाम ही देते हैं, मौन का विभावन और प्रयोग, और कहते हैं कि इसमें अज्ञेय का अपना भाषा दर्शन निहित है, इसे वे सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति की समस्या मानते हैं। यानी अज्ञेय की बात की कविताओं में यह द्वंद्व प्रायः दिखाई देता है। अज्ञेय की ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनमें उनका भाषा दर्शन व्यक्त हुआ है, लेकिन दर्शन की भाषा में नहीं अपितु कविता की भाषा में। चतुर्वेदी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि रचनाकार के लिए यह वस्तुतः सत्य से साक्षात्कार की मौलिक समस्या है, और सभी दृष्टियों से
यहाँ अज्ञेय के क

का उत्कृष्टतम रूप देखा जा सकता है। मौन को केंद्र में रखकर अज्ञेय ने कई कविताएं लिखी हैं, जैसे निवेदन, नई व्यंजना, अकेली न जइयो, जो कहा नहीं गया, आज तुम शब्द न दो, मंगलाचरण, मुझे तीन दो शब्द, शब्द और सत्य, चिड़िया ने ही कहा, अकेली और अकेली आदि। यहाँ प्रस्तुत है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये में संकलित जितना तुम्हारा सच है शीर्षक कविता, जिसमें अज्ञेय ने स्वयं प्रतिपादित किया है कि मौन भी अभिव्यंजना है। कहा सागर ने चुप रहो, मैं अपनी अबाधता जैसे सहता हूँ, अपनी मर्यादा तुम सहो, जिसे बांध तुम नहीं सकते उसमें अखिन्न मन बहो, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। कहा नदी ने भी नहीं मत बोलो, तुम्हारी आँख की ज्योति से अधिक है चौंध जिस रूप की, उसका अवगुंठन मत खोलो, दीठ से टोह कर नहीं मन के उन्मेष से, उसे जानो उसे पकड़ो मत उसी के होलो। श्री शंभुनाथ की तरह श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी भी ऐसे दूसरे लेखकों को भी उद्धृत करते हैं जिन्होंने मौन के महत्व को प्रतिपादित किया है। विटगेंस्टाइन का स्मरण करते हुए उसी के हवाले से वे कहते हैं कि व्हाट वी कैन नॉट स्पीक ऑफ वी मस्ट बी साइलेंट अबाउट, अर्थात जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते वहाँ चुप रहना ही श्रेयस्कर है। विटगेंस्टाइन के बाद वे डरेल को याद करते हैं जिन्होंने अपने अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट में कहा है कि कवि इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता है कि दुख की अनुभूति के तई अपने को अर्पित कर दे, और अज्ञेय की जितना तुम्हारा सच है कविता का शेष अंश उद्धृत करते हैं। यही कहा पर्वत ने, यही घन वन ने, यही बोला झरना, यों कहा सुमन ने, अग जग एक मत, मैं भी सहमत हूँ, मौन नत हूँ, तब कहता है फूल अरे तुम मेरे हो, वन कहता है वाह तुम मेरे मित्र हो, नदी का उलाहना है मुझे भूल जाओगे, हम सब कुछ अपना तुम्हारा दोनों दे रहे हैं तुमको अनुक्षण, अरे ओ क्षुद्र मन, और तुम हमको एक अपनी वाणी भी हो सौंप नहीं सकते, सौंपता। गौरतलब है कि जितना तुम्हारा सच है शीर्षक कविता में कवि के मौन का भाव प्रकट होता है, जो समग्र जीवन के प्रति अर्पित होने के भाव से मूलतः संबद्ध है। अज्ञेय ने अपनी एक अंग्रेजी कविता कन्फ्लुएंस में भी कुछ ऐसा ही भाव प्रकट किया है जब वे कहते हैं इज कम्युनियन ओनली अ कन्फ्लुएंस ऑफ सॉलिट्यूड्स, अर्थात साक्षात्कार क्या केवल एकांतों का मिलन है। कहना न होगा कि मौन का यही भाव अज्ञेय की असाध्य वीणा में भी व्यक्त हुआ है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य अनाप अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी के मुताबिक अज्ञेय की कविताओं में आए मौन को दो स्तरों पर समझा जा सकता है, एक है अर्पित होने की मनः स्थिति और दूसरा है सांकेतिक अभिव्यक्ति, और इन्हीं दोनों स्तरों के कारण अज्ञेय की कविताओं में असाधारण शक्ति का संधान हुआ है। अज्ञेय की कविताओं में मौन निष्क्रिय नहीं, उसी से तनाव पैदा होता है जो सृजनात्मकता का मूल उत्स है। कहना सब सुनना है, स्वर केवल सन्नाटा, यानी सन्नाटे में एक तनाव है।

0: अप्रत्याशित के घटित होने की संभावना है और इस माने में वह शांति से भिन्न है। अज्ञेय ने आत्मने पद में स्वयं भी कहा है कि आज का कवि पाता है और अगर नहीं पाता है तो मैं कहूँगा कि उसे पाना चाहिए कि व्यंजना के पुराने साधन पर्याप्त नहीं हैं। कवि नई सूझ, नई उपमाएं, नया चमत्कार कविता में लाता है। ये धीरे धीरे परिचित होकर हमारी भाषा को संपन्न तर बनाते हैं लेकिन स्वयं मर जाते हैं। तो व्यंजना के नए माध्यम की खोज में अगर कवि पाता है कि उसे जो कहना है वह मौन ही में कहा जा सकता है तो क्या वह बिल्कुल भूला है? मौन कविताओं में कहाँ और कितना अपेक्षित है इसकी पहचान अज्ञेय को जितनी है उतनी कम कवियों को है। उनकी कविता बच रही जो बात में इसे बखूबी समझा जा सकता है। बात है चुकती रहेगी, एक दिन चुक जाएगी ही बात, जब चुक चले तब उस बिंदु पर जो मैं बचूंगा ही, उसको मैं कहूँ इस मोह में अब और कब तक रहूँ, चुक रहा हूँ मैं स्वयं जब चुक चलूँ, तब भी बच रहे जो बात, बात ही तो रहेगी उसी को कहूँ, यह संभावना यह नियति कब की सहूँ, उतना भर कहूँ इतना कर सकूँ जब तक चुकूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर मुश्ताक अली की वार्ता अज्ञेय के मुखर मौन की अभिव्यंजना। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुगम संगीत, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उत्तम कुमार मलिक के गाए भजन। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

इस भक्ति रचना के बाद लीजिए सुनिए ब्रह्मानंद की लिखी ये भक्ति रचना उत्तम कुमार मलिक के स्वर में।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उत्तम कुमार मलिक के गाए भजन।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल

0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
2: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहाँ आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहाँ मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी, और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना, और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एक

0: एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहां क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के। तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया, यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है, या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे, क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेट

0: क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करें। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा CM डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह

0: धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है, तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही है, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम है जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
1: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
1: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
0: जी।
1: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। 3 तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं। महात्मा

0: महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न खटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस

0: के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है। जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे। तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में हो यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों
1: को, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गांव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980 82 83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर। मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाई की में 2 जून 1988 को गया था।

0: ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका का कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था। आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर रिकॉर्ड हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनके सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया। और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
0: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो

0: का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया। उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11-12 को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे। लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है। और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे, भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए भारत जो देश है, जनसंख्या

0: के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है।
1: बिल्कुल,
0: और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो हाँ। उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, रंजन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
2: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
2: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
0: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर पार्लू राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोर देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में, सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार है वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
4: और जितने लोग भी कार से सफर
1: करते हैं, 8 बजे शुरुआत होती है वो,
4: तो
1: रेडियो,
4: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे

0: लोग अलग नहीं हो सकते, अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर यहाँ, मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे। सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है। बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
3: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है, उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे, उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े-बड़े तो संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगो युगो तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
8: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य

0: चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर

0: चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के

0: तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Later, addressing the media, Congress President Mallikarjun Kharge said various issues were discussed and participants shared their views during the meeting. Reacting to the meeting, the BJP spokesperson Sambit Patra, while addressing media, claimed that the India bloc lacks credibility among the people. Akashvani is celebrating 90 years of dedicated public service today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, marking the beginning of a remarkable journey in broadcasting, information, education and culture. Post-independence, the network expanded rapidly and officially adopted the name Akashvani in 1956. To mark the occasion, Akashvani organized a cultural program named Spectrum at Akashvani's Rang Bhavan in New Delhi today. Talking to Akashvani News, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi said, Akashvani has served as the backbone of the society for generations.
1: Since the establishment of All India Radio 90 years ago, Akashvani has remained the heartbeat of its listener and of the nation every day and every moment. Through every medium, Akashvani has continued to provide news, information and entertainment in the voices of people living in every corner of the country.
0: India recorded the biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Baraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्स

0: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो जंगलात और माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज़ किया था जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। NTA ने वाजह किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट UG का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में NTA ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
2: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़िरात से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर्स है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और DMK ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
4: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
2: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए BJP तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
5: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
2: भारत ने मगरबी एशिया में ताज़ा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये ताज़ा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा तश्वीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुँचे। وزارت نے سب سفارت

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, आकाश की अनंत वादियों में जगमगाते सितारों की तरह भावनाओं और एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया लेकर हम उपस्थित हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कहकशां में। आधे घंटे तक हम साथ साथ सफर करेंगे गजलों की उस दिलकश राह पर, जहां शब्दों की नजाकत, सुरों की मिठास और जज्बातों की गहराई एक अद्भुत समा बांध देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली गजल।

दोस्तों, गज़ल सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं, बल्कि दिल की उन धड़कनों की आवाज़ है जो कभी खुशी बनकर मुस्कराती है तो कभी यादों का रूप लेकर

दोस्तों, सच ही कहा गया है कि गज़ल दिल की उन भावनाओं की जुबां होती है जिन्हें अक्सर शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। कभी ये मोहब्बत की नरमाहट बनकर आती है तो कभी यादों की हल्की सी दस्तक बनकर मन को छू जाती है। जिंदगी के सफर में कुछ रिश्ते, कुछ पल और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे साथ चलती रहती हैं। गज़लें इन्हीं एहसासों को अपने नाजुक अल्फाज और दिलकश अंदाज में हमारे सामने रखती हैं।

दोस्तों, अच्छे शेर सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। गज़लों की यही तो खासियत है दोस्तों, हर कोई अपने अनुभवों और भावनाओं के अनुसार उनमें अपना कोई न कोई अक्स देख लेता है। कभी कोई मिसरा मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है तो कभी कोई शेर बरबसी सोचने पर। दोस्तों, संगीत और शायरी का यह अद्भुत संगम सदियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता आया है। मुझे उम्मीद है कि आज की गजलें आपको पसंद आ रही होंगी, तो लीजिए सुनिए अगली गजल।

तो दोस्तों, गज़लों की खुशबू से महकती आज की इस महफिल में आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। ये महफिल हमारी बस अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद है कि अल्फाज की नज़ाकत, सुरों की मिठास और जज्बातों की रवानी से सजी यह कहकशां आपके दिल के किसी कोने को अवश्य छू गई होगी। चलते चलते बस इतना ही कि जीवन की भागदौड़ के बीच अपने भीतर की संवेदनाओं और मुस्कुराहटों को हमेशा सहेज कर रखिए। यही छोटी छोटी खुशियाँ हमारे दिन को रोशन और रातों को सुहावना बना देती हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आपका हर दिन नई उम्मीदों और हर शाम मधुर यादों से सजी रहे, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की आखिरी गज़ल और मुझे यानी सावित्री श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।

0: मोहम्मद रफ़ी की गाई फिल्म आखिरी दांव की इस गज़ल के साथ ही कहकशां कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने अपने कुछ श्रोताओं से बातचीत की। लीजिए सुनिए उनके विचार।
1: I am Jhilmil from Prayagraj and I just wanted to say that your programs are just pure love. Programs like Bolte Nagme, Chitti Aayi Hai, Hello Farmaish and Yuvani, they are my absolute favorites and they are super duper entertaining. I'd like to add on that 90 years is a massive milestone. So huge congratulations to the program head and all the amazing broadcasters. In fact, a huge congratulations to the whole team for always keeping us hooked. Keep rocking, guys, and I wish you all the very best and many more years of success ahead. Thank you.
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर

0: देखने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया को फिल्म रेडियो में। गीत के बोल लिखे थे सुब्रत सिन्हा ने, धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सीआईडी से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, धुन बनाई ओपी नैयर ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अब आइए सुनते हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का गीत उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई निखिल विनय ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने अपने कुछ सुधी श्रोताओं से बातचीत की, तो लीजिए सुनिए हमारे एक श्रोता का विचार।
1: गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर हमारी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। 9 दशकों से आकाशवाणी शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का एक विश्वसनीय माध्यम रहा है। मैं स्वयं आकाशवाणी प्रयागराज का एक नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित कार्यक्रमों में स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करने वाला एक सराहनीय कार्यक्रम है। प्रातः 8:45 पर प्रसारित होने वाले नमस्कार प्रयागराज स्थानीय परिवेश और जन सरोकारों से जोड़ने वाला एक सराहनीय कार्यक्रम है, जिसे मैं विशेषकर पसंद करता हूँ। गजलों का कंपेयर्ड कार्यक्रम कहकशा अपनी सुमधुर प्रस्तुति और चयनित गजलों के माध्यम से मेरी पहली पसंद बना हुआ है। साथ ही वर्तमान में प्रसारित श्रृंखला आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां, इस कार्यक्रम में नेहा जी द्वारा आकाशवाणी से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के साथ की जा रही आत्मीय बातचीत हमें सुनहरे अतीत की अविस्मरणीय स्मृतियों से जुड़ती रहती है। मंगल कामनाओं के साथ मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि आकाशवाणी भविष्य में इसी प्रकार के उत्कृष्ट, उपयोगी और जनहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन और मनोरंजन करने के साथ ही सफलता के नित नए आयाम स्थापित करता रहेगा। एक बार फिर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः हार्दिक बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं।
2: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आजा नचले का गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। रचना जयदीप सानी की थी, धुन सलीम सुलेमान की। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म झूठा कहीं का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के वो लिखे हैं गुलशन बावरा ने, धुन बनाई आर डी बर्मन ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित उमाशंकर का सितार पर राग हेम बिहाग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर का सितार पर बजाया राग हेम विहाग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक

0: बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।